ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 सितंबर 2026 सुबह के 5:53 और 35 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:02 पर हाजिर रहेंगे स्टूडियो में नेहा बेनीवाल। निखिल कुमार हाजिर हो जाएंगे स्टूडियो में फिल्म संगीत लेकर 7 बजे। 8 बजे एक बार फिर नेहा बेनीवाल स्टूडियो में उपस्थित हो जाएंगी और फिल्मी संगीत लेकर। 9:02 पर निखिल कुमार स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे और वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम लेकर पूजा आनंद स्टूडियो में उपस्थित रहेंगी।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात।
1: नमस्कार, सुबह के 6 बज चुके हैं। पेश है एफएम रेनबो दिल्ली पर इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य में पानी की आवश्यकताओं सहित शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन से इतर कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की हैं। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जापान की प्रमुख क्रेडिट

रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान बढ़ाकर BBB+ से +A- कर दिया है, जबकि आउटलुक स्थिर रखा है। भारत का पांचवा विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा है। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। लगभग 4,000 लोग अभी भी लापता हैं। भारत से 11 बचाव विशेषज्ञ विशेष उपकरणों के साथ नेपाल के त्रिशूली बाजार के पास पहुंचे। विशेषज्ञ दल आज से नेपाली सेना के साथ मिलकर काम शुरू करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का प्रक्षेपण 4 सितंबर को करेगा। ये उपग्रह GSLV-F17 रॉकेट के जरिए सुबह 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। भारत पहली बार अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर 5 से 9 सितंबर तक हुंडई विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला की मेजबानी करेगा, जिसमें 20 देशों के 100 से ज्यादा एथलीट हिस्सा लेंगे। और अंत में महिला एशिया कप 2020 में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। ये मैच UAE के दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा। तो ये थे FM रेनबो दिल्ली पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल। दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: This program is sponsored by SR Media Academy.
1: जी हाँ, अपने वादे के अनुसार फिर हाजिर है आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव आकाशवाणी एफएम रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन करिए स्वीकार हमारी नमस्ते सलाम और प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, पैसा कमाना हर कोई चाहता है क्योंकि बिना पैसे जिंदगी नहीं चलती, लेकिन पैसा कमाने के लिए गलत कदम उठाना ही इंसान के लिए बन जाता है जी का जंजाल। जी हाँ, यही सत्य वचन है कि पैसा सांसारिक जरूरतों को तो पूरा कर सकता है मगर आत्मिक नहीं। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि आत्मिक उन्नति के लिए अपने मन को प्रभु की ओर लगाए रखो और प्रभु के बताए राह पर हमेशा आगे बढ़ते रहो।

जी हाँ, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि अपनी नजरों को प्रभु की ओर लगाने वालों की मंजिल कभी नजरों से ओझल नहीं होती। उनकी मनोकामनाएं प्रभु अवश्य पूरी करता है और उसका पराक्रमी हाथ सदा उस मनुष्य पर बना रहता है।

जी हाँ, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि कल की चिंता अपने प्रभु पर छोड़ दो, क्योंकि उसको तुम्हारी चिंता हमेशा लगी रहती है, इसीलिए वो तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। और यही सत्य वचन है कि पिता परमेश्वर की शरण लेने, मनुष्यों पर भरोसा रखने से कहीं

दोस्तों, प्रभु का अनुग्रह और कृपा आप सभी पर बनी रहे। हम लेते हैं आपसे विदा, लेकिन दोस्तों, आप हमें मैसेज या फोन करके ये अवश्य बताएं कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा। हमारा नंबर है 9693644242। जी हाँ, 9693644242। और हमारा दूसरा नंबर है 7678438471। जी हाँ, 7678438471।

तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल यानी शुक्रवार सुबह हम फिर हाजिर होंगे एक नए सत्य वचन के साथ आकाशवाणी FM रेनबो पर। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।

बिल्कुल भी बुरा नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कि आपके साथ मैं कुछ वक्त साथ बिताऊं और आपके साथ वो सारे मोमेंट्स मैं बनाऊं जो जिंदगी को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाने में हमारी मदद करते हैं। सुप्रभात, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल 102.6 पर। सुबह के 6:24 हो चुके हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार और कार्यक्रम है सुप्रभात। मेरा नाम है नेहा और कुछ गीत ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ सुने नहीं जाते, वो महसूस भी किए जाते हैं। जैसे कि अभी ये गाना हमने सुना पैपॉन और सुनिधि चौहान की मधुर आवाजों में, और ये गीत कुछ इस तरह से लिखे जाते हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी में हमें बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी चीजों की हमेशा जरूरत नहीं होती है खुश रहने के लिए। कई बार किसी के साथ चुपचाप बैठना या फिर बिना वजह हंसना या फिर साथ में बैठकर चाय पीना, कुछ बातें करना, कई बार गॉसिप करना कितना अच्छा लगता है ना। और ये छोटे छोटे जो इंसिडेंट्स होते हैं लाइफ में, ये हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। और जब व्यक्ति साथ नहीं होता ना, जिसके साथ हमने ये चीजें की होती हैं, शायद उस समय हमें इस बात का एहसास ना हो, लेकिन जब वो व्यक्ति नहीं होता तब कहीं ना कहीं बैठकर वो बातें हम जरूर याद करते हैं, वो मोमेंट्स याद आते हैं, वो खुशी जो उस मोमेंट में हमने जी थी वो हमें बहुत याद आती है। तो इसीलिए लाइफ में जब भी कोई अच्छा पल मिले, सच में उसको बहुत अच्छे से आप जिएं, ताकि आगे कभी आपको उसको दोबारा जब करना पड़े तो आपको फिर से उस बात का एहसास जरूर हो जाए कि हाँ, ये तो मैं पहले भी महसूस कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ। और ये जो आंखें होती है ना, ये आंखें बहुत कुछ बयां कर जाती हैं। अगला गीत कुछ ऐसा ही बता रहा है, चलिए साथ मिलकर एंजॉय करते हैं प्रोग्राम सुप्रभात में।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक

अभी जो गाना आपने सुना ना, तू है कि नहीं, ये गाना भाई कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जिंदगी में जो बहुत कुछ सोचने पर हमें मजबूर कर देती हैं। मैं भी बहुत कुछ सोच रही थी ड्यूरिंग द सॉन्ग। और बहुत ही अजीब सी बात है हम लोगों के साथ कि जब कोई हमारे पास होता है तो उसकी मौजूदगी हमें इतनी मामूली लगने लगती है। उसकी बातें, उसकी परवाह, उसका साथ, उसकी सच्चाई, हमें ऐसा लगता है कि ये तो बस मुझे मिला हुआ है। और हम बहुत ही फॉर ग्रांटेड उस इंसान को या उस किसी सिचुएशन को हम लेना शुरू कर देते हैं। और जब वो नहीं होता ना, तो अचानक समझ आता है कि जिसे हम ऑर्डिनरी समझ रहे थे, वो दरअसल हमारी जिंदगी की कितनी खास चीज थी या कितना खास व्यक्ति था वो हमारे लिए। शायद इसीलिए कहा गया है, यू नेवर नो द वैल्यू ऑफ अ मोमेंट अनटिल इट बिकम्स अ मेमोरी। हम अक्सर अच्छी चीजों की कद्र तब करते हैं जब वो हमारे पास नहीं रहती। और अच्छे लोगों के साथ भी हम ऐसा ही करते हैं। और कभी-कभी बहुत देर से इस बात को रियलाइज कर पाते हैं कि वही तो सबसे सच्चा इंसान था मेरे लिए। इस दुनिया में सच्चा और अच्छा इंसान ढूंढना मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल काम है। और इसीलिए जो अच्छा है, जो सच्चा है, उसकी कद्र करने के लिए उसके चले जाने का इंतजार मत कीजिए।

6:42 बाय द रेनबो क्लॉक। सुप्रभात, आप सुन रहे हैं मेरे साथ, मेरा नाम है नेहा। और अभी इस गाने के बीच मैं कुछ पढ़ रही थी तो सामने आई इटली की एक छोटी सी कहावत जो कह रही है दैट गुड वाइन कम्स इन स्मॉल बैरल्स। इसका मतलब क्या है भाई? ये बात तो छोटी सी है लेकिन अपने भीतर जिंदगी का एक बड़ा सबक समेटे हुए है कि हर चीज में मात्रा से ज्यादा मायने रखता है उसका गुण, यानी कि उसकी क्वालिटी। हम अक्सर अपनी जिंदगी में ज्यादा पाने की कोशिश करते रहते हैं, ज्यादा लोग हमें चाहिए अपने आसपास, ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा सफलता चाहिए, ज्यादा पहचान हमें चाहिए, लेकिन क्या हर बार ज्यादा होना बेहतर होना भी होता है? दो बातें हैं यहाँ पर। रिश्तों में भी यही बात मुझे लगता है कि लागू होती है, और जिंदगी में बहुत सारे परिचितों से कहीं बेहतर है कुछ ऐसे लोग जिनके साथ हम अपने मन की बात कह सकें और उन पर भरोसा कर सकें। काम में भी हर समय व्यस्त रहना उपलब्धि नहीं होती, क्योंकि जरूरी है कि जो काम हम करें बेशक थोड़ा करें लेकिन वो बहुत ही क्वालिटी वाला काम होना चाहिए कि काम जिनके लिए कर रहे हैं वो भी खुश हो रहे हैं और हमें भी एक आत्मसंतुष्टि मिल रही है। क्योंकि आखिर जिंदगी की खूबसूरती चीजों की लंबी सूची में नहीं होती, उनकी गुणवत्ता और गहराई में होती है। तो इस बात को अगर संक्षिप्त में कहा जाए तो ज्यादा नहीं बेहतर चुनिए।

भाई, जब इतनी बड़ी ख्वाहिश अगर आपकी है कि आपको अपना मिस्टर या मिस चाहिए, तो उसके लिए मेहनत भी तो कीजिए। वो क्वालिटीज अपने अंदर लेकर आए जिसके जरिए आपको अपना बेस्ट मिस्टर और मिस मिल सकती है। ऑन दैट नोट, टाइम हो गया है आप सभी से अनुमति लेने का। सुबह के 6:55 हो गए हैं और अगले कार्यक्रम की बात आपको बताएं तो सुबह 7 बजे होंगे हिंदी में समाचार, और 7:05 पर आपके लिए प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। 7 बजे शुरू हो जाएगा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का पहला घंटा। निखिल कुमार इस कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगे और आपको आज के फोन इन कार्यक्रम की जानकारी भी मैं पहुंचा दूं। दोपहर 3 से 4 के बीच में रेडियो डॉक्टर आप सुनना ना भूलें। आज का विषय होगा प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, और इसमें आज के विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर एस के सिंगला, जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन है। ये कार्यक्रम दोपहर 3 से 4 के बीच आप सुन पाएंगे। और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके लिए आ रहा है कुमार सानू की मधुर आवाज में। शाहरुख खान का बहुत ही प्यारा सा गाना है, मजा आ जाता है जब ये गाना मैं सुनती हूँ ना, चाहे आप इसका वीडियो देखें या फिर यूं ही आप रेडियो पर ये गाना एंजॉय करें। और आपसे मुलाकात होगी सुबह 8 से 9 के बीच में गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के सेकंड आवर में। तब तक के लिए कहाँ कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप, कहीं ना जाए, बने रहें FM रेनबो दिल्ली के साथ। नमस्कार।

नमस्कार, सुबह के 7 बज चुके हैं। पेश हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य में जल की आवश्यकताओं सहित शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन सहित कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की हैं। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जीसीआर ने भारत की दीर्घकालिक विदेश

विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान बढ़ाकर BBB+ से प्लस से माइनस कर दिया है, जबकि आउटलुक स्थिर रखा है। भारत का पांचवा विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंच गया है। भारत से 11 बचाव विशेषज्ञ विशेष उपकरणों के साथ नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंचे हैं। विशेषज्ञ दल आज से नेपाली सेना के साथ मिलकर काम शुरू करेगा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का प्रक्षेपण 4 सितंबर को करेगा। ये उपग्रह GSLV-F-17 रॉकेट के जरिए सुबह 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जैसा तेरा हुस्न है जैसा,
2: मेरी निगाह ने ये कैसा ख्वाब देखा है, जमीन पे चलता हुआ माहताब।

0: एक बहुत ही खूबसूरत सी के इस गीत के साथ शुरुआत हुई इस प्रोग्राम की, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, आपके दोस्त आर्य निखिल के साथ में। और जब हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हो चुका है। तो आज है भाई 3 सितंबर 2026, लेकिन इतिहास में क्या है इसके बारे में आपको हम बताते हैं। वर्ष 1783 में आज का दिन था जब अमेरिका और ब्रिटेन के बीच पेरिस की संधि के साथ क्रांतिकारी युद्ध समाप्त हुआ था। वर्ष 1833 में आज के दिन ही अमेरिका में पहला समाचार पत्र न्यूयॉर्क सन बेंजामिन एच डे के द्वारा शुरू किया गया था। वर्ष 1939 में आज के दिन ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविले चैम्बरलिन द्वारा एक रेडियो प्रसारण पर ब्रिटेन और फ्रांस का जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। वर्ष 1943 में आज के दिन ही दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने आज के दिन ही इटली पर हमला किया। वर्ष 1971 में आज का ही वो दिन था जब कतर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। वर्ष 2004 में आज के दिन ही रूसी सैनिकों ने अपहरणकर्ताओं के कब्जे से एक स्कूल को मुक्त कराया था। ये एक बहुत बड़ा मिशन था। वर्ष 2006 में आज के दिन ही यूरोप का पहला त्रिवर्षीय चंद्र मिशन आज के दिन समाप्त हुआ था। और भारतीय मूल के भरत जगदेव ने गयाना के राष्ट्रपति के रूप में आज के दिन ही वर्ष 2006 में शपथ ली थी। वर्ष 2007 में आज के दिन झिंगजियांग प्रांत में चीनी और जर्मन विशेषज्ञों ने लगभग 16 करोड़ साल पुराने जीव के 17 दांत खोजने का दावत किया था। और आपको बता दें कि आज का ही दिन था जब वर्ष 2015 में ऑस्ट्रेलिया में क्रिस नाउ नाम की एक भेड़ से 40 किलो ऊन निकाली गई थी। ये एक भेड़ से सबसे ज्यादा एक साथ ऊन निकालने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वर्ष 2020 में आज का दिन था जब भारत और रूस से अत्याधुनिक AK-203 राइफल बनाने में के लिए भारत में उसका निर्माण हो इस समझौते को अंतिम रूप दिया गया था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल 102.6, प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, आपके दोस्त आर्य निखिल के साथ में। एंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल से ट्रैक को जो बैकग्राउंड में चल रहा है स्लो वॉइस में, मैं तेज करता हूँ आपके लिए।
1: वाओ, व्हाट अ ब्यूटी! आपका क्या ख्याल है?
2: बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसे नकली सजावट से खराब ना कीजिएगा, क्योंकि खूबसूरती सादगी में ही है।
1: पॉइंट नोटेड मिस्टर
2: रोहित।
1: मिस्टर

और शो, तो आपको बता दें कि आज हम किन किन जानी मानी हस्तियों को याद कर रहे हैं। तो सबसे पहले जिक्र करते हैं कमलापति त्रिपाठी का, जो कि भारत के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। आज उनकी जयंती है। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल रहे और ब्रिटिश शासन के विरोध में कई बार जेल भी गए थे। और आज़ादी के बाद देश की राजनीति में भी उनका विशेष प्रभाव रहा। वे 1971 से 1973 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी रहे थे और विशेष रूप से वाराणसी और पूर्वांचल क्षेत्र में अपने योगदान के लिए भी जाने जाते हैं। राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े रहे और हिंदी समाचार पत्रों के संपादन और संचालन का भी वो काम करते रहे। और श्रोताओं, आपको बता दें कि आज ही जयंती है पंडित किशन महाराज की, जो कि भारत के महान तबला वादकों में से एक हैं। बनारस घराने के प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। उनका जन्म वहीं वाराणसी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने तबला बजाना शुरू किया था और कठिन अभ्यास और अद्भुत प्रतिभा के कारण ही भारतीय शास्त्रीय संगीत में उन्होंने अपना विशेष स्थान बनाया। पंडित किशन महाराज अपनी तेज, प्रभावशाली और जटिल तबला वादन शैली के लिए बहुत ज्यादा जाने गए। उन्होंने देश विदेश में अनेक मंचों से प्रस्तुतियां दी और कई प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ संगत की थी। आपको बता दें कि उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री के अलावा और भी कई सारे सम्मान प्राप्त हुए थे। और बनारस घराने की तबला परंपरा को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख कलाकारों में वो हमेशा शामिल रहे और यही वजह है कि आज भी इस घराने की समृद्ध संगीत परंपरा का नाम बहुत ही सम्मानपूर्वक लिया जाता है। फिलहाल एक और बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक आपके लिए FM रेनबो 102.6 से एंजॉय कीजिए। इसके बाद बातें होंगी आपसे और भी और

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: Yaadein ateet se, baatein bas dil se, kyunki aapki yaad aati rahi. Rainbow par raat 9 baje.

जी हाँ श्रोताओ, यह है आकाशवाणी का FM रेनबो। और श्रोताओ, आपको बता दें कि आज जयंती है उत्तम कुमार जी की, जो भारत के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और निर्माता थे। मूल रूप से कलकत्ता और बंगाल से आते हैं। उन्होंने बंगाली सिनेमा में अपने शानदार अभिनय से ऐसी लोकप्रियता हासिल की थी कि उन्हें महानायक के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत वर्ष 1940 के दशक में की और कई सफल फिल्मों में अभिनय किया। अभिनेत्री सुचित्रा सेन के साथ उनकी जोड़ी बंगाली सिनेमा की सबसे लोकप्रिय जोड़ियों में से गिनी जाती है। उन्हें भारतीय सिनेमा के उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कई सारे पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। आज भी उत्तम कुमार को बंगाली सिनेमा के सबसे प्रभावशाली और लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक माना जाता है। आपको बता दें कि बतौर नायक अभिनेता उत्तम कुमार की पहली फिल्म थी दृष्टिदान, जिसे मशहूर निर्देशक नितिन बोस ने निर्देशित किया था। कोलकाता में आज अंचल में उनके नाम पर उत्तम थिएटर भी बना हुआ है। यदि आप कभी कोलकाता जाएं तो वहां जरूर पहुंचे। और उत्तम कुमार की मुख्य फिल्मों की हम बात करते हैं तो छोटी सी मुलाकात, अमानुष, आनंद, आश्रम, किताब और दुनिया जैसी कई फिल्में हैं जो आज भी खूब पसंद की जाती हैं। फिलहाल एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक आपके लिए FM रेनबो पर, एंजॉय कीजिए इसे।

श्रोताओं सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लिलिया एनसीआर। और श्रोताओं को बता दें कि आज जन्मदिन है प्यारे लाल रामप्रसाद शर्मा, यानी कि प्यारे लाल रामप्रसाद शर्मा भारत के प्रसिद्ध संगीतकार और वायलिन वादक हैं, जो अपनी जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के रूप में जाने जाते हैं। और उनके पिता स्वयं भी एक संगीतकार और संगीत शिक्षक थे, इसलिए उनके पिता ने ही उन्हें बचपन से संगीत की शिक्षा दी थी। और प्यारे लाल जी ने बहुत ही कम उम्र में वायलिन बजाना शुरू किया और आगे चलकर भारतीय फिल्म संगीत के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान उन्होंने बनाई थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जो मशहूर जोड़ी हुई, उसने दोस्ती, मिलन, शोर, बॉबी, अमर अकबर एंथनी, सरगम, कर्ज जैसी तमाम ऐसी लोकप्रिय फिल्में बनाई जिनका संगीत आज भी खूब पसंद किया जाता है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने कई दशकों तक हिंदी फिल्म संगीत पर अपना गहरा असर डाला और उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ, कई फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुए, इसके अलावा कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। और आज भी भारतीय फिल्म संगीत में अपने शानदार ऑर्केस्ट्रेशन, वायलिन वादन और मधुर धुनों के लिए खूब जाने जाते हैं। वैसे तो उनके बहुत सारे गीत हैं जो आज भी आप सुने तो दिल में एक तरह से उतर ही जाते हैं, लेकिन कोई भी गीत उनका उठा लें बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। फिलहाल एक प्यारा सा गीत आपके लिए मैं प्ले करता हूँ रेनबो पर, इसे आप एंजॉय कीजिए।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: बहुत ही मेलोडियस से गीत आप सुन रहे हैं और प्रोग्राम को आप एंजॉय कर रहे हैं आकाशवाणी की एफएम रेनबो 102.6 पर, जिसका फिलहाल प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। और श्रोता आपको बता दें कि आज ही जन्मदिन है शक्ति कपूर का, जो कि हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता हैं और विशेष रूप से अपनी हास्य और खलनायक की भूमिकाओं के रूप में खूब याद किए जाते हैं। उनका वास्तविक नाम है सुनील सिकंदलाल कपूर और दिल्ली के रहने वाले हैं। 1970 से लेकर 1980 के दशक में उन्होंने अपनी फिल्मों में खास तरह से पहचान बनाई और आगे चलकर हिंदी सिनेमा के सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र अभिनेताओं में शामिल हो गए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अपने लंबे फिल्मी करियर में उन्होंने 700 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, यानी कि आप दिन भर में टीवी पे जो भी फिल्म देखें उनमें से हर दूसरी या तीसरी फिल्म में उनकी अपीयरेंस आपको ज़रूर मिलेगी। चाहे कुर्बानी हो, सत्य पे सत्ता हो, हिम्मत वाला, तोहफा, मवाली, अंदाज अपना अपना, आँखें, चालबाज जैसी यादगार फिल्में और यादगार उनकी जो भूमिकाएँ रही हैं खूब पसंद की जाती हैं। अपने विशिष्ट संवाद बोलने के अंदाज और हास्य अभिनय के लिए विशेष रूप से लोकप्रिय रहे हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा को नकारात्मक और हास्य दोनों तरह के किरदारों को अलग अलग शैली दी और इस तरह से प्रसिद्ध हुए कि लोगों ने उन्हें खूब पसंद किया। हालांकि वैसे तो उनकी जोड़ी कई सारे लोगों के साथ में खूब जमी, जिनमें कादर खान साहब थे और गोविंदा के साथ में उनकी हास्य भूमिकाएं काफ़ी पसंद की गई हैं। फिलहाल जो अगला ट्रैक है उन दोनों की जुगलबंदी का फिल्म है जवाबों से, जो एक आइकॉनिक फिल्म मानी जाती है इन दोनों अभिनेताओं के लिए।

और श्रोता, आपको बता दें कि आज ही हम विवेक ओबराय का भी आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। वे भारत के प्रसिद्ध अभिनेता और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं, जो मुख्य रूप से अपनी फिल्मों के लिए खूब पसंद किए गए। उन्होंने साथिया, ओमकारा, शूट आउट एट लोखंडवाला, युवा और पृष्ठी जैसी फिल्मों में काम किया था और कई अलग अलग तरह की भूमिकाएं उन्होंने निभाई। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य भारतीय भाषाओं में भी फिल्मों में काम किया था। और आपको बता दें कि वर्ष 2002 में फिल्म कंपनी से उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, जिसमें उनके अभिनय को खूब सराहना मिली थी और उन्हें फिल्म फेयर सहित कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए थे। और आज श्रोताओं, जन्मदिन है जाने माने क्रिकेटर ईशांत शर्मा का, जो कि भारत के एक प्रसिद्ध तेज गेंदबाज रहे, जिन्होंने कई मौकों पर अपने शानदार प्रदर्शन से भारतीय टीम की जीत सुनिश्चित की थी।

और श्रोता, आपको बता दें कि इस सप्ताह हम मना रहे हैं राष्ट्रीय पोषाहार सप्ताह, जो कि हमारे लिए काफी आवश्यक है। और आज हम आपसे कुछ विशेष बात करेंगे। जी हाँ, विशेष बात यह है कि हमारे शरीर को पोषक तत्वों की बहुत आवश्यकता होती है। शरीर को इनकी आवश्यकता हालांकि वैसे कम मात्रा में होती है, लेकिन अगर इनकी कमी हो जाए तो ये शारीरिक वृद्धि, विकास, रोग प्रतिरोधक क्षमता और कई अन्य शारीरिक क्रियाओं को सही ढंग से चलाने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे शरीर में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कोई कमी कभी भी महसूस ना हो। जी हाँ, इनमें विटामिन्स होते हैं, आयरन होते हैं और आयोडीन होते हैं, जो कि प्रमुख रूप से हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी माने जाते हैं। और ये विटामिन्स जहाँ एक और शरीर को स्वस्थ रखने का काम करते हैं, हमें रोगों से बचाने का काम करते हैं, वहीं आयरन रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसकी कमी से खून की कमी या फिर एनीमिया हो सकता है। आयोडीन शरीर में थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए जरूरी है और इसकी कमी से घेंगा हो सकता है, बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। तो श्रोता, आपको बता दें कि इन पोषक तत्वों की कमी से बचाने के लिए हमें संतुलित आहार लेना

0: तत्वों का आपको मतलब कहने का कि अधिक इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसलिए पर्याप्त मात्रा और सही मात्रा होना सूक्ष्म पोषक तत्वों की बहुत आवश्यक है, जो आपके शरीर को स्वस्थ, मजबूत और सक्रिय बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार बातें होंगी आपसे थोड़ी सी, और आप बने रहें रेडियो पर।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: हर्षदा, मैं फिलहाल आपसे लेता हूँ थोड़ी देर के लिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें रेनबो पर।

नमस्कार, सुबह के 8 बज चुके हैं। अब सुनिए एफएम रेनबो दिल्ली पर इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य में पानी की आवश्यकताओं सहित शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान बढ़ाकर BBB+ से +A- कर दिया है, जबकि आउटलुक स्थिर रखा है। भारत का पांचवा विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा है। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। लगभग 4,000 लोग अब भी लापता हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का कल प्रक्षेपण करेगा। ये उपग्रह GSLV-F17 रॉकेट के जरिए सुबह 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण का एक विशेष अभियान आज से 17 तारीख तक राज्य में चलाया जाएगा। यह अभियान राज्य के सभी 75 जिलों में चलाया जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में भी अगले 2 दिन तक तेज

बारिश होने की संभावना है। भारत पहली बार अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर 5 से 9 सितंबर तक हुंडई विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला की मेजबानी करेगा, जिसमें 20 देशों के 100 से ज्यादा एथलीट हिस्सा लेंगे। और अंत में महिला एशिया कप 2020 में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। ये मैच यूएई के दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा। ये थे एफएम रेनबो दिल्ली पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: सुबह के 8 बजते ही आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल पर शुरू हो जाता है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR का दूसरा घंटा, जहां पर दिल्ली NCR की तमाम खबरें हम आपके लिए लेकर आते हैं। और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ नेहा। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार ते सत श्री अकाल। आकाशवाणी दिल्ली को आप सुन रहे हैं दिल्ली NCR में 102.6 के माध्यम से, और विभिन्न माध्यमों से आप पूरे देश भर के साथ साथ विश्व भर में हमें सुन पा रहे हैं। और साथियों, जब हर दिन की हम शुरुआत करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा मोटिवेटिंग हमें चाहिए जो हमें पूरे दिन को बहुत अच्छे से बिताने में मदद करे। तो ऐसी ही एक बात मैं पढ़ रही थी कि हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हम से जमाना खुद है जमाने से हम नहीं। क्या बात है जी। अगर इसी तरह का हौसला और जज्बा हमारे मन में रहे कि भाई ये जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं, हम ही हैं वो जो जमाने को बदलते हैं और जमाने में कुछ नया कर दिखाने का जज्बा रखते हैं, तो फिर देखिए आप अपने आप को कितना कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त, मुझे लगता है कि अगर इस तरह का दम खम हम रखते हैं तो उसके लिए अपने आप को तैयार भी करना होता है, और उसके लिए मेहनत लगती है, उसके लिए तैयारी लगती है, उसके लिए बहुत सारा हौसला चाहिए होता है, बहुत अच्छा फोकस भी चाहिए होता है। तो आज आपके दिन में ये पूरा फोकस, ये हौसला, ये जज्बा, ये हुनर बना रहे, यही मैं आपके लिए शुभकामनाएं देती हूँ। और आइए ये मजेदार गाना सुनते हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR के शुरुआत में।

वैसे ये बात आप किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैं वादा करके बिल्कुल नहीं भूलती हूँ और कोई धोखा मैं आपको नहीं देती हूँ। आपको समय बता दें, सुबह की 8:10 हो गए हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार, और अगर कोई और धोखेबाज है तो वो मौसम हो सकता है, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं, कभी लगता है कि धूप निकल रही है, कभी लगता है कि बारिश हो जाएगी, और कभी तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते और मौसम एकदम से बदल जाता है। तो चलिए आज के मौसम की बात करें, तो तापमान क्या रहने वाला है, अधिकतम और न्यूनतम दोनों के बारे में बात करेंगे। तो आज का मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन थर्सडे टुडे तो 32 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा ऐसा अनुमान है, और मिनिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। और वैसे तो लग रहा है कि थोड़ी देर में धूप निकलेगी, थोड़े से बादल भी छाए हुए हैं दिल्ली एनसीआर में, बट यू नेवर नो कहां पर कब बारिश आ जाए। तो अपना ख्याल रखिएगा, अम्ब्रेला आप कैरी करना बिल्कुल ना भूलें, और रेनकोट अगर आप यूज करते हैं तो वो भी आप अपने पास जरूर रखिए। और पता है बारिशों में सबसे ज्यादा तकलीफ क्या हो जाती है, भाई जूते जो हमारे होते हैं ना, हमारे फुटवेयर, वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं, और अगर हमने ख्याल नहीं रखा घर से निकलने से पहले, उस समय मौसम कुछ कह रहा था और हमने अपने लेदर के शूज पहन लिए या फिर कोई और ऐसे कपड़े के हमने जूते पहन लिए जिनमें पानी भर जाता है और वो खराब हो जाते हैं, इतने ड्यूरेबल नहीं हो पाते, अगर पानी में भीग जाए तो बड़ी तकलीफ होती है। तो ऐसे में कई बार आपने देखा ना, लोग अपने साथ वो पॉलिथिन रखते हैं और शूज को पॉलिथिन में बांध करके फिर पानी से निकलने का प्रयास करते हैं, तो ये एक टेम्पररी सा सोल्यूशन है अपने जूतों को बचाने का। तो इस तरह की आप चीजों का ख्याल रखें बहुत आवश्यक है, और मौसम का मजा तो देख ही लेते रहिए। धीरे धीरे मौसम में थोड़ी थोड़ी ठंडक भी महसूस होने लगी है, कल शाम को सच में मौसम ऐसा हो रहा था, बल्कि दोपहर को भी इनफैक्ट, कि बिल्कुल भी उमस का एहसास नहीं हो रहा था और बहुत ठंडी हवाएं भी चल रही थी। तो बड़ा ही मजा आता है जब मौसम इस तरह से फेवरेबल हो जाता है ना, और घर से निकलते ही अगर मौसम अच्छा है और किसी खास वजह से बाहर निकले हैं तो फिर देखिए मजा और ज्यादा बढ़ जाता है हमारा, जो भी लक्ष्य है बाहर निकलने का उसका। तो आपको ये प्यारा सा गाना तो हम सुनवा ही रहे हैं, साथ में गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में ताजा तरीन

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

सुबह के 8:20 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का दूसरा घंटा मेरे साथ। मेरा नाम है नेहा, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। और आज है 3 तारीख और कल है 4 सितंबर, और कल हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व सेलिब्रेट करेंगे। और ऐसे में बहुत से श्रद्धालु दिल्ली से बाहर जाते हैं, अपने घर या अपने खास लोगों के बीच वो जुड़ने के लिए चले जाते हैं, उनसे मिलने चले जाते हैं, तो उसके लिए कई बार आपको रेल यात्रा करनी होती है। और इस मौके पर श्रद्धालुओं और यात्रियों के सुगम आवागमन को ध्यान में रखते हुए रेल मंडल प्रशासन ने दिल्ली हरिद्वार दिल्ली मार्ग पर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। आइए आपको इस ट्रेन के बारे में बताएं। स्पेशल ट्रेन जो चल रही है, ट्रेन संख्या 04413 और 04414, ये अनारक्षित स्पेशल ट्रेन है जो 3-3 फेरों में दिल्ली हरिद्वार दिल्ली के बीच संचालित की जा रही है। और तारीखों की अगर बात करें तो दिल्ली से हरिद्वार के लिए 3, 4 और 5 सितंबर को ये ट्रेन चल रही है, यानी कि आज गुरुवार, कल शुक्रवार और शनिवार को ये ट्रेन चल रही है। और ये दिल्ली से रात 11 बजे रवाना होकर गाजियाबाद पहुंचेगी, उसके बाद मेरठ सिटी पहुंचेगी, फिर मुजफ्फरनगर और रुड़की होते हुए अगले दिन यानी के जो भी नेक्स्ट डे होगा, जैसे कि अगर आज रात को निकलते हैं तो कल सुबह 4:55 के आसपास हरिद्वार पहुंच जाएगी। और इस तरीके से आप ये प्यारा सा पर्व अपनों के साथ, अपनों के बीच मना सकते हैं। मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन त्योहार की।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

सुबह के 8 बजकर लीजिए 35 मिनट हो चुके हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार और गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में मेरे साथ है, मेरा नाम है नेहा और आपको लेकर चलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय ने पढ़ाई और नए कौशल सीखने के इच्छुक लोगों के लिए एक बहुत ही खास मौका निकाला है। डीयू ने कॉम्पिटेंस एनहांसमेंट स्कीम यानी CES 2025-26 के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। अब आपको बता दें कि भाई ये क्या है, किस तरह की स्कीम है, क्या खास है इसमें। तो इस योजना की बहुत खास बात यह है कि इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है, यानी किसी भी उम्र के लोग यानी कि वरिष्ठ नागरिक भी इसमें दाखिला ले सकते हैं और इसके तहत जो लोग इच्छुक हैं अपनी योग्यता के मुताबिक दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग विभागों और कॉलेजों में उपलब्ध पेपर पढ़ पाएंगे, साथ ही नियमित छात्रों के साथ कक्षा में बैठकर पढ़ाई भी कर पाएंगे। और इसके लिए संबंधित पेपर की न्यूनतम क्वालिफिकेशन, तो भाई जो शर्तें साथ में हैं वो तो आपको पूरी करनी ही होंगी, ये कंपलसरी रहेगा और दाखिला जो आपको मिलेगा वो उपलब्ध सीटों के आधार पर ही मिल पाएगा। एक और खास बात यह है साथियों कि CES के लिए रजिस्ट्रेशन और दाखिले की प्रक्रिया पूरे साल खुली रहेगी और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जो उम्मीदवार हैं वो पेपर, पात्रता, फीस और आवेदन से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए डीयू के प्रवेश पोर्टल और इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग की वेबसाइट पर उपलब्ध CES ई ब्रोशर पढ़ सकते हैं और इस जानकारी का आपको बहुत फायदा उठाना चाहिए और साथ में आप फायदा उठाइए FM रेनबो दिल्ली पर मिल रही जानकारी और साथ में बहुत प्यारे प्यारे गीतों का, अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना।

0: तो सोनिया, मैं भी तो आपको यही कह रही हूँ कि सुन जरा मेरी खास बात, इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आई हूं ना कि आप इसे मिस बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से इस साल कोई कोर्स करने के बारे में सोच रहे हैं तो भाई देख लीजिए, आवेदन करने की आखिरी तारीख बहुत ही नजदीक है। इस महीने की 15 तारीख यानी कि 15 सेप्टेम्बर लास्ट डेट रहेगी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जुलाई 2026 प्रवेश सत्र में दाखिले के लिए। और ये जो तारीख है ना, ये सर्टिफिकेट कार्यक्रमों को छोड़कर जितने भी बाकी के कोर्सेज हैं उसमें आवेदन के लिए लागू है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि 15 सितंबर आखिरी तारीख है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो आप बिल्कुल भी देरी ना करें, अप्लाई करें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। और इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, ओपन यूनिवर्सिटीज, वो आपको जहां भी आप हैं वहां से पढ़ाई जारी रखने की सुविधा देती हैं। ऐसी ही जानकारी और बहुत प्यारी प्यारे गीतों के साथ हम लौट कर आएंगे। फिलहाल वक्त है कुछ एड ब्रेक्स का।
1: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
3: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
4: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
5: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
6: साथियों, आपके टैलेंट को बहुत बड़ा मंच मिल सकता है अगर आप किसी बैंड से जुड़े हैं या फिर कम्युनिटी रेडियो के लिए काम करते हैं, तो भी आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है। आपके टैलेंट और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने क्रिएट इन इंडिया इस थीम के तहत 25 चैलेंजेस शुरू किए हैं। ये चैलेंजेस आपको जरूर दिलचस्प लगेंगे। कुछ चैलेंजेस तो म्यूजिक, एजुकेशन और यहाँ तक कि एंटी पायरेसी पर भी फोकस्ड है। इनमें शामिल होने के लिए आप wavesindia.org पर लॉगिन कर सकते हैं। देश भर के क्रिएटर से मेरा विशेष आग्रह है कि वे इसमें जरूर हिस्सा लें और अपनी क्रिएटिविटी को सामने रखें।

सुबह के 8:50 और ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के कई क्षेत्रों में बारिश शुरू हो चुकी है। और ऐसे में जब बारिश हो रही है, बारिश का मौसम सुहाना बना है, तो बारिश के गाने तो सुनने ही चाहिए ना। और मुझे लगता है कि आपके मन में भी कहीं ना कहीं यह ख्वाहिश थी कि भाई कोई बढ़िया सा बारिश का गाना प्ले हो जाए। तो मुझे लगता है कि 1942 अ लव स्टोरी के इस गाने से बेहतर और कौन सा गाना होगा जो सुनने और देखने दोनों में इतना खूबसूरत है। आइए साथ मिलकर एंजॉय करते हैं।

हम तुम नहीं, सिर्फ मैं चलती हूँ, हम चलते हैं, आप कहीं ना जाएं। आप तो रहेंगे आकाशवाणी दिल्ली के साथ, आप जहां रहेंगे लेकिन आकाशवाणी का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और अब वक्त आ गया है कि मैं यहां से अनुमति लूं आपसे जाने के लिए। और यहां पर आपको बता दूं कि समय क्या हुआ है, सुबह के 8:55 और लीजिए 40 सेकेंड हो चुके हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार। और आपको ये भी बता दें कि अगला कार्यक्रम कौन सा रहने वाला है। तो सुबह 9 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, और 9 से 10 के बीच में कार्यक्रम रहेगा दिल के तहराने, गाने नए पुराने। निखिल इस कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगे। सुबह 10 बजे समाचारों के बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम वेस्टर्न म्यूजिक का मैचलेस म्यूजिक आवो। पूजा आनंद इस कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगी। सुबह 11 बजे समाचार होंगे और उसके बाद वक्त रहेगा प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स का। रंजन अरनेजा आज इस कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगे। और साथियों ऐसे ही आगे भी कार्यक्रमों का सिलसिला हर घंटे जारी रहेगा आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल पर। फिलहाल मुझे दें अनुमति, आप सभी का दिन बहुत अच्छा बीते और बहुत प्यारा सा वीकेंड आ रहा है, एक्सटेंडेड छुट्टियां आ रही हैं, तो उनका भरपूर फायदा उठाइए, अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास लोगों का भी ख्याल रखिए। इन्हीं बातों के साथ नमस्कार।

सुबह के 9 बज चुके हैं। पेश अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य में पानी की आवश्यकताओं सहित शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और बैंकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान बढ़ाकर BBB+ से +A- कर दिया है, जबकि आउटलुक स्थिर रखा है। भारत का 5वां विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा है। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 तक हो गई है। लगभग 4,000 लोग अब भी लापता हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का कल प्रक्षेपण करेगा। ये उपग्रह GSLV-F17 रॉकेट के जरिए सुबह 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। बम्बई उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियन की मौत की CBI जांच के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण का एक विशेष अभियान आज से 17 तारीख तक राज्य में चलाया जाएगा। मौसम विभाग ने कहा है कि आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की आशंका है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में भी अगले 2 दिन तक तेज बारिश होने के आसार हैं। और महिला एशिया कप 2020 में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। ये मैच UAE के दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।

हर्षो, तो मैं बता दूं, मेरे जाने के बाद आप कौन कौन से प्रोग्राम सुन पाएंगे? तो पूजा आनंद देकर के वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम मैचलेस म्यूजिक आर आपके साथ होंगी 10 बजे से, और फिर बॉलीवुड ट्रेस आप सुन पाएंगे रंजन अरनेजा के साथ 11 बजे से। वक्त होगा वेस्टर्न म्यूजिक के प्रोग्राम प्लेट कोल का 12 बजे, जिसे लेकर के आएंगे पूजा आनंद और रंजन अरनेजा एक बार फिर आपके साथ होंगे दिन में 1 बजे मेरा वाला सॉन्ग लेकर। और फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति, हम फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द, लेकिन आप बने रहे आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर, और आप सभी को जन्माष्टमी की।

0: कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: chips. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

नमस्कार, आकाशवाणी एफएम रेनबो समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के साथ बैठक की। इसमें स्कूल शिक्षा सुधारों के अगले चरण पर चर्चा की गई। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का कल प्रक्षेपण करेगा। ये उपग्रह GSLV-F-17 रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय कोहिनूर पावर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 290 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 11 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। बंबई उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण का विशेष अभियान आज से 17 तारीख तक सभी 75 जिलों में चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मशहूर गुजराती संगीतकार गौरंग व्यास के निधन पर दुख व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में भी अगले दो दिन तेज बारिश होने की संभावना है। भारत पहली बार अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर 5 से 9 सितंबर तक ह्युंडई विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला की मेजबानी करेगा। और महिला एशिया कप 2020 में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। तो ये थे आकाशवाणी एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी। कार्यक्रम शुरू हो गया है बॉलीवुड ट्रेल्स। मैं हूं आपके साथ रंजन। आज की सुबह आपके फेवरेट फिल्मी सितारे करते हैं क्या? कौन सी फिल्म में मचा रहे हैं धूम? बॉक्स ऑफिस एंड लॉट्स मोर, ये सब होगा, साथ होगा बॉलीवुड सरताज का सवाल। सुनते रहें जनाब आकाशवाणी के संग FM रेनबो।

सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स आकाशवाणी रेनबो पर। हम आप तक पहुंचते हैं 102.6 मेगाहर्ट्स दिल्ली और आसपास। इसके अलावा ढेरों फ्रीक्वेंसीज पर आप हमें पूरे भारतवर्ष में सुन सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आज की तारीख के साथ, आज की डेट के साथ आप अप टू डेट रहना चाहते हैं तो हमारे ऐप को आप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर सकते हैं एंड आपकी स्मार्ट क्वेश्चन आपका बढ़ जाता है। और हमारा ऐप बड़ा सिंपल है, न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से आप हमें सुन सकते हैं पूरी दुनिया में। और फिर चाहे आप कहीं भी रहें, ये नहीं कह सकते कि हम आपसे दूर हैं, क्योंकि हम हैं आकाशवाणी रेनबो 24/7 आपके संग, आपकी खिदमत में। वैसे कुछ दिनों से तापसी पन्नू नहीं दिखाई दे रही थी, क्या कहती हैं बताएंगे आफ्टर दिस सॉन्ग। जुड़े रहें आकाशवाणी के संग, एंजॉय करें बैंग बैंग बॉलीवुड ट्रेल्स।

जी हम बात कर रहे हैं तापसी पन्नू की। इन्होंने अपना करियर शुरू किया था तेलुगु तमिल फिल्म्स के साथ और फिर इन्होंने बॉलीवुड के अंदर धमाकेदार एंट्री की। इनकी बहुत सी फिल्में हैं, उनमें से कुछ मेरी भी पसंदीदा हैं। डेविड धवन की कॉमेडी फिल्म चश्मे बद्दूर में इन्होंने काम किया 2013 में, एंड देयर वाज अ मूवी बाय द नेम बेबी। पिंक 2016 में आई, अमिताभ बच्चन के सामने इनका किरदार बड़ा अच्छा लगा। अमिताभ बच्चन का उसमें एक बहुत प्यारा डायलॉग है, व्हेन अ गर्ल सेज नो इट मींस नो। सांड की आंख फिल्म में इनको 2019 में फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड भी मिला। 2021 में हसीन दिलरुबा एंड लॉट्स ऑफ अदर मूवीज, डंकी 2023 में। लेकिन मैं इतनी सारी बात आपके सामने बखान क्यों कर रहा हूं तापसी का, फॉर द सिंपल रीजन कि अभी वो फिल्मों में नहीं आ रही हैं। कह रही है कि मेरे मतलब की स्क्रिप्ट नहीं है, एंड आई थिंक शी हैज अ पॉइंट देयर। मतलब पेड़ों के इर्द गिर्द थोड़ा डांस कर लेना, या फिर एक्शन दिखा देना, या फिर कुछ ऐसा सब्सटेंशियल ना होते हुए अगर आप किसी फिल्म का हिस्सा बनते हैं तो फिर हिस्ट्री आपको माफ नहीं करती है। तापसी, हैट्स ऑफ टू यू, एंड आई मस्ट कमेंड आपकी ये जो सोच है कि काम कोई मजबूरी नहीं है, काम जी हजूरी नहीं है, मर्जी के मालिक हैं, क्रिएटिव सोल हैं। स्क्रिप्ट पसंद आई तो करेंगे,

रियाज सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो और कार्यक्रम है बॉलीवुड ट्रेल्स। मैं हूं आपके साथ रंजन। हमने ढेर सारी आपसे बातें करनी है, लेकिन इन बातों में मैं आपसे सवाल तो पूछना भूल ही गया, तो चलिए पूछ लेते हैं। बॉलीवुड सरताज अगर आप बनना चाहते हैं तो इट्स वेरी सिंपल, आपको हमें बताना है कि क्रिश 3 करके एक मूवी आई थी 2013 में, 2013 में विवेक ओबेरॉय ने उसमें एक किरदार प्ले किया था, तो उस किरदार का नाम क्या था इन दैट मूवी क्रिश 3? ऑब्वियसली उसके जो मेन प्रोटैगनिस्ट थे, हीरो थे, वो ऋतिक रोशन थे, उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं विवेक ओबेरॉय के किरदार का नाम बताइए। 9868107070 पर हमें भेजिए व्हाट्सएप करके। हो सकता है अगर आपका आंसर सही हो तो आप आज बन जाएं बॉलीवुड सरदार। और आपके सर पे आ जाए ये ताज। कैसा रहा? अच्छा रहेगा ना।

0: आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स आकाशवाणी रेनबो पर। और अगर सवाल आप मिस कर गए हैं, डोंट यू वरी, हम थोड़ी देर में फिर से पूछेंगे बॉलीवुड सरताज का सवाल। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौट के आते हैं, आप कहीं मत जाएगा। ढेर सारी बातें करनी है, बॉलीवुड के बर्थडेज बताने हैं, बॉक्स ऑफिस की क्या, कौन सी फिल्म मैंने कितनी सफलता हासिल की है, ये भी आपके साथ शेयर करना है। सो स्टिक अराउंड।
1: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
3: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
2: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
4: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से इन्फेक्टेड

0: ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं,
1: इग्नोर नहीं, याद करो।
2: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
5: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
4: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
5: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
6: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
7: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

यहाँ अगर आपके मन का हुआ तो आपने डांस तो जरूर ही किया होगा. लेट्स से कोई गाना, कोई म्यूजिक, कोई ऐसा जश्न का माहौल. कभी आप जब यू नो अच्छे नंबरों से पास होते हैं तो उसकी भी खुशी अलग होती है. ऐसे कुछ कह रही हैं करीना कपूर, जिन्होंने 11वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी. अच्छा, सीरियसली मुझे भी इनफैक्ट ये थोड़ा सा सुन के अचानक से सरप्राइजिंग लगा. आई थॉट ग्रेजुएशन तो की होगी, बट देन नहीं, बिकॉज इनको पहले ही फिल्म मिल गई थी अपनी 17-18 साल की उम्र में. 19 साल में वो रिलीज हो गई थी. फिल्म थी, आप सभी को पता है, बॉर्डर से इन्होंने अपना डेब्यू किया था करीना कपूर ने. एंड शी वॉज जस्ट 19, शॉर्ट ऑफ टर्निंग 20. तो फिल्म जब रिलीज हुई, और करीना आज तक रिग्रेट करती हैं कि उन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की और करियर की तरफ, इसीलिए वो अपने बच्चों को पूरी पढ़ाई कराना चाहती हैं और साथ ही साथ यूनिसेफ के गर्ल चाइल्ड इनिशिएटिव के साथ 2014 से जुड़ी भी हुई हैं. वैसे करीना, अच्छा ही किया आपने पढ़ाई छोड़ दी. ज्यादा पढ़ लिखने से भी क्या होता, बैंकर बन जाती तो फिल्म इंडस्ट्री का नुकसान हो जाता. सो यू आर अंडरस्टैंड, आई थिंक दैट इज व्हाट वाज डेस्टिन्ड टू बी. लेकिन इट्स नेवर टू लेट, आप चाहें तो अभी भी पढ़ सकती हैं. वैसे पढ़ाई तो हो ही रही होगी ना, घर में दो प्यारे छोटे बच्चे हैं, पढ़ाते पढ़ाते आपका रिविजन भी हो ही रहा होगा. तो अब बच्चों के साथ साथ जैसे वो तीसरी चौथी पांचवी में पहुंचेंगे, आप 11वीं के तक जब उन्हें पढ़ाएंगी तो अपनी पढ़ाई साथ कर लीजिएगा. 11वीं 12वीं, और 11वीं फेल नहीं, 12वीं पास.

वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स. और हमारा आज का सवाल एक बार फिर से दोहरा देते हैं. बहुत से मेरे पास सही जवाब आ रहे हैं. एक व्यक्ति ने तो लिख के भेजा है कि भाई उनको जवाब नहीं पता, तो आज ये सरताज का ताज उनके सिर पे नहीं होगा. इतनी जल्दी हार क्यों मान सकते हैं आप, मुझे बताइए. आप इंटरनेट के जमाने में, अरे भाई नहीं पता तो खोज लो, खोज नहीं सकते तो किसे पूछ लो, पूछ नहीं सकते तो फिर मौज लो. हमारा सवाल है कि क्रिश 3 के अंदर जो 2013 में मूवी आई थी, विवेक ओबराय ने एक किरदार निभाया था, आपने उस किरदार का नाम बताना है. और हो सकता है आप बन जाएं आज बॉलीवुड सरताज. हमें भेजिए 9868107070 पर व्हाट्सएप करके अपने नाम के साथ. रहिए अपने फोन के आसपास. आई माइट जस्ट कॉल यू टुडे.

करीम आए कहां से री बरखा। जैसे हमने आपको पहले बताया आज है शक्ति कपूर साहब का भी बर्थडे, जिन्हें ओरिजिनली जिनका नाम था सुनील कपूर, लेकिन उन्हें सुनील ने ही खोजा। शक्ति कपूर को सुनील दत्त साहब ने खोजा था, और जब उनको रॉकी फिल्म के लिए एज अ विलन साइन किया तो उन्हें लगा कि इनके नाम में उतना दम नहीं है, तो क्यों नहीं सुनील को थोड़ा उस नाम को शक्ति देते हैं, और शक्ति देते देते उन्होंने नाम को ही शक्ति कपूर कर दिया। और क्या

0: वो छाए हैं। किरोड़ी मिल कॉलेज से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है, दिल्ली में इनका बचपन बीता है और इनके पिता की दुकान रही कपड़ों की कनॉट प्लेस में, हमारे जहां से हम आप तक पहुंचे बड़े आसपास में ही, हम खुद भी आज तक शॉपिंग करने वहां जाते हैं। और शक्ति कपूर साहब ने क्या बेशुमार किरदार निभाए हैं, लेट इट बी अ विलनियस रोल और चाहे कॉमेडी हो, मैं कॉमेडी का उनका खास तौर से बहुत दीवाना हूं। आऊ आऊ जो उनका है, आऊ ललिता, वो तो इतना फेमस है, उसके अलावा ढेरों किरदार निभाए, कितनी फिल्में, कितनों का मैं नाम लूं, चाहे फिल्म राजा बाबू हो, अंदाज भाई, गुंडा, अंदाज अपना अपना, कुर्बानी, आंखें, आग, हीरो नंबर वन, और पूरी एक लंबी फेहरिस्त है जिसके अंदर कादर खान साहब के साथ और गोविंदा के साथ इनकी जुगलबंदी और जोड़ी बहुत मशहूर रही है। तो शक्ति कपूर, आओ कपूर साहब, आपको ढेर सारी जन्मदिन की ढेरों ढेरों बधाई। हम चाहते हैं आप इसी तरह से अच्छा काम करते रहें और दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करें। आकाशवाणी की तरफ से विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। लेंगे छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: Mangal Bhavan, Mangal Hari.
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: हमने आज आपसे पूछा, आपको अगर बनना है बॉलीवुड सरताज तो सवाल था। 2013 में आई फिल्म क्रिश 3 के अंदर विवेक ओबेरॉय ने जो किरदार निभाया था उसका नाम बताइए। हमने तो आपको इतने हिंट देने की भी कोशिश की, वैसे बहुत सारे सही जवाब आए हैं, उसमें से हमने इनको एक को चूज किया है। हमारे साथ वो इस समय फोन लाइन पे हैं। लेट्स सी कौन है। हेलो
1: हेलो,
0: गुड मॉर्निंग, नमस्ते।
1: नमस्ते मैडम, नमस्ते सर।
0: नमस्ते मैडम, नमस्ते सर, नमस्ते सर। हजूर क्या हो गया है इतनी बार? ठीक है, कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन हो जाती है। ऑफिस में बैठे हैं इस समय आप?
1: हाँ जी।
0: चलिए ठीक है, तो ये बताइए हमारे सवाल का सही जवाब क्या है।
1: क्रिश 3 में विवेक ओबेरॉय जी का रोल का नाम था काल।
0: काल, क्या बात है। काल को अगर उसका शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो यानी टाइम हो सकता है, एरा हो सकता है, या फिर मृत्यु। तो खैर वो ऐसा ही था, विध्वंसक रोल उन्होंने किया था जहां वो सब कुछ खत्म करना चाह रहे थे। ऐसा असल दुनिया में भी ऐसे बहुत से ऐसे मौके बन जाते हैं कि जहां दुनिया का अस्तित्व बहुत बहुत छोटा लगने लगता है। गलत तो नहीं कहा मैंने?
1: बिल्कुल ठीक।
0: अच्छा अपना नाम तो बताइए सर, मैं नाम ही बता।
1: अनिल शाह।
0: अनिल शाह, आपकी आपकी हॉबीज है आपने कहा मूवीज देखना।
1: हाँ जी।
0: और अभी जो लेटेस्ट आपने देखी है टॉक्सिक देखी है?
1: टॉक्सिक।
0: मजा नहीं आया ऐसा सुनने में आ रहा है ना? लाइफ में भी ऐसा मैंने बहुत कुछ सोचा था वैसा होता नहीं। लेकिन देखिए थिएटर हॉल की फिल्म तो 3 घंटे में खत्म हो जाती है, लाइफ तो बहुत लंबी होती है हुजूर। उसमें खैर आप चेंजेस भी कर सकते हैं, डोंट वरी, आप हॉल से बाहर जा सकते हैं, लाइफ से बाहर नहीं जाने को कह रहे, लेकिन लाइफ के अंदर आप बदलाव ला सकते हैं। गलत तो नहीं?
1: ठीक ठीक।
0: तो शाह साहब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आज आप बनते हैं बॉलीवुड सरताज, टेक केयर, कॉन्ग्रेचुलेशंस।
1: थैंक यू,
0: बाय जी, बाय। अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आई अंडरस्टैंड ऑफिस का माहौल होता है, पीछे बड़ी सारी ऐसी बातें हो रही हैं जो मैं ना थोड़े टाइम में हम बात की और बहुत अच्छी बात हुई जहां पे इनको हमने आज सरताज भी बनाया है। तो जिन लोगों का आज मौका नहीं लगा, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। नहीं जी नहीं, असि थोड़ी पूरी केयर कर दे, इस करके थोड़े नाल गल कर दे, असि है बॉलीवुड ट्रेल्स ते तुसी हो साडे दिल च आकाशवाणी रेनबो।

0: ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਅਰ ਜੀ।
1: ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
0: ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ?
1: ਟਾਈਮ ਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
0: ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਸਪੇਅਰ।
1: ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
0: Right, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स और हम यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं कि एक आने वाली मूवी है जिसका ट्रेलर रिलीज हुआ है, 18 सितंबर को आएगी। फिल्म है वाइब और फिल्म के अंदर यू नो आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम प्रीति जिंटा को आप देखेंगे काम करते हुए। और प्रीति जिंटा जैसा अभी सब लोग जानते हैं कि मुंबई में नहीं रहती हैं, अमेरिका में रहती हैं। उन्होंने एक विदेशी से शादी की थी और अब उनके वहाँ पे फैमिली है। तो वाइब के लिए शूट करते हुए, इट्स अ कॉमेडी सॉर्ट ऑफ है ना मूवी, तो ये 18 घंटे तक काम कर रही थी और कह रही हैं कि दीपिका जो हैं वो 8 घंटे के लिए कहती हैं और हम 18 घंटे काम मैं इसलिए भी कर रही थी कि मैं सब कुछ जल्दी से जल्दी अपना यू नो अपना पार्ट पूरा प्ले करके और मैं वापस अपने बच्चों के पास अमेरिका जाना चाहती थी। तो यही बात तो दीपिका कह रही थी कि वो जल्दी से 8 घंटे काम करके रोज अपने बच्चों के पास जल्दी जाना चाहती हैं। खैर दो नजरिए एक ही कारण, वर्क बैलेंस फैमिली बैलेंस कैसे की जाए, इट्स वेरी टफ बट यस पीपल डू इट। बॉम्बे शहर की उमड़ती घुमड़ती ये लहर, बॉलीवुड ट्रेल्स आप तक।

जी हाँ, बस चलने का समय है, लौट के आएंगे, आपसे मिलेंगे। अगला कार्यक्रम रहेगा पूजा आनंद के साथ। और चलते चलते ही बताना चाहता हूँ कि बॉक्स ऑफिस पर जो टॉक्सिक फिल्म है उसका बिजनेस डाउन चलता गया और उसकी अभी तक वर्ल्ड वाइड जो उसने कमाया है लगभग 280 करोड़। लेकिन क्योंकि बनाने में कीमत बहुत लगती है, उसके अलावा एक मूवी है हनुमान अंश जिसने कम कीमत पर ढेर सारा बिजनेस करके सबको चौंका दिया है। एंड इट्स गोइंग रियली ग्रेट। तो आप रहिएगा पूजा के साथ प्लेट कूल में, रंजन को दीजिए इजाजत, टेक केयर, बाय बाय।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

दिल के तराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: है?
1: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
2: अरे come on guys, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
3: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
4: इग्नोर नहीं, याद करो।
5: HIV AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट AIDS कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
8: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

0: lessons I've learned that will help me through my life. We'll give you a couple of seconds to take a break. We'll be back with what I feel I've learned in my life with a couple of people around me.
1: Koyal si teri boli.
2: Aye, aye.
1: Tere chhi nazar mein hai jadoo.
2: Arey, besure gaane kyon suna rahi ho mujhe?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन के बीच शिष्टमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने भविष्य की परियोजनाओं के लिए आपसी सहयोग करने पर बल दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापारिक सम्मेलन में निवेशकों के समक्ष भारत की सुधार आधारित विकास की चर्चा की। कहा, वैश्विक व्यवधानों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। भारत और फ्रांस ने वस्त्र और फैशन क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्रों और कौशल को बढ़ावा देना है। प्रवर्तन निदेशालय नशीले पदार्थों से जुड़े अलग अलग मामलों में केरलम, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना में 30 परिसरों में बड़े स्तर पर छापेमारी कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOAS-5 का कल प्रक्षेपण करेगा। ये उपग्रह GSLV-F-17 रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। लद्दाख में आगामी 2 दिवसीय द्रास महोत्सव 4 और 5 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की। और खेलों में किदांबी श्रीकांत ने चीन मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और महिला एशिया कप 2020 में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। तो ये थे आकाशवाणी पर 1 बजे के FM रेनबो मुख्य समाचार।

आकाशवाणी रेनबो पर लीजिए प्रस्तुत हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधान

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी। आज है बृहस्पतिवार, दैट्स थर्सडे, एंड एक बज चुके हैं और आप जानते ही हैं ये खास कार्यक्रम आप तक पहुंचता है हफ्ते के कुछ दिनों में, जिसमें आज थर्सडे से इसकी शुरुआत हो जाती है। तो प्रोग्राम का नाम है मेरा वाला सॉन्ग और मुझे चाहिए आपका नाम आपकी पसंद के साथ। क्यों? बिकॉज यही तो कॉन्सेप्ट है इस कार्यक्रम के अंदर। जब तक आप मुझे अपनी रिक्वेस्ट नहीं भेजेंगे, अच्छा रिक्वेस्ट नहीं करना आपकी शान के खिलाफ है, तो डिमांड कर दीजिए सर, ऑर्डर कर दीजिए और हम आपकी पसंद का गाना प्ले करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। उसके लिए हमारे को हमें चाहिए होता है हमारे कंप्यूटर का साथ, और मोस्ट प्रॉब्ली और मोस्ट ऑफ टाइम्स हमारे साथ वो इस बात पे पूरा हमारा साथ देते हैं। तो फिल्म का नाम लिखिएगा, गाने का बोल लिखिए, अपना नाम लिखिए और भेज दीजिए 9868107070 पर 98 68 10 70 70। तो भेजिए अपनी पसंद का गाना, मैं करूंगा उसे क्यों क्यों क्योंकि आपकी पसंद बजाना हमारा फर्ज है।

जी हाँ, सचमुच बाहर जो मौसम हो रहा है वो बिल्कुल ऐसा ही है, बादल छाए हैं और धूप खिली है और मैं खुश हूँ और मैं चाहता हूँ ये खुशी मैं आप तक भी बांटूँ जितना छोटा मोटा मैं प्रयास कर पाता हूँ। क्योंकि देखिए, आप और हम कुछ अलग थोड़ी ना है, मैं आप ही की तो आवाज़ हूँ और आप ही के जब दिल में कोई उमंग उठती है, दिमाग में कोई तरंग बहती है और वो कहती है कि हमें ये गाना सुनना है, तो मैं आप तक पहुँचाने के लिए पूरे प्रयास में लग जाता हूँ, जुट जाता हूँ। जैसे कोलार रोड भोपाल से रामबाबू मालविया, मनीषा मालविया, फिल्म चमत्कार के जिस गाने की इन्होंने रिक्वेस्ट की है वो हम आपके लिए प्ले करने जा रहे हैं। एंड द सॉन्ग इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो। क्यों क्यों ना देखें? अच्छा, प्यार हो जाएगा। हम जानते हैं आपको अपने प्यारे गानों से बहुत बहुत लगाव है, प्यार है, तो झटपट भेजिए अपना संदेश 9868107070 पर। प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग जो आपको जोड़े रखे, एक संदेश एक देश।

0: प्यार। कुमार सानू साहब की मकबली आवाज में आप गाना सुन रहे हैं, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा,
1: प्यार हो जाए।
0: देखिए इतना भी क्या कहना, हम जानते हैं कि आपको बहुत लगाव है, प्यार है, प्रेम है, अपनापन है आकाशवाणी रेनबो के संग। तभी तो आप इतने ढेरों बेशुमार मैसेजेस भेजते हैं, जैसे सीमा ने मेरठ से भेजा है, अकेले हैं तो क्या गम है, QSQT से बजा दीजिए, दैट्स कयामत से कयामत तक। तो सीमा आपको इशारा तो मिल ही गया होगा, अगर आप हमें सुन रही हैं तो हाँ, हमने आपका खाना मेरे वाला सॉन्ग आपका हमने खोज लिया है। एंड व्हाट अ ब्लॉकबस्टर मूवी, जब ये आई थी ये मूवी तो ऐसी छाई थी कि आमिर खान एंड जूही चावला उन्होंने फिर उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक तरह की बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कयामत बरसाई थी। अकेले तो आपको, देखिए जो भी लिसनर हमें सुन रहे हैं, आप अकेले कैसे हो सकते हैं, जब भी आप अकेले होते हैं आप इस फ्रिक्वेंसी को याद कीजिए, अपनी फ्रिक्वेंसी हमसे मैच कीजिए, 102.6 MHz, सबके दिल के करीब,

0: जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो और मैं हूँ आपके साथ रंजन। कार्यक्रम है आपका अपना पसंदीदा मेरा वाला सॉन्ग। अगर आप पहली दफा हमारे साथ जुड़े हैं तो आपका ढेरों ढेरों स्वागत करते हैं हम आपका। और हम ये जानना चाहेंगे कि अब भाई एक्चुअली हम बात क्या कर रहे हैं। कार्यक्रम है मेरे वाला सॉन्ग, इसमें आप अपनी पसंद के गाने रिक्वेस्ट करते हैं। नंबर रहता है 9868107070 9868107070। इस पर आप हमें व्हाट्सएप करते हैं, फिल्म का नाम और गाने के बोल लिखते हैं अपने नाम के साथ और हम पूरा प्रयास करते हैं। जैसे देखिए अभी किसी ने जॉनी मेरा नाम से एक गाना, क्योंकि कल जन्माष्टमी है उसके उपलक्ष्य में एक गीत है, वो भजन नुमा गीत है, कृष्ण जी की बात हो रही है उसमें, और मुझे वो नहीं मिला मेरे कंप्यूटर में। उसके अलावा बहुत सारे गाने हैं तो आप अपनी दूसरी रिक्वेस्ट कीजिएगा। इसके अलावा बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं। छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेंगे, लौट के आते हैं, आप कहीं मत जाएगा। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक तो बनता ही है।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।
4: कोयल सी तेरी बोली,
5: आय हाय,
4: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
5: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
4: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
5: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
6: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
7: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

जी हाँ, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप सुन रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग, मैं हूं आपके साथ रंजन, और हमारे साथ आपके ढेर सारे मैसेजेस आ रहे हैं। जैसे सब प्रेम नमस्कार लिखा है और नाम है इनका हीरा मणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र।

मणि वर्मा एंड नोखेलाल वर्मा, छत्तीसगढ़ भाटापारा से इन्होंने लिखा है, दंतरेंगी भाटापारा से, कि बांसुरिया अब यही पुकारे ये तो बोल हैं और बलवा फिल्म का ये गाना है। तो काफी मशक्कत के बाद ये गाना आपके लिए हम लेके आए हैं भाई। क्यों पसंद है लिख के भेजिएगा, अब हमने आपकी पसंद आपकी आपकी नजर कर दी है, तो इस गाने का लुत्फ उठाइए आकाशवाणी रेनबो के साथ।

ये आपने आवाजें हैं आशा भोसले और कुमार सानू की इसमें, एंड बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं चाहूंगा यहाँ कुछ एक लोगों के मैं यहाँ नाम लेना चाहूंगा और इनमें से किसी एक का जो रिक्वेस्ट है वो तुरंत आफ्टर आई टेक देयर नेम्स मैं बजाना चाहूंगा। गुड्डू धाकड़ उज्जैन से इन्होंने हमें मैसेज किया है। इसके अलावा हमारे पास मैसेज जो आया है अमरदीप कुमार का, कुप्पमपट्टी जलाकंडापुरम बाजार सेलम जिला तमिलनाडु से, और सनम बेवफा फिल्म का ये गाना सुनना चाहते हैं। आई सी इफ आई कैन प्ले दैट, मगर आपका नाम हमने ले लिया। मतलब आप सब लोग कतार में हैं, चिंता मत कीजिए। सर आपको देवभूमि उत्तराखंड से नैनीताल से आपको सादर प्रणाम। नीरज लिखते हैं हमारे पास, थैंक यू सो मच, आपको भी सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। दीवाने मूवी का टाइटल सॉन्ग सुना दीजिए। यू नो गिव इट अ ट्राई, मैं कोशिश करता हूँ, मैं मेरे कंप्यूटर साहब मेरे साथ राजी हों तो हमें किस बात की यू नो मनाही है। दीक्षा गुरुग्राम से बड़ा एक दिलचस्प मैसेज भेजा है, पहले मैं मैसेज पढ़ देता हूँ। आपका शो सुन के अच्छा लगा, मैं ये गाना अपनी प्यारी सी नीस के लिए रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज इनमें से कोई एक गाना जरूर लगाएं। ठीक है जी, लगा दिया आपका आपका गाना हमने क्यू कर दिया, रिक्वेस्ट आपकी हमने अपनी लिस्ट में ऐड कर ली है। ईचक दाना बीचक दाना फ्रॉम श्री 420, या फिर नन्ना मुन्ना राही हूँ बूट पॉलिश से। खैर दीक्षा जी एक बात बताइएगा, आप अपनी नीस के लिए ये रिक्वेस्ट कर रही हैं, मैं समझ गया। इतना पुराना गाना, वो नीस तो आपकी आजकल की जनरेशन अल्फा होंगी, मुझे लगता है अल्फा जन से होंगी। खैर आपकी पसंद जो आप चाहें वो हम आपके लिए लेके आते हैं और आप

पसंद का गाना हम लेके आए हैं फ्रॉम द मूवी श्री 420, लता मंगेशकर जी की आवाज में खूबसूरत गाना, इचक गाना।

0: बोलो क्या, बोलो ना।
1: वो इटक दाना बीटक दाना दाने ऊपर दाना इटक दाना।
2: जी हाँ, इटक दाना बीटक दाना बहुत ही यू नो पजल्स, पहेली बुझाने वाला, जहाँ पे आपको कोई क्या कहते हैं उसको, पजल ही तो जहाँ आप कुछ कहते हैं और उसको इशारों में बताते हैं जिससे आपको बूझना होता है। बड़ा खूबसूरत गाना है, इट्स एवरग्रीन। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं, आपका हिम्मत जाएगा, आपकी रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही हैं, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखिए डिपेंड्स, क्योंकि एक घंटे के कार्यक्रम में कुछ एक ब्रेक्स लेनी होती हैं, आपसे बातें करनी होती हैं, बीच बीच में गाने जो हम प्ले करते हैं, तो सबकी रिक्वेस्ट पूरी हो ऐसा नहीं है, लेकिन अभी तो आधा कार्यक्रम हमारे पास बाकी है, सो हो सकता है अगला गाना आपका हो। स्टे ट्यून्ड, सुनते रहें रेनबो।
3: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, अ मोमेंट वेयर लीडर्स, इनोवेटर्स, बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज फ्रॉम द ब्रिक्स नेशंस कम टुगेदर टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स। India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है, ना साथ खाना खाने आता है, तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?

0: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
1: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
2: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
3: इग्नोर नहीं, याद करो।
4: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
6: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
5: अल्फा जेन,
6: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
7: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
9: वेलकम बैक जी, पुनः स्वागत है आपका। छोटे से अंतराल के बाद, छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर से आपके साथ जुड़ गए हैं। श्रेयांश लिख रहे हैं मेरठ से, कैन यू प्लीज प्ले द सॉन्ग चला जाता हूं बाय किशोर कुमार। दोस्त देखो, दोस्ती में दो चीजें नहीं होती, एक थैंक यू और एक सॉरी। हाँ, ये तीसरा प्लीज भी नहीं होता है दोस्त। मैं तो हुई आपके लिसनिंग प्लेजर के लिए यहाँ पर, और आपने जो रिक्वेस्ट किया, जो डिमांड किया, वो मैंने यहाँ पर कंप्यूटर कमांड किया। तो श्रेयांश हो जाइए खुश, आपकी पसंद आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन पर मेरा वाला सॉन्ग चला जाता हूं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। आप चाहें तो हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एयर ऐप से, और उसके माध्यम से आप ना सिर्फ रेनबो बल्कि हमारे तमाम प्रसार भारती के कार्यक्रम सुन सकते हैं और दूरदर्शन के कार्यक्रम देख सकते हैं। तो इससे बढ़िया तो क्या ही हो सकता है। थोड़ा डेटा चार्ज अप्लाई करता है, एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज फ्री। जैसे हम बिल्कुल फ्री माइंड से आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं। भगवती जी, आपका मैसेज हमारे पास पहुंच गया है एंड नमस्कार लिखते हैं। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी, पूरे देशवासियों को, पूरे दुनियावासियों को, क्योंकि कृष्णा आपको हर जगह मिलेंगे, हर किसी के दिल में। हाँ, जो हमारा भारतवासी कहीं भी चाहे रहे दुनिया में। और आप ही की पसंद का, आपने तीन चार पसंद यहां पे लिखी थी, उसमें से एक पसंद मैं लेके आया हूं। श्याम तेरी बंसी फ्रॉम द मूवी गीत गाता चल।

सचमुच हमारे देश में कितने ही त्योहार आते हैं और हर एक की अपनी एक महिमा है, एक परंपरा है। और आमतौर पे आप देखिएगा, स्कूल में कभी ना कभी बच्चों को आपने छोटा सा कृष्णा बना के भेजा होगा, या फिर जन्माष्टमी के दिन घरों में लोग झांकी सी एक लगाते हैं जिसमें अपने घर के बच्चों को, रिश्तेदारों के बच्चों को कृष्णा राधा का रूप दे के सजाते हैं। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार किया गया जब मैं छोटा सा था। कहीं आप भी ऐसा करते हैं? आजकल बहुत कम हो गया है क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए लोग जुड़ते हैं, अब समय कहाँ है किसी से मिलने का। खैर, साजिद कुरैशी का हमारे पास मैसेज आया खतौली उत्तर प्रदेश से। लिखते हैं, सर आशिकी फिल्म का कोई भी सॉन्ग सुना दीजिए। तो वेल, जब आपने मेरे पे, बहुत सारे मेरे पास आशिकी के लगभग गाने थे, आपने मुझे ही ऐसी कंफ्यूजन में डाल दिया, तो मैंने सोचा कि कौन सा आपके लिए गाना प्ले किया जाए। मैं दुनिया भुला दूंगा पहले मेरे दिमाग में आया, मतलब नजर में आया, तो मैंने कहा नहीं, अच्छा गाना है यार, ये बजाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद नजर के सामने जिगर के पास, ये गाना मुझे समहाउ लगा कि ये प्ले करना चाहिए, तो यहां जा रहा है आपके लिए, आप इसे एंजॉय कीजिए। कुमार सानू एंड अनुराधा पौडवाल की आवाज में आशिकी ने भी अपने आप में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया था कि वो दौर में इस तरह की प्यार भरी मूवी जहां फाइट्स और मार धाड़ वाली फिल्में रिलीज हो रही थी, और इस तरह का चार्ट बस्ट म्यूजिक लेके आना लीक से हटके अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और आपकी पसंद आप तक पहुंच रही है फ्रॉम आकाशवाणी रेनबो प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग। अगर आप चाहें हमें रिक्वेस्ट करना तो नंबर है 9868107070। सुनते रहिए धड़कते दिल के साथ आकाशवाणी रेनबो।

अभी आपने सुना वो था इसका एक एक सैड वर्जन, द रियल सॉन्ग इज दिस, जाने जिगर जाने मन जाने जहां, आशिकी फिल्म से आपके लिए अनुराधा एंड कुमार सानू की आवाज में। अरे यार थोड़ी देर के लिए तो मैं भी स्टम्प्ड हो गया था कि गाना शुरू क्यों नहीं हो रहा है।

0: क्लास बोल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

स्वागत ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का कार्यक्रम मेरा वाला सॉन्ग। रजत सर आदाब लिखते हैं, आप मेरा नाम गलत कैसे लिखते हैं ये बताइए। अब तो कितने जमाने से आप मुझे सही नाम से संबोधित करते थे, बट क्योंकि हो सकता है ऑटो करेक्ट हो गया, कोई बात नहीं। कल शाम को ही मैं किसी से बात कर रहा था इसी नाम के ऊपर। अरे सोना है, मैं सोना है, अपुन चांदी नहीं है। पुष्पा समझ के फ्लावर समझाए क्या, पायर है मैं। बुलंदशहर से MS अब्बासी और उनका पूरा परिवार, नाम है फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया एंड ताहिरा। आपने पसंद किया है गाना जीने की राह फिल्म से, और जो गीत है वो मैंने आपका कौन से वाले कंप्यूटर में क्यों किया भाई, आपका जो गीत है वो मैं बजाने जा रहा हूँ आने से उसके आए बहार, मोहम्मद रफी साहब की आवाज में।

0: जी हाँ, बस अब ज्यादा समय नहीं है मेरे को। क्लॉक इशारा कर रही है कि जाने का समय हो गया है, मगर जाते जाते कुछ एक नाम लेंगे और आपकी पसंद का गाना जरूर बजाएंगे। लास्ट सॉन्ग प्रकाश शिंदे लिखते हैं मानखुर्द मुंबई से, और कहते हैं कि आज मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, आपकी बात मेरा दिल छू गई दोस्त। वैसे देखिए, आपका पहले मैंने गाना कोशिश की थी, आपकी फिल्म का गाना भी मैंने क्यू करके रखा था, लेकिन मैंने टाइटल सॉन्ग क्यू कर लिया था। अच्छा हुआ ना मैंने गौर से देखा आपने टाइटल नहीं दूसरा सॉन्ग मांगा है, बहुत जताते हो चाह हमसे। मुझे बड़ा पसंद है गाना। वैसे इसी गाने से हम इस कार्यक्रम को अब विराम देंगे, खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन अगली बार मिलूं उससे पहले बता दूं, आगे बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम लेके आएंगी गीतिका, और साथ ही साथ एक स्पेशल भी है। गीतिका आप खुद ही बता दीजिए ना अपनी आवाज़।
1: जी, आप सभी जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं हम आपको दे रहे हैं, और आपको बताना चाहते हैं कि विशेष कार्यक्रम है पूर्व संध्या पर, और स्वधर्म राह कृष्ण की आशुतोष शर्मा हमारे साथ होंगे, पुराणविद हैं, और आपसे कृष्ण पर आज चर्चा करेंगे।
0: राइट, एक कारण ये भी था ना, आपकी हैंड राइटिंग में समझ नहीं पा रहा था। सो इसीलिए जब आप स्टूडियो में आ ही गई हैं तो मैं यही कहता हूँ कि मुझे यहाँ से जाना है, और आप रहिएगा हमारे स्पेशल गेस्ट के साथ एंड गीतिका के साथ। रंजन को दीजिए इजाजत, आपके जिनके मैं रिक्वेस्ट नहीं ले पाया बस यही कहूंगा कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय, एंड जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को।

शिष्टमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने भविष्य की परियोजनाओं के लिए आपसी सहयोग करने पर बल दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापारिक सम्मेलन में निवेशकों के समक्ष भारत की सुधार आधारित विकास की चर्चा की। कहा, वैश्विक व्यवधानों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। भारत और फ्रांस ने वस्त्र और फैशन क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्रों और कौशल को बढ़ावा देना है। प्रवर्तन निदेशालय नशीले पदार्थों से जुड़े अलग अलग मामलों में केरलम, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना में 30 परिसरों में बड़े स्तर पर छापेमारी कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह IOS-5 का कल प्रक्षेपण करेगा। यह उपग्रह GSLV-F-17 रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। लद्दाख में आगामी 2 दिवसीय द्रास महोत्सव 4 और 5 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की। और खेलों में कादम्बी श्रीकांत ने चीन मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। महिला एशिया कप T20 में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। बनी रहिए हमारे साथ।

नमस्कार, पेश है एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेबर ने आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों नेताओं ने संयुक्त वक्तव्य जारी किया। भारत और बेल्जियम ने रक्षा, साइबर क्राइम, डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग पर कई ज्ञापन समझौते किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रांकन के बीच

0: वाणी आकाशवाणी।
1: नंदन वंदन अभिनंदन, आप सभी श्रोताओं का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। और आज का हमारा ये कार्यक्रम एक विशेष कार्यक्रम है। जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर ये विशेष कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं, स्वधर्म रहा कृष्ण की। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आज कृष्ण पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पुराणविद आशुतोष शर्मा जी। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हर घर में दीप प्रज्वलित होने शुरू हो गए हैं। कृष्ण जन्माष्टमी ये उत्सव मनाने के लिए सभी भारतवासी कह सकते हैं कि आतुर हैं, क्योंकि पूरे साल भर इंतजार किया जाता है कि कृष्ण जन्म, इसका उल्लास मनाया जाएगा प्रेम के साथ, सद्भाव के साथ। और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का तो वर्णन हम हमेशा करते हैं, चाहे उनकी कोई भी अवस्था क्यों ना हो, चाहे वो बाल अवस्था हो या वो अवस्था जहां वो स्वयं गुरु बन गए अर्जुन के। लेकिन अगर जन्माष्टमी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो कृष्ण का जन्म है वो हम सभी के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणादायक है, और इसीलिए सभी व्रत नियम करते हैं और फिर कृष्ण जन्म इस उत्सव को मनाते हैं। सबसे पहले हमें आप ये बताएं कि कृष्ण जन्म अपने आप में कैसे अलौकिक है।
2: सर्वप्रथम सभी श्रोताओं को इस जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं केवल भारतवर्ष नहीं बोलूँगा, यहाँ तक कि इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को मैं इस बधाई को दूंगा, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है अयम निजम परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, कि यह पूरी वसुधा अर्थात पृथ्वी जो है इस पर रहने वाले सभी जीव ये हमारे भाई बहने हैं, हमारे परिवार है। जब इसको हम एक रूप मान लेंगे तो भगवान की कृपा रूप हमारे ऊपर सार्थक हो जाएगी, पर हमारे को महसूस नहीं हो पाती, कारण हम इस जीवन में अलग अलग व्यवहार में आए हैं। जरूरी नहीं आज हम मानव हैं तो और जीव जंतु भी हैं। जैसा कि शास्त्रों में बताया कि चार प्रकार के जीव पैदा हो जाते हैं, जरायुज अंडज स्विदज उद्भिज, जैसे पेड़ पौधे हैं वो भी जीव हैं, जीव जंतु हैं वो भी जीव हैं। तो इन सबके ऊपर क्या उनको मुक्ति की ओर अग्रसर होना आवश्यक नहीं है? सदैव आवश्यक है, लेकिन इसकी कृपा कैसे महसूस हो इसके लिए जरूरी है हम अपने चित्त की अवस्था को पहचाने। उस पहचान को प्राप्त करने के लिए भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं, इस कृपा का ही स्वरूप है भगवान का जन्म। इसीलिए जन्म हमारे लिए एक सार्थक तत्व है जो

0: अरे आत्मतत्व को बताता है। अन्यथा यदि जीवों की बात करें तो सभी जीव तो कर्म बंधन में बसे हुए हैं। तो कर्म है तो कर्म का बंधन भी है, पाप पुण्य भी है, सुख दुख भी है, लेकिन भगवान आते हैं तो वो दुख में भी सुख बना देते हैं और अन्य जीव जंतुओं की कृपा प्राप्त जिस पे हो जाती है उनके जीव के प्रभाव को भी वो भोग जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे भगवान को जन्म का रूप नहीं दिया गया, अवतार रूप दिया गया। अवतार का अर्थ क्या है कि जो गर्भ के अंदर ना आए। ऐसे विशेष अवतार के रूप में यदि हम देखें तो भगवान कृष्ण का चरित्र एक विशेष तत्व को बताता है, क्योंकि अन्य सभी जीवों के अंदर यदि हम देखें तो अवतार इस रूप में हुआ कि वो साक्षात आए, गर्भ में नहीं गए, लेकिन एक श्री कृष्ण का अवतार ऐसा हुआ जो गर्भ से द्वारा नहीं आने पर भी गर्भ में गए। किस लिए गए? अपने जन्म के लिए नहीं गए, अपने भक्तों के लिए गए। और ये प्रमाण है जब परीक्षित को बचाया, जिसका नाम बचपन का था विष्णु राज्य, कि वो जब गर्भ में थे उत्तरा के तो देखा कि कौन मुझे बचा रहा है इस ब्रह्मास्त्र से, तो बचाने वाले को देखने लगे तो उन्होंने विष्णु को देखा। और आने के बाद वो सबको देखते गए कि कौन वो है जिसने आज तक मुझे बचाया। जब इस संसार में आए तो ढूंढते ढूंढते सबकी परीक्षा कर रहे हैं, उस परीक्षा करते करते उनका नाम क्या हुआ? परीक्षित। तो वास्तविकता में हम सभी परीक्षित बन जाए तो हमारा जन्म सार्थक हो जाएगा। ये है सत्य इस भगवान कृष्ण का।
1: जी, एक प्रश्न यहाँ पर और पूछना चाहती हूँ। जैसा आपने कहा कि वो माँ के गर्भ से नहीं, लेकिन स्वरचित जैसे हम कह सकते हैं, लेकिन सृष्टि की जो धारा है, जिस तरह से सृष्टि चलती है और जिस तरह से प्रत्येक मनुष्य जीवन आता है और अपने कर्म करता है और फिर एक अलग यात्रा के लिए निकल जाता है, कृष्ण का जन्म अपने आप में हमें ये सिखाता है कि तमाम विपदाओं के बावजूद आपको अपने कर्म करने नहीं छोड़ना है। जितना भी हम पुराणों में पढ़ते हैं कृष्ण जन्म के बारे में खास तौर पर, तो कहीं ना कहीं हमें ये महसूस होता है कि अगर कृष्ण अपने लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के बाद भी उनसे लड़कर उस अपने कहते अपनी मंजिल तक पहुंच सकते थे, सके वो, और उन्होंने तमाम विपदाओं से लड़ाई की, तो क्या कहीं ना कहीं ये मानव जाति के लिए प्रेरणा स्वरूप है?
0: इसको यदि देखें तो अवतारवाद की अगर हम एक व्यवहारिक परिरूप रेखा देखें तो आप देखेंगे इससे पहले राम जी का जन्म हुआ, तो राम जी के लिए कहा गया कि जो राम ने करा वो करो। इसीलिए राम ने गुरु को माना, गुरु के आश्रित होके चले, उनका कोई भी काम बिना गुरु के पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन वो स्वयं तो गुरु नहीं बने। तो करते करते जीवन की यात्रा जब होती है तो राम का अर्थ क्या है? रमन्ते हर्षितम योगिनः, अर्थात जो रोम रोम में हमारे बसा रहे, जो चैतन्य रूप जागृत रखे, जिसका स्वयं जागृत है, वो राम है। लेकिन जब चैतन्य रूप ना रहे, हम माया के जाल में फंस जाएं, सत्व रज तम के विशेष प्रभावों में हम सुख दुख की पराकाष्ठाओं में खो जाएं कि ये मेरा है, ये अपना है, ये इसको माने इसको ना माने, तो फिर हमें किसी सद्गुरु की प्राप्ति आवश्यक है, वो बताए कि ये करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। तो करने वाले के लिए तो राम देखा, पर वो बताने वाला कौन हो, इसलिए बताने के लिए कृष्ण को आना पड़ा और बताने के लिए इनको योगी का गुरु बनना पड़ा, योगी बनना पड़ा। इसलिए कहते परम योगेश्वर, इसलिए क्या बोला, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धरः, कि उस धनु का अर्थ क्या होता है? लक्ष्य भेदन करना। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमें अर्जुन बनना पड़ेगा। अर्जुन तब बनोगे जब गुरु समीप होगा, अन्यथा उस मुख पाश में चाहे वो सत्व का हो, तमस का हो, किसी भी प्रकार के गुण का हो, हम कहीं ना कहीं फंस ही जाएंगे। कितने ही विशेष हो जाए, कितने ही ब्रह्मास्त्र हाथ में धारण कर लें, हम अपने ही जंजाल में फंस जाते हैं, जैसे मकड़ी कई बार फंस जाती है। उस मकड़ी के जाल को कौन हटाए, वो तो गुरु की प्राप्ति ही करवा सकता है। इसलिए ऐसे स्थान पे गुरु की प्राप्ति हुई जहां पे पूरी दुनिया सामने खड़ी थी और उसको अपने आप को पहचानना था। आज हमारी वास्तविक स्थिति क्या है? हम जीवन में चल रहे हैं, परिवार में चल रहे हैं, समाज में चल रहे हैं, और इतने छोटे हो जाते हैं कि हमें 5 दिन पहले का भी याद नहीं है कुछ, तो कैसे जाने कि हम कौन हैं? तो इसलिए शास्त्र क्या कहता है, जो कि हम आज विचरणीय होना चाहिए हमारे दिमाग में, कि हमारा धर्म क्या है। अब धर्म को लोगों ने अलग अलग अवलोकन रूप से अपने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए साध लिया। मैं एक बात सिंपल है जो शास्त्र के अनुरूप होता है कि धर्म वो है जिसको धारण किया जाए, धारण करवाया जाए वो नहीं है। हमें अपनी चीज को दूसरे पे नहीं डालना है, हमें अपने आप की मुक्ति के लिए जो आचरण व्यवहार करना है वही धर्म है। अब वो कैसा धर्म हो, ये नहीं कि अगर मान लो आज कोई प्याज ना खाता और कह दे जी मैंने तो प्याज छोड़ दिया तो वो धर्म नहीं हुआ। सद्धर्म होना चाहिए। कोई कहे जी 12 साल तक एक धर्म करो तो भगवान मिल जाएंगे, कोई कहे मैं तो रोज डेली चाय पीता हूं मेरा धर्म पूरा हो जाएगा, नहीं, सत्कर्म की बात जब होती है, क्योंकि मनुष्य योनि का जो जन्म है वो रजोगुण और तमोगुण के आधार पर है। लेकिन एक छोटा सा तत्व जो विशेष है उसमें है मनस, तो ये सांख्य योग बताता है कि वो मन तत्व जो है वो सत्व गुण है, तो सत्व को बढ़ाने के लिए क्या करें, सत्कर्म को अपनाएं। इसीलिए तृतीय अध्याय में गीता में भगवान कृष्ण ने उसी सांख्य योग के

0: बारे में बताया कि किस प्रकार से इस जीवन में हमारा तत्व प्राप्ति होती है, किस प्रकार से कर्म बंधन हमारे को अपने आप में बांध देते हैं और किस प्रकार से हम मुक्त हों। इसीलिए स्वधर्म की जब बात की गई तो स्व का मतलब शरीर तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो जीवन प्रण एक पुनर्जन्म के आधार पर है, तभी हम अपने आप को अलग अलग धर्मों में पालित कर रहे हैं, अपने अपने अवधारणाएं बन गई। किस प्रकार से करें उसके लिए ऋषि मुनियों ने साधन बनाए, कोई द्वैतवाद हुआ, अद्वैत हुआ, विशिष्टाद्वैत है, द्वैताद्वैतवाद हुआ, जिस प्रकार से आपको मानना हो उस प्रकार से अपनी इच्छा के अनुरूप भगवान को मानो, लेकिन भगवान से पहले अपने आप की यात्रा के लिए स्वयं को तैयार करना। उस स्वयं का मतलब आत्मा है, उस स्वयं का मतलब हमारे मूल तत्व को है जिसको हमें जानना है। ईशोपनिषद कहता है कि उस मोहजनित जो स्वर्ण रूपी पात्र को हटाओ, अब अपने आप के चेहरे को देखना हो तो क्या करेंगे, मिरर के सामने जाएंगे, शीशे के सामने जाएंगे और देखेंगे हमारे कितने कील मुआ से है, कितनी क्रीम है, कहां पाउडर ज्यादा लगा है। उस प्रकार से हम अपने आप को जानने के लिए क्या करें, उस सत्य के दर्पण को लेके आओ, उसके सामने देखो हम वास्तविकता में कौन है, हम छोटे नहीं है। जब हम अपने आप को आत्मा कहेंगे तो आत्मा का जो परम परम अर्थात सबसे बड़ा रूप जो है वो परमात्मा है, परम तत्व जुड़ते ही वो परमात्मा हो जाता है। तो परमात्मा के अंश का यदि हम अपने आप को देखें तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि हम स्वयं ही परमात्मा है? पर हम अपने आप को आत्मा भी नहीं मानने को तैयार और हम परमात्मा की प्राप्ति की बात करें, इस तत्व को दूर करने के लिए उस गुरु रूप में कृष्ण को आना पड़ेगा। क्यों कृष्ण? क्योंकि कृष्ण किसे कहते हैं जो खींच लेता है। यदि कुआ हो उसके अंदर कोई बाल्टी गिर जाए और सीधा कोई डंडा डालो तो वह बाल्टी वापस नहीं आएगी, लेकिन एक टेढ़ा सा तार उसमें डाल दिया जाए तो वो उसको टका करके ऊपर को खींचने के लिए राजी हो जाता है। तो हमारे मोह पाश को दूर करने के लिए उस कृष्ण रूपी टेढ़े है ना, कहते भैया बांका बिहारी, बांका मतलब टेढ़ा, वो टेढ़े तत्व को लेना पड़ेगा। और हम कलयुग में जी रहे हैं, भगवान जब आता है तो आगे के दर्शन देके जाता है। जब हम देखेंगे कि द्वापर युग के अंतिम समय में कृष्ण आए तो वो केवल एक समय चक्र की परिपाटी में तो आए, क्यों आए? क्योंकि कलयुग में इस प्रकार का विकराल स्वरूप ये ले लेगा, धर्म के चार पगों में से तीन पग टूट गए, एक दान बचा है, एक अपना स्वयं का धर्म बचा है। तो अपने धर्म को किसी यहां जातिवाद की बात कहीं की ही नहीं गई है, क्योंकि जब भगवान कृष्ण आए द्वापर की बात हुई तब अलग अलग विचारधाराओं के लोग तैयार थे और उन्होंने अपने गुट बनाए, तभी महाभारत हुई। तो गुट तो सदैव बनते आए हैं, क्या रावण के समय नहीं थे या कृष्ण के समय नहीं थे या आज हम सबके बीच में अलग अलग गुट नहीं है क्या? तो हमें गुट में फंसना नहीं है, अपने स्वयं की मुक्ति के लिए ये जीवन एक चक्र है, एक मौका है, इसको किस प्रकार से हम साधें कि हम मुक्ति की ओर अग्रसर हों, आध्यात्म तत्व को प्राप्त करें। और आध्यात्म तत्व का जब वर्णन होता है तो अधि आत्मना इति आध्यात्म, अर्थात कि आत्मा के तत्व को जानना, अपने स्वयं के तत्व को जानने के लिए जो भी क्रिया की जाए जो आपके मुक्ति की ओर अग्रसर हो उसे ही आध्यात्म रूप में वर्णन किया गया है। ये कृष्ण की प्राप्ति संभव कराता है या कृष्ण के द्वारा हमारे अपने आप के तत्व को संभव कराता है, क्योंकि अंततः यदि हम देखें तो ये अवतारवाद में यह भी बताया गया कि कृष्ण और अर्जुन कौन है, नर और नारायण ऋषि के अवतार है, भगवान के ही अवतार है, अर्थात कि भगवान समय समय पर अपने प्रभाव को देते हैं। यदि इस प्रकार से देखें तो काकभूषणी जी हुए, उन्होंने कितनी बार महाभारत देखी, कितनी बार रामायण देखी, उन्होंने देखा कि हर बार कृष्ण अपनी प्राप्ति कराते हैं, लोगों को चेतना जागृत कराते हैं, हम फिर भूल जाते हैं। तो ये त्योहार क्या करते हैं, समय समय पर हमको हमारी चेतना को याद कराते हैं और बताते हैं कि हम सबको एक साथ मिलकर के कार्य करना है, आगे बढ़ना है और अपने धर्म के अनुसार अधर्म से दूर होना। अधर्म मतलब जो दूसरों को दुख दे, जो दूसरों को समस्या दे, जो हमारी मुक्ति में हमारे अपने आप के द्वारा हम अपने बंधन को बना लेते हैं, एक पेड़ को पकड़ लिया और कहें कि ये पेड़ तो हमें छोड़ नहीं रहा, इस तत्व को पहचानना है, बस हम कृष्ण के ओर अग्रसर हो जाएंगे।
1: आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि कृष्ण के विभिन्न रूपों ने हमें हमेशा विस्मित किया है, तो क्या कृष्ण को आत्मसात करना आसान है या मुश्किल?
0: सबसे मुश्किल है, परंतु सबसे मुश्किल क्या है, हम यदि अपनी सिंप्लिसिटी को जाने तो सरल होना आज के जीवन में सबसे मुश्किल काम है। यदि इस तत्व को हम समझ जाएं तो कृष्ण को पाना सबसे मुश्किल भी है और सबसे आसान भी है। यदि द्रौपदी ने याद किया केवल तो भगवान कृष्ण ने दूर से भी कृपा कर दी और सामने होने पर दुर्योधन भी उनके तत्व को पहचान नहीं पाया, तो वास्तविकता में कृष्ण तो दृष्टा है, वो तो इतने बड़े कर्ता भी नहीं हुए कि अपने चक्र को उठा के उस महाभारत के तत्व को पूर्ण कर दे। उन्होंने तो दूसरों की कहा कि जो तुम चाहो वो करो, बस अपना चयन कर लो कि तुम्हें किस ओर रहना है। तो ये वास्तविकता में वो चयन एक अर्जुन का नहीं था, एक युधिष्ठिर का नहीं था, वो हम सब का चयन है कि हमें किस ओर रहना है। क्या हमें सबको साथ लेके आगे अग्रसर होना है, क्या टीम बनके मिल करके एक दूसरे के सहयोग से जीवन को आगे बढ़ाना है, आने वाली पीढ़ी को हम क्या देके जा रहे हैं, ये धर्म हमारा है। तो तो आज के परिप्रेक्ष्य में वास्तविक तत्व यही है कि हम अपने आसपास में त्योहार के रूप में नहीं है, ये एक ऐसा जीवन का उत्सव है जो नित्य प्रति होना चाहिए। जब हम भगवान को रोज जली चरण वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो हमें झुकना पड़ता है। ये झुकाव जो है ये दूसरे का नहीं है, हमारे स्वयं का है। भगवान तो एक निमित्त है, इसलिए भगवान सदैव तथास्तु कहते हैं। वो करता नहीं है, वो दृष्टा है, करने वाले तो हम हैं। भगवान ने थोड़ी कहा कि तुम अपने जन्म मरण के चक्र में फंसो, कर्म बंधन में फंसो और जाओ। वो तो कहता मुक्त होने के लिए वापस आओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। इसलिए किसी मंदिर में भगवान बैठे हुए नहीं मिलेंगे, खड़े हुए मिलेंगे। तुम 10 कदम बढ़ाओ, वो 100 कदम के लिए तैयार खड़े हैं। परंतु क्या हम वास्तविकता में मंदिर की तरफ देखने को भी तैयार हैं, या अपने धर्म को, अपने भगवान को याद करने के लिए भी तैयार है? ये हमारी कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए ये त्योहार आते हैं।
1: जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और अगर प्रेम की बात की जाए तो कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है, और कृष्ण का माँ यशोदा से प्रेम अनंत है, अलौकिक है। और इसी प्रेम ने हमें कहीं ना कहीं इस सृष्टि में रहने के लिए कहते हैं ना, हमें प्रेरणा दी है, हमेशा हमें रिश्तों को निभाने के लिए हमेशा हमें अग्रसर किया है। तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय कृष्ण को जाता है।
0: जैसा कि आपने माता का नाम लिया, पर मैं एक बात जरूर देखना चाहता हूँ कि देवी की माता का नाम नहीं लिया, यशोदा माता का नाम लिया। यशोदा का अर्थ ही होता है जो अपने सारे किए हुए का यश अपने परिवार को दे दे। तो यहाँ स्त्री का जो परम स्वरूप है, एक माता का स्वरूप क्या हो सकता है कि जो भी किया वो सब दूसरों को दे दे, ये मेरे पति का, ये मेरे पुत्र का, ये मेरे व्यवहार का, ये सब आगे बढ़े। ये एक त्याग जो है माता कर सकती है, लेकिन उस माता के अंदर एक तत्व छुपा रहता है, वो है मोह जनित तत्व या प्रेम जनित तत्व। यदि बंधन रूप में कहो तो वो मोह हो जाएगा, यदि मुक्ति रूप में कहो तो वो प्रेम हो जाएगा। इसलिए प्रेम सदैव अपूर्ण ही रहता है, कितना भी कर लो पूर्ति नहीं होती, जो अपने यश का दान दूसरे को दे दे। इसलिए आप देखेंगे पार्वती माता के लिए क्या बोला कि गणेश जी की माता कहलाई, शिव जी की पत्नी कहलाई, या गिरिजा देवी कहलाई, अर्थात हिमालय की पुत्री। स्वयं का नाम कहां ही आया? स्वयं का नाम आया भी तो कैसे कि अपनी तपस्या के बल पर उस पर्वत की पुत्री के रूप में पार्वती कहलाई। वास्तविक जो अपने नाम तक को भूल जाए दूसरों के लिए, वो त्याग एक माता के स्वरूप में हो सकता है। और उसी तत्व का वर्णन जब यहां सृष्टि चक्र में किया गया तो यशोदा के रूप में किया गया। तो इसलिए यशोदा का अर्थ है जो अपने यश, हम यदि जीवन में देखें तो व्यवहार के अंदर हमको रोटी पानी कपड़ा मकान सब एक व्यवस्था से मिल ही जाता है, परंतु एक चीज है जो बार बार हम खींचते हैं कि हमें यश की प्राप्ति हो, नाम की प्राप्ति हो, सौभाग्य की प्राप्ति हो, लोग हमें जाने, ये हमारा स्वयं का तत्व है। तो इसको जब हम सोचते हैं तो हम स्वार्थी हो जाते हैं, लेकिन जब हम साथ में दूसरों को लेकर चलें, अपना भी किया हुआ दूसरे को दे दें, तब हम यशोदा स्वरूप हो जाते हैं। कृष्ण उसी के आएंगे और किसी के जाने वाले कृष्ण नहीं है।
1: जी सबसे पहले माँ का नाम आना चाहिए, पुत्र तो उस राह पर चलता है जो माँ ने दिखाई है। तो सभी माताओं के नाम इस कृष्ण जन्माष्टमी में हमारी ओर से, यानी कि एफएम रेनबो की ओर से, आप सभी माताओं के नाम जो कहीं ना कहीं कृष्ण के लिए, अपने कृष्ण के लिए भूमिका निभा रही हैं कि वो एक अच्छे इंसान बने और कृष्ण के दिखाए हुए मार्ग पर आगे चले।

0: मुझे HIV है।
1: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
2: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं,
3: इग्नोर नहीं, याद करो।
4: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
6: आप सभी का पुनः स्वागत है और आपको बताना चाहेंगे कि हम आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं दे रही हैं। कल आप सभी जन्माष्टमी मनाने जा रहे हैं और उसकी पूर्व संध्या पर हम आपके लिए विशेष कार्यक्रम लेकर आए हैं। आशुतोष शर्मा जी आज हमारे साथ हैं। आशुतोष शर्मा जी एक पुराणविद हैं और हमने आपसे इतने कम समय में कृष्ण के बारे में इतना कुछ जाना, इतना कुछ समझा, लेकिन आज के युग में अगर बात की जाए तो कृष्ण कितने प्रासंगिक हैं। राम को भी पूजा जाता है, कृष्ण को भी पूजा जाता है, लेकिन जब सिद्धांतों की बात होती है तो कहीं ना कहीं हमें हमेशा ये कहा जाता है कि कर्म करता चल, फल की इच्छा ना कर। तो आज के युग में कृष्ण कितने प्रासंगिक?
7: युग तो सदैव से आते रहे। जैसा कि अगर हम कालचक्र की अवधारणाओं पर बात करें तो ये कलयुग पहली बार नहीं आ रहा है, ये कृष्ण जन्म पहली बार नहीं हो रहा है और इनको हम सदैव याद सदैव से ही करते आ रहे हैं। यदि हम राम और कृष्ण की बात करें तो हमें पूर्व अवतारों की भी बात करनी पड़ेगी कि किस तरह से पृथ्वी पर जीवन चला, उस चलने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, कौन से हमारे अंतःकरण के वो तत्व थे जो उस समय पर हमारे ऊपर हावी होते गए। जैसे राम जी के समय में देखेंगे तो वहां पर पुरुषोत्तम की स्थिति आई और पुरुषोत्तम बाद में आया

0: पीछे की चीजें तो आगे चल के आती है, पर आगे की चीजें पीछे नहीं जाती। इसीलिए वहां पर सेवा रूप मूल माना गया, यज्ञ रूप मूल माना गया। इसलिए आप देखेंगे अश्वमेघ यज्ञ जैसे तत्व सबसे पहले विशेष रूप से जब हम देखते हैं कथाओं में तो राम जी के समय पर बात की जाती है। वहां सामाजिक कर्तव्य के विधान को मूल माना गया, यहां पारिवारिक धर्म को भी साथ में लिया गया। यदि हम प्राचीन काल से आज तक की स्टोरी देखें तो पहले युद्ध तो सदैव से होते आए, पहले दो यूनिवर्स में युद्ध होते थे। सत्ययुग में अगर आप देखें कहानियों में तो यूनिवर्सल युद्ध होते थे। बाद में क्या हुआ कि देशों के बीच में हुआ, फिर राज्यों के बीच में हुआ, और आज कलयुग में हमारे अंदर ही वो युद्ध चल रहा है। तो युद्ध तो सबको लड़ना पड़ेगा। युद्ध कौन सा? जो दो अवधारणाओं का युद्ध है। आज यदि हम कहें परिवारवाद, कृष्ण के समय में वो परिवार इस प्रकार से रहा कि एक दूसरे पर हावी होता गया, जबकि वहीं राम जी के समय पे देखे तो एक परिवार की छोटी सी कमी को पूरे परिवार ने मिलकर लड़ा। हम वहां पे ज्वाइंट फैमिली की बात कर सकते हैं, यहां पे देखेंगे आज हर व्यक्ति एकल फैमिली में आता जा रहा है। पहले जो चाचा बुआ ताऊ काका ये सब घर के पार्ट होते थे, आज सब वो रिश्तेदार बन चुके हैं। तो कैसे हम उसको वापस परिवार माने? परिवार का अर्थ ही होता है जहां कोई दूसरा वार ना कर पाए, उस परिवार के अंदर रह करके अपने तत्व को दूसरों को भी अपनाना। ये तत्व कैसे हो, इसके लिए हमें पहले स्थित होना पड़ेगा अपने स्वयं में। और इसलिए स्थित प्रज्ञ दृष्टा जो है वो कृष्ण को बोला, राम को नहीं बोला गया। राम को बोला कि वो धर्मज्ञ हैं, वो एक वचनधारी हैं, वो एक पत्नी व्रतधारी हैं, लेकिन यहां पे बात करते हैं वो सबके कल्याण की बात करते हैं। हालांकि जो अगर हम मूल धर्म की बात करें या शास्त्र की बात करें तो उसकी जो बातें हैं और आज जो समाज में प्रचलित बातें हैं वो दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि अलग अलग कारणों से अवधारणाएं भी फैल जाती है। एक सत्य है, 10 जगह से आते आते वो सत्य असत्य में बदल जाता है। इसके लिए हम यही कहेंगे कि सबसे पहले महाभारत को पढ़ो, पहले भगवत पुराण को पढ़ो, उसके मूल तत्व को ग्रहण करो। वो नहीं जो आपको दिखा दिया गया, बता दिया गया, सुना दिया गया, कुछ भी बातें नहीं। जैसे कहीं कहीं सीरियल में आता अंधों के अंधे पैदा होते हैं, इस बात में महाभारत हो गई, परंतु अगर वास्तविकता में देखें ऐसा कोई तत्व है ही नहीं, क्योंकि वो तो अपने परम सौभाग्य की सूचक है, परम पवित्र नारी है, और पवित्र नारियों में द्रौपदी का वर्णन है। तो ऐसे बात को वहां पे आकलन नहीं किया जा सकता, तभी तो कृष्ण साथ देंगे, नहीं तो हंसने वालों पर कृष्ण कैसे साथ देंगे।
1: जी जी, बहुत ही प्रासंगिक आपने यहाँ पर वर्णन किया। और आज के युग में हमें कृष्ण को आत्मसात करना होगा, कर्तव्य पथ पर चलना होगा, और जिन भी चीजों से हम युद्ध करते हैं सर्वप्रथम खुद से युद्ध करना होगा जिससे सत्मार्ग पर चल सके। तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं आशुतोष शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में पहुंचे और आपने हमारे श्रोताओं तक कृष्ण का अलौकिक वर्णन किया। और आप सभी को हमारी ओर से जन्माष्टमी की जो आप कल मनाने जा रहे हैं ढेरों शुभकामनाएं।
0: धन्यवाद।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबका बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें मिला है ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया जी से।
2: लिखते हैं, जिंदगी की कठिन परिस्थितियां भी एक वॉशिंग मशीन की तरह होती हैं, जो हमें खूब घुमाती हैं, निचोड़ती भी हैं, परंतु जब हम इनसे बाहर आते हैं तो हमारा व्यक्तित्व पहले से अधिक स्वच्छ

0: बेहतर और चमकदार हो जाता है।
1: इस मजेदार और अर्थपूर्ण सुविचार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे लिखते हैं, कार्यक्रम उमंग के सभी कार्यकर्ताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है ओम प्रकाश दशोरा, मीनाक्षी दशोरा, स्वच्छंद दशोरा और रचना दशोरा जी का। वो लिखते हैं,
1: श्रीमान जी आपका ये प्रोग्राम बहुत शिक्षाप्रद और रोचक और साथ ही साथ प्रेरणादायक है।
0: ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे और अंजनी अंगारे जी ने पिछले सप्ताह के कार्यक्रमों की प्रतिक्रिया में इंटरनेट पर कुछ पंक्तियां भेजी हैं। लिखते हैं,
1: अपनों से जीवंत संवाद करो, सुनो, दिल से बोलो, जरा हंसो, गाओ, परिवार के संग हृदय पट खोलो जरा। जीवन उल्लास रिश्तों की मिठास है तेरे आसपास ही, इंटरनेट के मोहपाश से बाहर तो निकलो जरा।
0: धन्यवाद आप सबका एक बार फिर से आपके संदेशों के लिए और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में।
1: श्रोताओ, कल हमने बात की थी जापान की एक अनूठी सुंदर परंपरा की।
0: श्रोताओ, आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं जापान की ही एक प्यारी सी घटना। ये प्रेरक तो है ही, साथ ही साथ ये संदेश भी देती है कि जिस राष्ट्र में विद्या का सम्मान होता है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है।
1: जी हाँ श्रोताओ, तभी तो जापान को दुनिया के सबसे अधिक उन्नत, शिक्षित और तकनीकी रूप से सम्पन्न राष्ट्र के रूप में माना जाता है।
0: जी
1: तो चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत।
0: श्रोताओं, आज हम आपको जापान की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें मानवता और शिक्षा के प्रति सम्मान का बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है।
1: जी, ये कहानी है जापान के होकाइडो क्षेत्र की एक स्कूली छात्रा की। उसका नाम था काना हराडा।
0: अजीत जी, मैंने इस कहानी के बारे में सुना है कि जापान में एक रेलवे स्टेशन केवल एक स्कूल जाने वाली लड़की के लिए चलाया जाता रहा, क्या ये सच है?
1: विमलेश जी, कहानी कुछ इस तरह ही सुनाई जाती है। इंटरनेट पर कहानियां इसी प्रकार से वायरल होती हैं। लेकिन ये कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि जापान रेलवे ने केवल एक लड़की के लिए पूरी ट्रेन चलवाई थी। आज उमंग कार्यक्रम में हम इसकी पड़ताल करेंगे। सच्चाई ये है कि काना हराडा उस छोटे स्टेशन की नियमित छात्रा यात्री थी, लेकिन ट्रेन में दूसरे यात्री भी सफर करते थे।
0: अच्छा, तो ये बात है?
1: जी हाँ, ये बात है बिल्कुल। स्टेशन का नाम था क्यूशिराताकी। ये जापान के उत्तरी द्वीप होकाइडो का एक दूर दराज इलाका है। धीरे धीरे वहाँ यात्रियों की संख्या कम होती जा रही थी, क्योंकि लोग रोजगार के लिए टोक्यो और ओसाका जैसे शहरों का रुख कर रहे थे। कभी कभी तो तीन चार यात्री ही हुआ करते थे।
0: तो रेलवे ने स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया?
1: रेलवे ने यात्रियों की संख्या और कम उपयोग होने वाले कई स्टेशनों को बंद करने की योजना बनाई, लेकिन प्रबंधन ने एक बात नोट की। वो ये बात थी, उस स्टेशन से एक स्कूली लड़की काना हराडा नियमित रूप से स्कूल जाती थी।
0: श्रोताओं, आइए कल्पना करते हैं, चारों तरफ बर्फ, ठंडी हवाएं और एक छोटी सी बच्ची अपने स्कूल बैग के साथ स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही है, और वो भी रोज, है ना अजीत जी?
1: जी विमलेश जी, यही तो काना हराडा की कहानी का सबसे भावात्मक दृश्य है। सुबह का समय है, काना हराडा अपने घर से निकलती है, स्टेशन पहुंचती है और ट्रेन का इंतजार करती है। शायद कुछ ऐसा कहती होगी,
0: ठंड बहुत है लेकिन मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना है।
1: और फिर ट्रेन आती है।
0: जी, ट्रेन रुकती है, काना हराडा उसमें बैठती है और स्कूल चली जाती है।
1: फिर क्या हुआ विमलेश जी?
0: रेलवे ने ट्रेन और स्टेशन बंद करने का निर्णय ले लिया था, लेकिन काना हराडा की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए ट्रेन और स्टेशन की सेवा उसके स्कूल जाने के समय तक जारी रही।
1: विमलेश जी जरा सोचिए, आज जब हम किसी छोटे से गांव में स्कूल, सड़क या बस की बात करते हैं तो अक्सर सवाल पूछा जाता है, कितने लोग इसका इस्तेमाल करेंगे?
0: सही कहा अजीत जी, लेकिन शिक्षा के मामले में केवल संख्या नहीं देखी जानी चाहिए। कभी कभी एक बच्चे के लिए बनाया गया रास्ता उसके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है।
1: वाह, बहुत सुंदर बात विमलेश जी। मुझे लगता है कि एक बच्ची या बच्चा मात्र संख्या नहीं है,
0: जी
1: वे एक भविष्य है। तो श्रोताओ, फिर आखिर वो दिन आया जबकि काना हराडा ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली।
0: जी, और फिर मार्च 2016 में क्यूशिराताकी स्टेशन की सेवा समाप्त कर दी गई।
1: विमलेश जी, प्रश्न उठता है कि इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं या श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से क्या संदेश दे सकते हैं?
0: अजीत जी, वो संदेश है, बच्चे की शिक्षा को रास्ता दीजिए।
1: जी हाँ मित्रों, न जाने हमारे आसपास कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें थोड़ी सी सहायता, थोड़ी सी संवेदना और बस एक अवसर चाहिए।
0: हो सकता है किसी बच्चे के पास किताब नहीं हो, किसी के पास स्कूल जाने का साधन न हो और किसी को परिवार का सहयोग न मिल रहा हो,
1: और यदि हम उसके रास्ते की एक छोटी सी बाधा भी दूर कर दें,
0: तो शायद हम केवल उसकी आज की समस्या नहीं उसके पूरे भविष्य को बदल सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। जी हाँ श्रोताओ, एक बच्चे के लिए बनाया गया रास्ता
0: आने वाली पीढ़ियों का रास्ता बन सकता है।
1: तो ये थी हमारी आज की कहानी और प्रस्तुत है आज का प्रश्न।

0: प्रश्न है, जापान के उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या था जहां से काना हराडा अपने स्कूल जाने के लिए ट्रेन लेती थी, और उस स्टेशन को कब बंद कर दिया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जापान के उस रेलवे स्टेशन का क्या नाम है जहां से काना हराडा अपने स्कूल जाती थी और उसे कब बंद कर दिया गया?
0: अब अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। तो बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं कार्यक्रम माला की चांदी की पायल।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारी सी बच्ची माला के बारे में बताया गया है कि चांदी की पायल पहनकर किस तरह वो मनोविनोद करती है और लुका छिपी के खेल से सबका मनोरंजन भी करती है।
0: माला की चांदी की पायल।
2: माला बिल्ली को डराती है। वो अपनी नानी को डराती है।
3: अरे माला तू।
2: वो अपने छोटे भाई को डराती। वो डाकिये को डराती।
4: बहन जी, डाकिया।
2: उसकी टोपी भी हवा में उछल गई। एक दिन माला की मां ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी।
5: माला, यह तुम्हारे लिए है।
2: माला ने जल्दी से डिब्बी खोली, जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। उन्हें पहनकर वो पूरे घर में घूमने लगी। छोटे छोटे घुंघरू झनकते। अब माला जहां भी जाती सब जानते। उसकी आवाज से बिल्ली को पता लग गया कि माला आ रही है। माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई। माला की हेज से पहले नानी पलट गई। इस बार वो डरी नहीं, क्योंकि उन्हें माला के आने का पायल की आवाज से पहले ही पता चल गया था। माला की थप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। माला की भौ से पहले डाकिया निकल गया। माला की छिक छिक छम की पायल की आवाज सुनकर डाकिये को पहले ही पता चल गया कि माला आ रही है। अब माला किसी को डरा नहीं पाती। तो ऐसे में माला ने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। वो बहुत खुश है।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम माला की चांदी की पायल।
6: जी मैं रमेश पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा। रात को सफर लंबा होता है और रास्ते अंधेरे। उस रात मैंने गाड़ी एक ढाबे के पास खड़ी की थी और रिफ्लेक्टर के ऊपर मिट्टी जमी हुई थी। पर मैंने सोचा कल सुबह साफ कर दूंगा। मुझे बात छोटी सी लगी,

0: सड़क किनारे खड़े वाहन पर साफ और सही रिफ्लेक्टर होना आवश्यक है ताकि वो दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
1: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम रेडियो की कहानी।
2: इस कार्यक्रम में रेडियो के आविष्कार से लेकर उसके उद्भव और विकास की जानकारी एक सुंदर रेडियो नाटक के द्वारा दी गई है।
3: दोस्तों, मैं शरद हूँ।
4: और मैं सुचित्रा हूँ।
3: आज हम आपको रेडियो के इतिहास के बारे में बता रहे हैं और ये भी बताएंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है।
4: जी हाँ, रेडियो यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों से काम करने वाला संचार यंत्र। इसे लोग पहले जादुई डिब्बा भी कहते थे।
3: इस रोचक और प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत होती है 1865 में ब्रिटेन से। जेम्स कॉक मैक्सवेल नाम के स्कॉटिश वैज्ञानिक ने एक प्रकार की ऊर्जा के बारे में अपना एक गणितीय सिद्धांत सबके सामने प्रस्तुत किया। इस ऊर्जा का उन्होंने नाम दिया विद्युत चुंबकीय तरंग। उनका यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित था कि ऊर्जा हवा में प्रवाहित की जा सकती है, बेशक वो दिखाई ना पड़े।
4: परंतु मिस्टर मैक्सवेल अपने इस सिद्धांत को प्रमाणित नहीं कर सके। दूसरे वैज्ञानिक भी शायद इसे प्रमाणित नहीं कर पाते अगर 1887 में जर्मन वैज्ञानिक हेनरिच हर्ट्ज का प्रयोग सामने न आया होता। इस प्रयोग का वास्तविक उपयोग तब हुआ जब गुग्लियेमो मार्कोनी द्वारा तरंग उत्पन्न करने वाले उपकरण में सुधार किया गया।
3: गुग्लियेमो मार्कोनी का जन्म 25 अप्रैल 1874 को इटली के बोलोगना शहर में हुआ था। उच्छृंखल प्रवृत्ति वाले इस विद्यार्थी को स्कूली पाठों में किसी भी प्रकार की दिलचस्पी न थी, पर वो दूसरे आविष्कारकों के सिद्धांतों को आधार बनाकर नित नए नए प्रयोगों में व्यस्त रहता था। पिता को मार्कोनी की ये गतिविधियां बिल्कुल न भाती थीं। एक दिन की बात है।
5: मैं तो इस बच्चे से तंग आ गया हूं, ना पढ़ना ना लिखना, खेल खेल खेल, क्या करेगा ये?
6: नहीं नहीं, वो सिर्फ खेलता नहीं है। क्या आपने ध्यान दिया है, कई बार उसके प्रयोग बड़े रोचक होते हैं।
5: सिर्फ प्रयोग करने से क्या वो अपने पांव पर खड़ा हो सकता है बिना पढ़ाई के?
6: सुनिए, मेरी भी यही चिंता है।
5: ना जाने क्या होगा इसका।
6: भौतिकी और विद्युत विज्ञान में उसकी बड़ी रुचि है, इसी बात पर वो अक्सर प्रयोग करता रहता है। उसके चचेरे भाई बहन तो उसके प्रयोगों से बड़े प्रभावित हैं।
5: अरे वो सब तो ठीक है, पर
6: न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जी कि आगे चलकर मार्कोनी एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा।
4: एक सफल जीवन की खोज में मार्कोनी औपचारिक शिक्षा तो न ले पाए, पर सफलता पा लेने की दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा उन्होंने रेडियो जैसा नायाब आविष्कार इस जगत के सामने प्रस्तुत किया। ये 1893 की बात है। गुग्लियेमो मार्कोनी जब मात्र 20 वर्ष का था तब उसने पहली बार बिना तार के विद्युत चुंबकीय तरंगों को 3 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में सफलता प्राप्त की। और ये प्रयोग उसने किसी बड़ी प्रयोगशाला में नहीं, अपने घर पर ही किया।
7: ऐसे ऐसे
8: जोर से मारना।
7: सैम है ना? अरे इधर तो आओ। हाँ हाँ आते हैं।
9: सैम है ना, क्या तुम लोग तैयार हो?
10: हम तो तैयार हैं मार्कोनी।

0: पर ये तो बताओ तुम करने क्या जा रहे हो?
1: आज मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ एक अद्भुत प्रयोग।
2: कैसा प्रयोग?
1: आवाजों को बिना तार के हवा में एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का प्रयोग।
0: बिना तार के? भला ये कैसे संभव है?
1: संभव तो है भाई, संभव है। अच्छा देखो, मैं अपना ये उपकरण चालू करता हूँ। इसे कहते हैं ट्रांसमीटर।
0: अच्छा
1: अच्छा, अब तुम जल्दी से भागकर घर पहुँच जाओ।
2: अच्छा।
1: वहाँ किचन के पास वाले कमरे में मैंने रिसीवर लगा रखा है।
0: हाँ,
1: उसी के साथ एक घंटी भी लगा रखी है। सिग्नल पहुँचते ही घंटी बज उठेगी।
2: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, हम जाते हैं, हम जाते हैं।
1: फिर जाओ ना। पहुँच गए?
2: हाँ हाँ,
1: ठीक है, अब मैं रेडियो सिग्नल भेज रहा हूँ।
2: हाँ हाँ, भेजो, जल्दी भेजो।
0: अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है! अरे ये तो जादू की तरह लगता है। वाह, क्या बात है! अरे वाह,
1: सिग्नल मिला?
0: हाँ हाँ, ये तो बड़ा दिलचस्प है, अद्भुत। शाबाश मार्कोनी, बधाई हो, बधाई।
3: और उस दिन मार्कोनी ने पहले एक कमरे से दूसरे कमरे तक, फिर घर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, और फिर घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बागीचे तक बिना तार इस्तेमाल किए विद्युत चुंबकीय तरंगों को भेजा।
4: सन 1897 में मार्कोनी ने वायरलेस टेलीग्राफ और सिग्नल कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी ने एक साल बाद सन 1898 में इंग्लैंड के चेम्सफोर्ड में संसार की पहली रेडियो फैक्ट्री खोली।
3: फिर वर्ष 1900 में ट्यून्ड टेलीग्राफी के लिए प्रसिद्ध 7777 पेटेंट नंबर मार्कोनी ने लिया, और उन्होंने इस उपकरण का प्रयोग पहला वायरलेस संकेत कनाडा और इंग्लैंड के बीच अटलांटिक महासागर के पार, यानी के 3220 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में किया।

0: इस प्रकार ये प्रयास इससे पहले के प्रयोग से 100 गुना अधिक दूरी तय कर सका। इससे ये सिद्ध हो गया कि रेडियो तरंगों पर पृथ्वी की वक्र आकृति का प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्रयोग एक मील का पत्थर साबित हुआ।
1: ये संदेश भेजे गए इंग्लैंड और कनाडा के बीच मार्कोनी के रेडियो द्वारा, जिसमें मोर्स कोड का इस्तेमाल किया गया था। यह कोड सैमुअल मोर्स की देन है, जो मार्कोनी की ही तरह कल्पनाशील व्यक्ति थे।
0: बात 24 दिसंबर सन 1906 की है। अमरीकी तट के नजदीक अटलांटिक महासागर में जहाजों पर रेडियो ऑपरेटर।
2: आज बड़ी कड़ाके की ठंड है।
3: हाँ डेविड, ठंड तो है ही, और फिर समुद्री यात्रा ना जाने कब पहुंचेंगे।
2: मैं भी यही सोच रहा हूँ रॉबर्ट। घर में होते तो मजा आ जाता। कल क्रिसमस भी तो है ना।
3: काश इस वक्त हम अपने परिवार के साथ होते।
2: लेकिन ये मौसम भी तो साथ नहीं दे रहा। ये बर्फीली आंधियां और ऊपर से घने बादल।
3: कप्तान ने कहा था कि कल हम

0: बंदरगाह में होंगे। हाँ। लेकिन अभी तक हमें जहाज को आगे बढ़ाने का सिग्नल नहीं मिला है, शायद मौसम की वजह से।
1: रॉबर्ट, हाँ? रेडियो सिग्नल को लगातार सुनते रहो, शायद आगे बढ़ने का सिग्नल मिल जाए।
0: हाँ, देखता हूँ।
1: हाँ, ऐसा करो रॉबर्ट, दूसरी फ्रीक्वेंसी पर देखो।
0: ये क्या?
1: ये क्या?
0: ये मुझे क्या सुनाई पड़ रहा है?

0: भगवान, ये तो क्रिसमस कैरोल है।
1: अद्भुत, अति सुंदर।
2: For God so loved his world that he sent his only begotten son. I wish you a merry Christmas.
0: अरे वाह, अरे वाह, वाह! रेडियो पर आदमी की आवाज, अद्भुत, सचमुच अद्भुत।
1: वाह, क्या बात है, वाह!
0: रोहन, पहली बार सुना है ऐसा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: वाह,
3: ये आवाज कनाडा के रेगिनाल्ड फेसेंडन की थी। ये पहला अवसर था जब रेडियो पर मानवीय आवाज सुनाई पड़ी, और इस तरह मानवता को मिला क्रिसमस की पूर्व संध्या पर विज्ञान का एक अनमोल उपहार। इसमें सिर्फ कुछ वाक्य, एक गीत और वायलिन का संगीत था।
4: बहुत जल्दी ही लोगों ने मार्कोनी की कंपनी द्वारा बनाए गए इस उपकरण के माध्यम से लंबी लंबी दूरियों के पार भी संदेश भेजना और ग्रहण करना शुरू कर दिया।
3: मार्कोनी के इस आविष्कार से पहले जहाज यात्रियों के लिए बंदरगाह पर पहुंचने से पहले किसी भी प्रकार का संदेश संचार संभव न था।
4: सन 1912 अप्रैल रविवार का दिन था। टाइटैनिक विश्व का सबसे बड़ा यात्री जहाज एक भीषण हादसे में बर्फ की शिला से टकराकर डूब गया।
3: इन दावों के बावजूद कि ये जहाज डूब नहीं सकता,
0: ये क्या हो रहा है? लगता है जहाज किसी चीज से, शायद बर्फ की शिला से टकराया है।
5: अरे अरे, भागो भागो, बाहर निकलो, भागो, डेक की ओर भागो।
6: क्या हो गया?
7: अरे ये क्या हो रहा है? जहाज पूरी तरह हिल रहा है।
8: ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? जहाज पूरी तरह हिल रहा है।
9: हेड पर कितनी बड़ी कटान पड़ती है। अरे बचाओ, अरे पानी भर
0: जहाज की स्पीड कम करो। ऑपरेट द बैक प्रोपेलर, जहाज को पीछे करो। एंड कॉल द रेडियो ऑपरेटर, चेक एंड हेरल्ड।
8: यस यस कैप्टन स्मिथ, यस।
0: ऑपरेटर जैक, इमरजेंसी मैसेज भेजो। सेव टाइटैनिक, शिप लोकेशन 40 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ। आई रिपीट, 40 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ। और हेड लाइफ सेवर भेजो। सेंड जनरल कॉल डिस्ट्रेस।
8: जल्दी जल्दी करो,
0: जीवन रक्षक नाव के नीचे उतारो। लाइफ बोट उतारो, लाइफ बोट के नीचे उतारो।
10: Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight.
3: क्या आपको पता है, टाइटैनिक के कप्तान स्मिथ ने मार्कोनी कंपनी को मॉर्स कोड पर क्या संदेश भेजा था? संदेश था,
4: सेव अस टाइटैनिक सिंकिंग, हेल्प हेल्प,
3: जो मार्कोनी के रेडियो पर इस प्रकार सुनाई पड़ा था।

0: टेलीग्राफिक संदेश को भेजा। इस बात का पूरा पूरा श्रेय रेडियो को ही जाता है।
1: 1909 में मार्कोनी और फर्डिनेंड ब्रायन दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला, पर मार्कोनी द्वारा नोबेल पुरस्कार लेने की बात ही कुछ और है। स्वयं उनके अनुसार वे ना कोई वैज्ञानिक थे और ना ही कोई आविष्कारक, पर वे बहुत ही विलक्षण।
2: Congratulations, Mr. Marconi. You are really wonderful. And so is your amazing invention. Congratulations to you.
3: धन्यवाद ऐसे नायाब आविष्कार के लिए।
4: आपने तो कमाल ही कर दिया। कितना अद्भुत है आपका रेडियो। वाह वाह वाह वाह वाह।
5: सच में कमाल है। बिना तार का ये काम करने वाला रेडियो। विश्वास नहीं हो रहा।
3: मिस्टर मार्कोनी
6: जी,
3: अच्छा ये बताइए, ये आविष्कार करने के बाद आपको कैसा लग रहा है?
6: जी मैं बहुत अच्छा और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ।
3: गुड गुड।
6: सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से मैं एक ऐसा उपकरण तैयार कर सका हूँ जो पूरे विश्व में मेल मिलाप की भावना विकसित कर पाएगा।
3: बिल्कुल।
6: धन्यवाद।

0: 20 जुलाई 1937 को रोम में उनकी मृत्यु हुई। मार्कोनी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विश्व भर के सभी रेडियो स्टेशनों ने 2 मिनट का मौन रखा। आज भी विश्व उनके अनूठे योगदान रेडियो को आभार सहित याद करता है।
1: तब से अब तक रेडियो में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। आज भी बहुत सारे संचार माध्यमों के होते हुए भी इस नायाब जादुई डिब्बे का आकर्षण समय के साथ कुछ कम नहीं हुआ है।
2: श्रोता, अभी आपने सुना कार्यक्रम रेडियो की कहानी। अब हमारा समय समाप्त हुआ चाहता है, तो अब अपने मित्र अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, चेतना, जगबंधु और मंजू जी के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जिंदगी की राहों में कभी दर्द के कांटे चुभ भी जाएं, तो सही कोशिशों और हौसलों से फिर से फूल खिल ही जाते हैं। फिर सही डॉक्टर के साथ और सही देखभाल के साथ ऑपरेशन जैसे मुश्किल सफर भी हंसते हंसते कट ही जाते हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं यानी नाज करती हूं आप सभी लिसनर्स का स्वागत आपके फेवरेट शो रेडियो डॉक्टर में। दोस्तों, सर्जरी या ऑपरेशन, ये शब्द सुनते ही अक्सर हमारे मन में एक अजीब सी घबराहट होती है, लेकिन राहत की बात यह है कि मेडिकल साइंस ने अब इतनी तरक्की कर ली है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी दूरबीन वाले ऑपरेशंस ने बड़े बड़े चीरों और महीनों तक बिस्तर पर पड़े रहने के झंझट को लगभग खत्म ही कर दिया है।

0: लेकिन सर्जरी चाहे कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर यानी ऑपरेशन से पहले और बाद की देखभाल के बिना रिकवरी अधूरी और काफी मुश्किलों से भरी हो सकती है। और इसीलिए आपके मन के हर डर को दूर करने, आपके हर सवाल का सटीक जवाब देने और सर्जरी के इस सफर को आसान बनाने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एस के सिंगला, जो कि जाने माने जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन और रोबोटिक सर्जन भी हैं। सर, थैंक्स फॉर कमिंग एंड वेलकम टू द शो।
1: थैंक यू फॉर कॉलिंग मी एंड आई एम रेडी फॉर योर क्वेश्चंस।
0: थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, सर्जरी चाहे छोटी हो या बड़ी, वो सिर्फ ऑपरेशन थिएटर के अंदर की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक पूरी यात्रा है जो सर्जरी के तय होने के साथ ही शुरू हो जाती है और पूरी तरह से ठीक होने पर ही खत्म होती है। तो हमारे आज के विषय प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी केयर से जुड़ा कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा, तुरंत कॉल कीजिए हमें। फोन नंबर्स आप डायल कीजिएगा 011-234-21080 या फिर आप डायल कर सकते हैं 234-21082। साथ ही व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैसेज आप करेंगे 9868107070 पर। तो सर, शुरुआत करते हैं बातचीत की और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि प्री ऑपरेटिव केयर की जब हम बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसमें सबसे पहला पड़ाव यही आता है कि हम सही डॉक्टर और सही संस्थान का चुनाव करें। तो इसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाना जरूरी है और ये कैसे किया जाना चाहिए?
1: जो आपने बोला कि सही डॉक्टर, ये विदेशों में, अमेरिका में बड़े बड़े अस्पतालों के बाहर लिखा हुआ है, इट मेक्स डिफरेंस हुम यू मीट फर्स्ट इन मेडिसिन। दैट मीन्स द सिलेक्शन ऑफ ए सेंटर एंड द डॉक्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट because they can make, they write your destiny.
0: Yes, sir.
1: So that is what I want to say about it. So the doctor should be not only qualified, he should be experienced also. That is the important thing for a selection of the doctor, and center should be also fully equipped and should be ready to take. Okay, so jo sansthan hai वो भी पूरी तरह से इक्विप्ड होना चाहिए, उसमें सब सुविधाएं होनी चाहिए जिससे कि कोई भी सीरियस कॉम्प्लिकेशन पैदा हो उसको पहचाना जाए और उसको जल्दी ही रिवर्ट किया जाए
0: जी,
1: क्योंकि उसमें समय निकलते मरीज को नुकसान हो सकता है
0: जी।
1: और एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना इमरजेंसी के लिए वो अपने आप में नुकसान है। तो वही सेंटर जिसमें आप गए हैं उसमें काफ़ी सुविधाएं होनी चाहिए और जो भी एक्सपीरियंस तजुर्बा डॉक्टर, और सिर्फ एक सर्जन नहीं है, उसका जो स्टाफ है, उसकी नर्सेज, उसके टेक्नीशियंस, दूसरे डॉक्टर्स, स्पेशलिटीज, ऑल स्पेशलिटीज, बिकॉज सर्जरी इज ए टीम वर्क। ये एक टीम वर्क है जिसमें छोटे से छोटा वर्कर से लेके सबसे सीनियर आदमी तक सारे इन्वॉल्व हैं, तब ये प्रोसेस कामयाब है। इसमें कहीं से भी एक जीना है, ये स्टेप लैडर है, एक लैडर का भी नीचे से लिंक निकलता है तो नुकसान होता है
0: जी।
1: इसलिए ये जो आप बात करें उसके जवाब में ये
0: जी, बिल्कुल सही बात है। और सर, इसी के साथ अगर प्री केयर की हम बात करें तो किन किन चीजों का ध्यान रखा जाना बहुत ही जरूरी है, और सर्जरीज की हम बात कर रहे हैं तो ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि किन कैटेगरीज में हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं और उस हिसाब से हम अपनी केयर को भी डिसाइड कर सकते हैं।
1: राइट, जो प्री ऑपरेटिव असेसमेंट है
0: जी,
1: इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है वो पेशेंट है। तो ये जानकारी पूरी तरह से लेनी चाहिए डॉक्टर को कि वो कितना रेडी है, कितना तैयार है उस ऑपरेशन के लिए, और उसकी जो साइक है उसको एक बार जरूर इवेल्युएट करें, बिकॉज अगर उसमें कोई कमी है इवेल्युएशन में, वो पेशेंट को कोई ना कोई कंप्लेंट ठीक ऑपरेशन होने के बाद भी चलती रहेगी।
0: बिल्कुल।
1: तो उसको पूरी तरह से इंटीमेट किया जाए, बताया जाए और ये समझने की कोशिश की जाए वो समझा है कि नहीं, क्योंकि मोस्टली पेशेंट्स आजकल ये सोचते हैं कि जादू की तरह इलाज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपना डिजीज अपना कोर्स कवर करती है, उसके लिए पेशेंट को इन्फॉर्मेशन होना चाहिए एंड पेशेंट साइक

0: मे बी आजकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं हॉस्पिटल्स में, वो भी इवेल्युएट करते हैं हाउ इक्विप्ड द पेशेंट इज फॉर द सर्जरी, नॉट ओनली द हॉस्पिटल. सो दैट्स व्हाट.
1: ओके, और ये कैसे पहचाने कि सर्जरी कब जरूरी है और किस मोमेंट पर उसे टालना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है?
0: ये इसके बड़े वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड्स हैं, वेदर इट इज इलेक्टिव एंड एमरजेंसी. जो इलेक्टिव सर्जरी है, मतलब जिसको आप चुनते हैं कि हफ्ता, दस दिन, दो, एक डेट लेते हैं, लेकिन जो एमरजेंसी सर्जरी है उसमें बहुत कम समय होता है आपको. लाइक किसी का अपेंडिक्स फट गया, या किसी का गॉल ब्लैडर फट गया है, रप्चर हो जाता है, या विसरल परफोरेशन हो जाती है, या लंग में इंजरी हो जाती है, नेक का वेसल कट जाता है, तो उसके लिए तो समय नहीं है. और उसमें चाहे वो एक इमरजेंसी है, उसको हर हालत में करना ही करना है रिस्क लेके. तो हम लोग हाई रिस्क कंसेंट लेते हैं, पेशेंट को समझाते हैं कि आपके लिए ये रिस्क है, बट इसके सिवा और कोई चारा नहीं है. बट जो इलेक्टिव केसेस हैं उसमें हम, उनके पास टाइम होता है, हमारे पास टाइम होता है, जिसमें हम सारी चेकिंग करते हैं उनके ऑर्गन वाइज, किडनी, लिवर, लंग, लाइक वी डू एन एक्सरे, ईसीजी, केएफटी, लिवर फंक्शन, एवरीथिंग वी डू. एंड ऑल्सो एलर्जीज टू ड्रग्स, पेशेंट से ये जानकारी जरूर लेनी चाहिए कि उसको कोई ड्रग्स से एलर्जी है, या कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हो, लाइक ब्रोंकियल एस्मा, लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, उन सब का ब्यौरा लेना चाहिए, तब आप अच्छे से इसको चला सकते हैं.
1: बिल्कुल, ये तो सर डॉक्टर्स का रोल हो गया. अगर हम पेशेंट की बात करें या पेशेंट की फैमिली मेंबर्स की भी बात करें, तो उन्हें किन किन चीजों का ध्यान रखना यहाँ पर बहुत जरूरी है, जिसमें डाइट भी आ जाता है, फिजिकल एक्टिविटीज भी आ जाती हैं, और जो कि आपने बताया कि वाइटल्स हैं, तो उनको भी हम लोगों का या मतलब फैमिली का कितना रोल है उसमें?
0: एक्चुअली फैमिली को ये देखना है कि पेशेंट की जो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन है वो नॉर्मल होने चाहिए. लाइक आप 300 शुगर पे सर्जरी कराने आते हैं और वो अर्जेंट नहीं है, तो उसको कम से कम 200 से नीचे लाया जाए ब्लड शुगर को, तब आप करें, नहीं तो इन्फेक्शन रेट विल बी हाई, पेन विल बी मोर, हॉस्पिटलाइजेशन विल बी मोर. ये सब चीज़ों को आप घटा सकते हैं अगर फैमिली को भी नॉलेज है, एजुकेशन है. तब अगर उनको नहीं है एजुकेशन, तो उनको एजुकेट किया जाए.
1: बिल्कुल सर, बातचीत जारी रखेंगे हम इस पर. फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं. हेलो.
2: हेलो, नमस्ते मैम.
1: नमस्ते सर, अपना नाम बताइए.
2: नमस्कार
1: जी,
2: मेरा नाम नरेंद्र कुमार है मैम, चरखी दादरी हरियाणा से बात कर रहा हूँ.
1: जी बताए सर.
2: 2023 में मैंने एक सर्जरी करवाई थी मैम, एक्सीडेंट में मेरा हाथ टूट गया था, और हाथ में डॉक्टर साहब ने उस समय एक रोड डाली थी, तो मैंने दो तीन डॉक्टर से बात की, तो वो बोले कि भाई इसको निकालने की कोई खास जरूरत नहीं है. तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि सर कौन कौन से ऐसे मेटल हैं जिसमें से हम अपने हाथ में से ना निकलवाएं तो भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती हमें, या मैंडेटरी होता है उसको निकलवाना? कुछ
0: मेटल्स, यू नो, जो भी स्टील के मेटल्स हैं वो जरूरी निकलने चाहिए, बट हम लोग सारे ही मेटल निकालने को कहते हैं, क्योंकि उनमें मिक्सचर हो सकता है.
1: ओके,
0: हेयर पिंस हैं लेडीज में, और स्टील की रिंग्स है.
1: एक्चुअली वो जाना उनको, उनका कुछ टाइम, आई थिंक क्वेश्चन सुन,
2: मैं पूछ रहा हूँ सर कि जो मेरे कंधे की हड्डी को जोड़ने के लिए जो एक धातु की डोर लगाई थी उन्होंने रोड, वो टंगस्टन की बता रहे थे.
0: टंगस्टन
2: निकलवाना? जी सर,
0: देखिए ये टंगस्टन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपका बोन फ्यूज हो गया है, यूनाइट हो गया है, तो आप इसको निकलवा सकते हैं.
2: वैसे कोई दिक्कत नहीं हो तो कोई निकलवाना भी जरूरी नहीं,
0: नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये लाइट होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है.
2: ओके, थैंक यू सर.
0: और ये एमआरआई के लिए भी प्रॉब्लम नहीं करता है.
2: ओके, वेरी थैंक यू सर.
1: ओके, एक और सवाल सर हमारे पास व्हाट्सएप के थ्रू आया है कि गॉल ब्लैडर की सर्जरी के बाद कितने दिन का रेस्ट जरूरी है. प्रकाश चंद्र रोहिणी दिल्ली से ये सवाल पूछा है सर.
0: गॉल ब्लैडर सर्जरी के लिए रेस्ट जो है ये उसकी एज पे डिपेंड करता है मरीज.
1: ओके,
0: अगर कोई यंग पेशेंट है 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, दे गो बैक टू वर्क आफ्टर 3-4 डेज. लेकिन अगर वही पेशेंट 60 साल की एज का है तो उनको रेस्ट करना पड़ेगा 2-3 हफ्ते, डिपेंडिंग ऑन द एज. और कोमॉर्बिडिटीज, अगर पेशेंट को और बहुत दिक्कतें हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, तो इनका रिकवरी थोड़ा धीरे होता है, टाइम से होता है. लेकिन होता है, अच्छे से होता है.
1: जी सर, एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है. हेलो.
3: हेलो
1: जी सर, अपना नाम बताएं.
3: जी नमस्कार मैम.
1: जी नमस्कार
3: जी मैम, मेरा नाम कमलेश चौधरी है, मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ.

0: जी अपना सवाल
1: अभी
0: पूछिए।
1: मैम, जी मैम, अभी मेरी वाइफ का ऑपरेशन हुआ है लैप्रोस्कोपिक से, यूट्रस में गांठ था, सिस्ट।
2: जी
1: हेलो।
2: जी सुन रहे हैं।
1: तो सर ये है कि जैसे ऑपरेशन के बाद क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए, थोड़ा जानकारी लेना था
2: देखिए,
1: हम उससे बच सकते भविष्य में।
2: हाँ
1: जी
2: देखिए, पहले ही बात है, उसको पानी बहुत पीना है, लॉट ऑफ वाटर दे हैव टू ड्रिंक।
1: अच्छा जी सर,
2: एंड
1: जी सर।
2: फॉर 6 वीक्स शी शुड नॉट लिफ्ट द वेट, शी शुड यूज ए वेस्टर्न टॉयलेट, शी शुड नॉट बी कॉन्स्टिपेटेड, शी शुड नॉट रेज द एब्डोमिनल प्रेशर, जो पेट के अंदर प्रेशर है उसको नहीं बढ़ाना है। जैसे लोग सोचते हैं कि प्राणायाम से नहीं बढ़ता है, लेकिन उससे भी बढ़ता है, तो वो सब नहीं हो। और प्रोलॉन्ग सिटिंग नहीं करनी है, और प्रोटीन जो डाइट है उसमें प्रोटीन काफ़ी लेना है, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फ्लूड, फ्लूड बहुत लीजिए।
1: अच्छा फ्लूड सर, जैसे नारियल की पानी
2: हाँ लीजिए,
1: सर ये।
2: हाँ नारियल पानी ठीक है, अच्छा है।
1: और जैसे सर कि 15-20 मिनट जैसे किचन में खड़ा होकर काम कर सकते हैं,
2: अगर
1: कि
2: अगर वो 1 हफ्ता 10 दिन हो गया है और वो वीक फील नहीं कर रही है तो वो कर सकती है, लेकिन वो 1 या 2 आदमी का ही खाना बनाए, अगर वो 10 आदमियों का खाना बनाने खड़ा कर दोगे तो वो बेचारी गिर जाएगी।
1: नहीं नहीं सर, हम दो ही लोग हैं।
2: हाँ उसके लिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन पूरे परिवार की जिम्मेदारी जो चौका है उसको मत सौंप देना।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं सर, नहीं वो बस जस्ट पूछ रहे थे
2: हाँ,
1: सर
2: हाँ,
1: कि क्या क्या
2: कर
1: होता
2: सकते
1: है ना सर, जब हमें नॉलेज नहीं रहता है।
2: हाँ
1: और सर जैसे 1 हफ्ते हो गया है सर, अभी 1 हफ्ते हो गया
2: अभी
1: है।
2: उसको 1 हफ्ते का रेस्ट और दो, हिस्टरेक्टमी
1: अच्छा,
2: और ये थोड़ा मेजर सर्जरी होता है पेल्विस का, इसमें पेन थोड़ा ज्यादा होता है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा सर। अच्छा ये सर दोबारा हो सकता है क्या, ये जो सिस्ट है यूट्रस में,
2: अब
1: चांसेस है क्या
2: ये
1: सर?
2: यूट्रस में था या ओवरी में था?
1: यूट्रस में था सर, यूट्रस में,
2: क्योंकि यूट्रस की
1: 40 mm
2: सिस्ट
1: का था सर।
2: है
1: जी सर,
2: कितना
1: 40 mm का सिस्ट था,
2: बिकॉज
1: 40 mm।
2: यूट्रस में सिस्ट बहुत कम होते हैं, मोस्टली ये ओवरीज में होती है, एडिनेक्सा में होती है। तो देखिए दूसरी साइड में हो सकता है, क्योंकि लेफ्ट साइड किया है तो राइट में हो सकता है, राइट किया है तो दोबारा होने का चांस है, तो फॉलो अप करना है।
1: अच्छा मतलब वही सर, अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए सर
2: हाँ
1: अभी भी।
2: हाँ कराना है
0: जी अब एक और सवाल हमारे पास आया है सौरभ सिंह चौहान जी का, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। ये अपने फादर के बारे में जानना चाह रहे हैं सर। 58 ईयर्स इनकी उम्र है, 58 साल। हार्ट अटैक इनको आया था अक्टूबर 2024 में, और फिर ऑपरेशन हुआ। उसके बाद दिसंबर 2024 में जब अटैक आया तब पता चला कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो डॉक्टर ने 1 साल बाद इन्हें सर्जरी करवाने के लिए बोला है। तो क्या आप करवा सकते हैं, ये पूछ रहे हैं।
2: अगर वो स्टेबल हैं, उनका बाकी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं और उनका EF इजेक्शन फ्रैक्शन एडिक्वेट है, और देन इट कैन बी डन, देर इज नो प्रॉब्लम। 1 साल तो काफ़ी समय है, बट अगर ठीक ठाक मैनेजमेंट है तो 6 महीने के बाद गॉल ब्लैडर सर्जरी की जा सकती है फॉर ए हार्ट पेशेंट।
0: ओके सर, हम बात कर रहे थे डाइट की, प्री केयर के अंतर्गत किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना ज़रूरी है?
2: डाइट में देखिए, एक तो पूरा जो विटामिन्स मिनरल्स जो भी होते हैं वो काफ़ी लेना चाहिए। अगेन शुगर शुड बी वेल कंट्रोल्ड, इट शुड बी ऑल राइट। प्रोटीन इंटेक शुड बी अराउंड 20% ऑफ द टोटल डाइट। लो कार्ब्स शुड बी नॉट टू मच, कार्बोहाइड्रेट्स दे आर नॉट सो मच यूजफुल, एंड लो फैट, सो इफ दे टेक दैट दैट इज ऑल राइट।
0: ओके, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज,
2: ब्लड प्रेशर, डायबिटीज दे आर टू बी कंट्रोल्ड अंडर केयर ऑफ ए फिजिशियन।
0: ओके सर, इसी के साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि लेप्रोस्कोपिक या फिर की होल सर्जरी किस तरह से अलग है और बेहतर भी है ओपन सर्जरी से?
2: जो ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है ये सूक्ष्म छिद्र के द्वारा की जाती है, इसमें ट्रॉमा इंजरी कम होती है ऑर्गन्स को, एब्डोमिनल वॉल को, सो द मेटाबॉलिक चेंजेस आर मच लेस कंपेयर टू ओपन सर्जरी, दैट इज व्हाई द रिकवरी इज फास्टर, ब्लड लॉस इज लेस, सो ऑल दीज थिंग्स मेक पेशेंट कन्वीनियंट, पेन इज लेस, सो दीज थिंग्स आर वेरी दे हेल्प द पेशेंट रिकवर फास्टर।
0: ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। हम बातचीत इस पर आगे भी करेंगे, लेकिन फिलहाल एक अच्छा सा गाना सुन लेते हैं।
2: हाँ जरूर।

रेडियो डॉक्टर सुन रहे हैं आप और जहां आज का विषय है प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, यानी किसी भी तरह की सर्जरी से पहले और उसके बाद किस तरह से देखभाल की जानी चाहिए, इस पर हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर एस के सिंगला, जो कि जनरल लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जन हैं। सर, हम प्री ऑपरेटिव केयर की बात कर रहे थे इस सॉन्ग से पहले, तो आपसे

0: जानना चाहेंगे कि डाइट और वाइटल्स के अलावा और कौन कौन से ऐसे टेस्ट्स हैं या फिर कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान रखा जाना जरूरी है।
1: सी, एक तो सब लंगों को वायरल मार्कर हेपेटाइटिस सी बी NHIV वो जरूरी है पेशेंट की सेफ्टी के लिए और स्टाफ की सेफ्टी के लिए, बिकॉज ये ना हो मरीज से दूसरे को बीमारी लग जाए,
0: बिल्कुल
1: वो प्रिवेंशन है, वो हमें सबका करना है। दूसरा आपने सवाल पूछा, और एलर्जीज, ड्रग एलर्जीज शुड बी रिकॉर्डेड, ये पता होना चाहिए किस ड्रग से एलर्जी है। अगर आपको पहले से पता है तो आप उसको रेड पेन से लिख सकते हैं फाइल में, और एक एलर्जिक रिएक्शन को रोका जा सकता है। एलर्जिक रिएक्शंस कैन बी वेरी फैटल, दे डोंट गिव टाइम टू ए डॉक्टर टू मेक द पेशेंट रिकवर। सो इसलिए एलर्जीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल। एडवांसमेंट की अगर हम बात करें तो ओपन सर्जरी से लेप्रोस्कोपिक और फिर रोबोटिक सर्जरीज भी अब ट्रेंड में है, तो उस पर भी हम चाहेंगे कि आप हमें
1: एक्चुअली
0: बताएं।
1: जो लैप्रोस्कोपिक है, जिसको मिनिमल इन्वेजन बोलते हैं, इट इज़ डन विद ए कैमरा, एंडोविजन कैमरा,
0: ओके
1: एंड देयर द मैग्निफिकेशन ऑन द स्क्रीन इज़ वेरी हाई, और आप बहुत अच्छे से उसी सर्जरी को जो आप ओपन से करते हैं ज़्यादा विजन में कर पाते हैं, दैट इज़ वन। इसलिए और ब्लड लॉस नहीं होता है, एंड विद एक्सपीरियंस दैट बिकम्स फास्टर देन ओपन सर्जरी। गॉल बेडल्स कैन बी डन इन 10-15 मिनट्स टूडे,
0: ओके
1: मोस्ट ऑफ द गॉल बेडल,
0: ओके
1: अपेंडिक्स, हर्नियाज, दे आर रूटीन सर्जरीज,
0: यस
1: सो दैट इज वॉट। बट जो आप रोबोटिक की बात कर रहे हैं, दैट्स ए डिफरेंट एक्सपीरियंस, दैट इज एन इमर्सिव एक्सपीरियंस। उसमें आप स्क्रीन पे काम करते हैं तो एक आपको ऐसा लगता है कि ऑर्गन आपके हाथ में आ गया है, या आप
0: ओके
1: पेट पेशेंट के पेट के अंदर बैठ के ऑपरेशन कर रहे हैं। सो
0: जी
1: वो चीज़ रोबोटिक में जितना प्रिसीजन है वो लैप्रोस्कोपी में, अभी लैप्रोस्कोपी भी प्रिसीजन है, बट रोबोटिक फॉर मैलिग्नेंसी इज वेरी गुड, बिकॉज यू कैन टेक आउट ऑल द कैंसरस टिश्यू मच मोर देन लैप्रोस्कोप।
0: ओके तो अगर
1: बट
0: रिस्क फैक्टर की हम बात करें तो वहां हम कैसे इन सर्जरीज को देखें।
1: बोथ आर द सेम,
0: ओके
1: बट फॉर रोबोटिक यू नीड ए डिफरेंट सेटअप। यू अनदर थिंग, वंस यू फिक्स अप ए पेशेंट इन पोजिशन फॉर रोबोटिक सर्जरी, यू कैनॉट चेंज दैट पोजिशन, जो
0: यस
1: आप लेप्रोस्कोप में कर सकते हैं। सो इसलिए उसकी जो पोजीशनिंग है वो इतना एक्यूरेट हो कि अगर ड्यूरिंग सर्जरी कुछ दिक्कत बन गई रोबोट में तो उसको रिवर्ट करना मुश्किल है।
0: बिल्कुल
1: सो इसलिए जो अगेन स्टाफ, द ट्रेन पीपल,
0: यस
1: वेरी इंपॉर्टेंट,
0: ओके
1: बट इट इज एन इमर्सिव एक्सपीरियंस,
0: जी यस
1: आई मीन्स इट्स डिफरेंट।
0: यस सर एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। हेलो
2: हेलो,
0: जी सर, बताएं अपना नाम और अपना सवाल पूछिए।
2: हेलो,
0: जी अपना
1: यस,
0: नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए।
2: हाँ, मेरा नाम राजेंद्र है सर, मैं ये दिल्ली नॉर्थ से बोल रहा हूँ, नरेला से।
0: जी
2: ये सर, ये वाइफ के गाल ब्लैडर में पथरी है, उसकी एज 70 ईयर्स है और डायबिटिक है, लेकिन उसका जो टेस्ट में CA 99 बड़ा हुआ निकलता है, तो इसलिए कोई डॉक्टर हाथ लगाने को राजी नहीं है, क्या है ये सर।
1: ये एक्चुअली अगर वो डायबिटिक हैं और गॉल स्टोन है, और अगर उनका MRCP नॉर्मल है या PET-CT नॉर्मल है, तो आप इस सर्जरी को करवा सकते हैं और करवानी चाहिए, क्योंकि
2: नहीं,
1: डायबिटिक्स में गॉल स्टोन किसी भी सूरत में नहीं रखना है।
2: CA 99 बड़ा हुआ बोलते।
1: कोई बात नहीं, वो बिना रीजन के भी बड़ा मेलिक, जरूरी नहीं है कि कैंसर हो, इसलिए एक MRCP जरूर करें, और अगर उसमें भी कोई डाउट है तो PET-CT कर लें, उससे आपका सारा कुछ निवारण हो जाएगा।
2: वो सब हो रखा था, सब वो सब जगह से ओके आ गया, कैंसर से भी ओके आ
1: तो फिर
2: गया,
1: करना चाहिए ऑपरेशन करने में, आप करवा लीजिए।
2: लेकिन लेकिन मैं CGHS से हूँ, कहीं रेफर कर देते हैं, जैसे BL आपके RG स्टोन वगैरह, वहाँ भी फिर टेस्टिंग में डाल देते हैं,
1: नहीं
2: कोई
1: नहीं
2: इंटरेस्ट
1: आप
2: नहीं।
1: नेशनल हार्ट में किसी को नहीं डालते, जहां से मैं आता हूं
2: हाँ
1: आप
2: सर,
1: नेशनल हार्ट आ जाइए, हम कर देंगे,
2: ये कहाँ पर है नेशनल।
1: ईस्ट ऑफ कैलाश।
2: अच्छा, वो RG स्टोन जो है।
1: हाँ, उसके पास है, हमारा अलग है उनसे।
0: जी
2: अच्छा, मैं CGHS
1: कोई
2: बेनिफिशियरी हूँ,
1: बात
2: तो
1: नहीं,
2: वहाँ मुझे
1: हाँ मिलेगा आपको
0: जी
2: नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट।
1: जी।
2: थैंक यू सर सो मच।
0: जी एक और सवाल सर हमारे पास आया हुआ है। यूट्रस रिमूव हुए 8 ईयर्स हो चुके हैं, क्या भार उठाने का अब भी ध्यान रखना होगा? और ये सवाल हमसे पूछा है रविंद्र पाठक और आशा पाठक जी ने नीदरलैंड से।
1: 8 साल तो काफी समय है, वह एवरेज वेट जितना 10-15-20-25 किलो तक आप उठा सकते हैं, बट आप अगर 50-60 किलो, तो आम आदमी, उसकी आपको आदत नहीं है, जिस वेट को आपको डेली उठाने की आदत है उतना आप उठाते रहिए।
0: जी बिल्कुल सर, हम सर्जरीज के टॉपिक पर वापस आ रहे हैं।

0: एस्थीसिया को लेकर भी कुछ मिथ्स लोगों के बीच हैं, तो हम चाहेंगे कि आप उनके
1: एक्चुअली
0: बारे में बताएं।
1: जो मॉडर्न सर्जरी है इसके अंदर एनेस्थेटिस्ट हैज अ वेरी बिग रोल टू प्ले,
0: यस ऑफ कोर्स,
1: बिकॉज दे कैन मॉडिफाई द सीन.
0: बिल्कुल
1: सो एक्सपीरियंस्ड एनेस्थेटिस्ट, बिकॉज एनेस्थीसिया ड्रग्स रिकवरी, ऑल दो एनेस्थीसिया इज वेरी गुड, इट इज ओनली एज लॉन्ग एज वी ऑपरेट पेशेंट रिमेन्स एनेस्थेटाइज्ड, उसके बाद उससे पहले पेशेंट अवेक है. सो एक बहुत अच्छा एनेस्थेटिस्ट जो वाइटल्स को स्टेबल रखे, बीपी पल्स भी, तो उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है. एंड नाउ इनके पास इंट्यूबेशन टेक्निक्स भी डिफरेंट है. सो एनेस्थीसिया हैज ऑल्सो इम्प्रूव्ड, एनेस्थीसिया इम्प्रूव हुआ है इसीलिए सर्जरी इम्प्रूव हुई है.
0: बिल्कुल
1: हाँ
0: जी। तो शरीर के हर हिस्से या हर बीमारी की सर्जरी क्या लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक तरीके से पॉसिबल है, या इसका भी कैटेगराइजेशन हम कर सकते
1: नहीं,
0: हैं?
1: हर हिस्से को लेप्रोस्कोप से नहीं या रोबोट से नहीं कर सकते हैं. लाइक अगर आप आजकल हालांकि थायराइड को भी करते हैं लोग, बट नॉट वेरी, और टंग ओरल कैविटी का रोबोटिक इज वेरी न्यू, पीपल आर गेनिंग एक्सपीरियंस, बट एब्डोमेन के लिए अंदर रोबोटिक बहुत अच्छा है. देन यू हैव, इट इज गुड फॉर प्रोस्टेट, यूरोलॉजी में सबसे बड़ा रोल है इसका. देन कार्डिक सर्जरी, एक्चुअली रोबोटिक सर्जरी स्टार्टेड विद कार्डिक सर्जरी, तो उसमें बहुत इसका यूजफुल वो है, इट्स कुड बी डन. एंड ऑर्थोपेडिक्स में नी रिप्लेसमेंट में इसको यूज किया जाता है.
0: सर, कौन से ऐसी चीजें हैं या साइंस हैं जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि हमें अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? और जैसे नी रिप्लेसमेंट की बात हमने की या हार्ट प्रॉब्लम की भी हमने बात की, तो कई बार देर हो जाती है, तो वो देर ना हो इसके लिए किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना ज़रूरी है?
1: देखिए अगर पेशेंट को कोई भी सिम्टम है और वो सुधर नहीं रहा है, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड है चाहे वो बोन से रिलेटेड है, तो उसको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए.
0: बिल्कुल। तो सर, प्री केयर की हमने बात की और अब हम पोस्ट केयर की तरफ
1: यस
0: बढ़ते हैं। तो सर्जरी के 24 से लेकर 48 घंटे, सर्जरी के बाद के 24 से 48 घंटे कितने इम्पोर्टेंट हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान
1: या
0: रखना
1: एक्चुअली
0: ज़रूरी
1: फर्स्ट 24 आवर्स, 0 आवर टू 24 आवर्स इज वन
0: है?
1: थिंग, एंड देन 1 डे टू 7 डेज. नाउ इट डिपेंड व्हाट सर्जरी, क्या सर्जरी आपने किया है. जो जो जैसे रूटीन सर्जरीज हैं, गॉल बेडर है, हर्नियाज है, अपेंडिक्स है, इसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर आपका एनेस्थीसिया ठीक रहा है, पेशेंट का सिलेक्शन ठीक रहा है, तो पोस्ट ऑप रिकवरी इज़ वेरी स्मूथ मोस्ट ऑफ द टाइम. बट फिर भी जो वहाँ पे रिकवरी रूम में स्टाफ होता है वो मोस्ट लाइकली एक अच्छी नर्स होनी चाहिए जो बहुत जल्दी से ये पकड़ ले कि पेशेंट कहाँ पे किस तरफ जा रहा है.
0: बिल्कुल
1: दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग,
0: बिल्कुल
1: सो दैट यू कैन, सपोज किसी का बीपी गिर गया, गया किसी की पल्स फास्ट हो गई या पल्स गिर गई, सो शी कैन पॉइंट आउट एंड कॉल द डॉक्टर अर्ली, बिकॉज डॉक्टर्स आर बिजी एट सो मेनी अदर प्लेसेस.
0: जी बिल्कुल। इस पर हम आगे भी बात करेंगे सर, लेकिन एक अच्छा सा गाना यहाँ
1: हाँ
0: पर ज़रूर सुनना चाहिए
1: हाँ
0: हमें।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, ये है आज का विषय जिस पर हम बात कर रहे हैं। तो अगर आपके पास भी है इस टॉपिक से, इस विषय से जुड़ा कोई सवाल, तो तुरंत नंबर डायल कीजिए 0112342108 या फिर 2342108 या फिर आप व्हाट्सएप के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 9868107070। सर, पोस्ट ऑपरेटिव केयर की हम बात कर रहे थे तो
2: एक सेकेंड।
1: जी सर,
2: प्री ऑपरेटिव में शायद मैं बोलना भूल गया हूँ।
1: जी,
2: जो भी पेशेंट ब्लड थिनर्स में है, खून पतला करने की दवाइयों, विच इज वेरी कॉमन,
1: यस,
2: दे शुड बी डिस्क्लोज टू द डॉक्टर बिकॉज ब्लीडिंग कैन बी फैटल।
1: यस,
2: सो एंटीकॉगुलेंट्स और एंटी प्लेटलेट्स ये ऑपरेशन से पहले बंद होने हैं। दे आर ए बिग रिस्क।
1: बिल्कुल, तो इसकी जानकारी खुद से डॉक्टर को
2: दे और डॉक्टर भी पूछे।
1: जी,
2: इम्पोर्टेंट नाउ।
1: यस, इसी से रिलेट करके उम्र के फैक्टर पर भी हम चाहेंगे कि आप बताएं।
2: एज इज नो बार फॉर सर्जरी।
1: ओके,
2: 31 साल का पेशेंट कैन बी सो सिक दैट ही इज नॉट फिट फॉर सर्जरी, एंड 90 इयर्स ओल्ड मैन कैन बी सो फिट दैट ही इज बेटर देन 30 इयर्स। सो आई थिंक इट इज ऑन एवरी पेशेंट टू पेशेंट, हमें एसेस करना है कि कौन फिट है या कौन नहीं, एज नहीं है क्राइटेरिया।
1: बिल्कुल, एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। हेलो।
3: हेलो
1: जी, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए।
3: मैं संजीव बोल रहा हूँ दिल्ली से।
1: जी, अपना सवाल पूछिए।
3: मुझे लेफ्ट साइड में हर्निया है और प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम है, क्या मैं ऑपरेशन करवा सकता हूँ उसका, हर्निया का?
2: आपकी एज कितनी है?
3: एज 68 है, वजन 50 किलो।

0: अगर आपको प्रोस्टेट की दिक्कत है और अल्ट्रासाउंड में ये दिखता है कि यूरिन आपका काफ़ी रुक रहा है यूरिन करने के बाद, तो पहले गदूत का ऑपरेशन कराइए, उसके बाद हर्निया का कराइए।
1: पहले किसका
0: गदूत, प्रोस्टेट।
1: प्रोस्टेट, पहले हर्निया का नहीं हो सकता?
0: नहीं, वो हर्निया फेल हो जाएगा। ठीक है
2: जी, तो सर उम्र का कोई बैरियर अब है नहीं और सर्जरी की भी एडवांसमेंट हमारे सामने मौजूद है, बेहतर से बेहतर ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, पर मेंटल हेल्थ को किस तरह से संभाला जाए ये भी आपसे जानना चाहेंगे।
0: एक्चुअली, जो इलेक्टिव केस होते हैं उसमें जो भी डॉक्टर काफ़ी समय से मरीजों से बात करते रहते हैं, काम कर रहे हैं अस्पतालों में, समाज में, वो उनको समझ आने लगता है कि पेशेंट की जो मानसिक स्थिति है, जो उसकी इच्छा है वो क्या है,
2: बिल्कुल।
0: उसको समझा जाए और उसके हिसाब से इलाज प्लान किया जाए। दैट इज़ व्हाट आई विल से
2: जी
0: नाउ। आई वॉन्ट से बट, लेकिन आजकल जो साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक, उनका उनको इन्वॉल्व करना चाहिए इस काम
2: बिल्कुल।
0: में।
2: और सर पोस्ट ऑपरेटिव केयर में इसका
0: उसमें
2: कितना रोल है?
0: भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका मॉरल जो पेशेंट का, उस सर्जिकल पेशेंट का मॉरल बहुत वीक होता है, तो उसको स्ट्रांग रखना है। मतलब ऐसे लोगों से ना मिले जो उसको रोज कुछ उल्टी सीधी
2: डीमोटिवेट।
0: बातें बता जाए और बोले
2: यस
0: तेरे को ये हो जाएगा और वो हो
2: जी
0: जाएगा,
2: जी
0: तो वो उनसे दूर रहे।
2: बिल्कुल
0: ठीक है,
2: सर, एक सक्सेसफुल सर्जरी के बाद भी संबंधित डॉक्टर के पास फॉलोअप विजिट कितनी जरूरी है? अमूमन देखा गया है कि लोग इसमें लापरवाही कर देते हैं।
0: ये डिपेंड करता है कि ऑपरेशन क्या हुआ है।
2: अच्छा
0: सपोज, अगर आपने दो, इसमें डिवाइड करूंगा हिस्सों में, एक तो कैंसरस, एक नॉन कैंसरस।
2: जी
0: जो कैंसरस है उनमें तो रेगुलर फॉलोअप चाहिए ही चाहिए, और जो नॉन कैंसरस हैं, जैसे गॉल ब्लैडर है, हर्निया है, हर्निया में आई डोंट थिंक दे नीड ए फॉलोअप।
2: ओके
0: बिनाइन डिजीज में फॉलोअप नहीं चाहिए, इतना नहीं चाहिए। अगर उसको कोई सिम्टम है तो जाए, नहीं तो नहीं जाए।
2: जी, सेल्फ
0: बट
2: केयर इज
0: फॉर
2: सफिशियंट।
0: कैंसर
2: यस
0: यू नीड ए फॉलोअप।
2: ओके और सर हम डाइट की भी अगर हम बात करें तो सर्जरी के बाद किस तरह की राय दी जाती है?
0: मोस्टली वी से टेक मोर प्रोटीन्स,
2: ओके
0: दैट इज वॉट, विटामिन्स, मिनरल्स। आजकल जो सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी है वो B12 और विटामिन डी की है।
2: यस

0: सर
1: यस
0: यू नीड ए फॉलो अप.
1: ओके. और सर हम डाइट की भी अगर हम बात करें तो सर्जरी के बाद किस तरह की राय दी जाती है?
0: मोस्टली वी से टेक मोर प्रोटीन्स.
1: ओके.
0: दैट इज व्हाट विटामिन्स मिनरल्स. आजकल जो सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी है वो B12 और विटामिन डी की है.
1: यस yes.
0: उसको पूरा रखिए
1: जी.
0: दैट कंट्रोल्स लॉट ऑफ डिजीज.
1: जी सर, नहाने को लेके या पानी के संपर्क में आने को लेकर भी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, क्योंकि अमूमन स्टिचेस

0: या काफी टाइम तक पेन लेडीज महसूस करती हैं, तो उसमें सेल्फ केयर किस तरह से की जानी चाहिए?
1: एक्चुअली ये जो एपिजियोटमी जो डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी है उसमें एपिजियोटमी का इस्तेमाल, उसमें वाइक्रिल वगैरह से स्टिच किया जाता है, उसको ड्राई रखना है, रेगुलर उसकी एंटीबायोटिक क्रीम लगाना है, और उसमें इन्फेक्शन का चांस भी ज़्यादा होता है क्योंकि वो साइट ऐसी है। इसके लिए अपने डॉक्टर के पास बार बार जाना है और
0: बिल्कुल
1: चेकअप कराना है,
0: जी
1: एंड देन इट शुड बी डन।
0: जी बिल्कुल। और हम बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक और सवाल हमारे पास आ चुका है। एक्सीडेंट केस पर भी हम चाहेंगे कि आप हमें जानकारी दें। कोटद्वार उत्तराखंड से जानना चाहते हैं नरदेव सिंह चौहान सर। एक्सीडेंट केस में अगर कोई सर्जरी, इमीडिएट सर्जरी अगर करनी पड़े तो उसमें सेल्फ केयर का कितना रोल है और किस तरह से उसे डील किया जाना चाहिए?
1: एक्चुअली ये ना ट्रॉमा पे डिपेंड करता है, किस तरह, किसी को मल्टी ट्रॉमा है, जिसको ऑर्थोपेडिक्स भी है, ब्रेन इंजरी भी है, लंग इंजरी भी है, तो दे आर डिफरेंट, दे आर सेट डेल्ट इन डिफरेंट वेज, ऑल द पेशेंट्स आर ट्रीटेड इन अ डिफरेंट वे। और अगर कोई माइनर इंजरी है, सपोज एक ही इंजरी हुआ है, सपोज फ्रैक्चर हुआ है सिर्फ, दैट कैन बी फिक्स्ड। बट अगर मल्टी ट्रॉमा है तो उसके लिए मल्टी स्पेशलिटी चाहिए,
0: बिल्कुल
1: दैट्स व्हाट।
0: जी बिल्कुल। हम इस पर बातचीत आगे भी करेंगे और एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। हेलो
2: हाँ जी, नमस्ते मैडम जी,
0: जी नमस्ते, अपना नाम
2: और
0: बताइए।
2: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। मैं
1: नमस्कार,
2: योगराज गुड़गांव से बोल रहा हूँ
1: बोलिए,
0: अपना सवाल पूछिए। योगराज जी अपना सवाल पूछिए।
2: सवाल ये डॉक्टर साहब, ये है कि जैसे जो मस्से हो जाते हैं शरीर पे,
1: हाँ
2: तो इनका क्या हम ऑपरेशन करवाएं? जैसे गले में भी 7-8 मस्से हो गए हैं और काख
1: हाँ
2: में भी हो गए
1: जी
2: हैं,
1: जी
2: कई जगह पे मस्से हो गए हैं,
1: सुनिए,
2: ये किस कारण से होते हैं?
1: ये मोस्टली पुअर हाइजीन और वायरस की वजह से होते हैं। एक तो आप अपना जो घर में टॉवल वगैरह है, अपना टॉवल किसी के साथ शेयर मत करिए, वेरी इंपॉर्टेंट। घरों में कपड़े शेयर करते हैं, टॉवल
0: बिल्कुल
1: शेयर वो मत कीजिए। लेकिन अगर मस्से हैं तो इसको लेज़र से या कॉटरी से इसको हटाया जा सकता है, सुन करके। इसके लिए कोई एडमिशन नहीं चाहिए, ओपीडी में किया जाता है, करवाना चाहिए, उसको निकालना चाहिए।
0: जी बिल्कुल। और
1: इसको स्किन के डॉक्टर भी करते हैं, सर्जन भी करते हैं,
0: हाँ
1: काफी लोग करते हैं इसको।
0: जी, एक गाना सर जरूर यहाँ पर सुनते हैं,
1: हाँ
0: उसके बाद बातचीत
1: ठीक है,
0: जारी रखेंगे।

0: रेडियो डॉक्टर सुन रहे हैं आप, और जहां आज हम बात कर रहे हैं प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर की, जिस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एस के सिंगला, जो कि जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जन हैं। सर, हम बात कर रहे थे सर्जरीज की, तो प्लास्टिक सर्जरी आजकल बहुत ट्रेंड में है और देखी जा रही है, तो कहीं तो इसकी जरूरत होती है और कहीं लोग इसे शौक के लिए भी अपनाते हैं, तो इस पर क्या?
1: इट्स प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी।
0: यस,
1: प्लास्टिक सर्जरी, रिकंस्ट्रक्टिव इज फॉर कैंसर, इट्स ए डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, एंड अदर इज अ कॉस्मेटिक सर्जरी विच इज अबाउट से फेस लिफ्टिंग, गेटिंग स्कार्स रिमूव्ड, बट लेकिन वो हमेशा बराबर रिजल्ट नहीं देती हैं। तो वहां भी जो जरूरत है उसके हिसाब से काम किया जाए, लेकिन किसी बच्चे का लिप नहीं बना है, पैलेट नहीं बना है, तलवा नहीं बना है, उसको जरूर प्लास्टिक सर्जरी करानी चाहिए। या किसी की पैदाइशी उंगलियां जुड़ी हुई हैं या एल्बो जुड़ी हुई हैं, दे नीड प्लास्टिक सर्जरी, बट दैट इज नॉट कॉस्मेटिक, इट इज फॉर, इट्स अ रिक्वायरमेंट। सो कॉस्मेटिक सर्जरी मैं सोचता हूँ ये शौक के लिए नहीं करानी चाहिए, ये जरूरत है तो जरूर करानी चाहिए।
0: बिल्कुल, तो इस तरह की सर्जरीज में किस तरह से केयर की जानी चाहिए घर पर परिवार के?
1: इसमें बहुत, एक तो इसमें इन्फेक्शन रेट जीरो होना चाहिए।
0: ओके,
1: इन्फेक्शन होने का मतलब है प्लास्टिक सर्जरी जो आपने किया वो कामयाब नहीं होगी। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिव इन ए क्लीन रूम, दवाइयाँ, एंटीबायोटिक, विटामिन, और प्री ऑपरेटिव उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन ही ना हो। That is what, how it is.
0: Okay. Sir, minor और major surgeries पर भी हम बात कर लेते हैं, तो इसमें physical activities किस तरह से effect होनी चाहिए minor में, और major अगर surgery कोई हुई है तो उसमें किस तरह से हम differentiate करें या changes?
1: Actually जो minor surgery जैसे डे केयर surgeries होती हैं, minor surgery जैसे आपने सिस्ट निकाला या कुछ, उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आप अपने ऑफिस भी जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, दिस काइंड ऑफ, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ एनी डाइट एनीथिंग।
0: ओके,
1: लेकिन अगर आपका मेजर किसी का कोई लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है तो वो उसको तो 2-3-4-5-6 महीने बहुत केयर करनी है अपनी।
0: बिल्कुल,
1: तो दैट डिपेंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सर्जरी, लाइक अपेंडिक्स है, गॉल ब्लैडर, दे नीड केयर फॉर ए वीक और 10 डेज, बट अगेन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर है, दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, उसको दैट मैग्नीट्यूड ऑफ सर्जरी विल डिसाइड हाउ मच केयर ही नीड्स और हाउ लॉन्ग दे नीड।
0: सर, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी स्पेशली अगर हम बात करें तो किन किन इश्यूज में, हेल्थ प्रॉब्लम्स में ये कारगर है, और कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें ये अवेलेबल है और लोग आराम से इसको अफोर्ड कर सकते?
1: एक्चुअली जो एब्डोमिनल कैविटी की डिजीज है, गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स, इंटेस्टाइन, यूट्रस, उसके लिए

0: ये सब जगह एड्रेनल ग्लैंड, किडनी, यूरोलॉजी, बिल्कुल हर चीज़ में यूज़फुल है ये। दूसरा है ये लंग, इसको हम वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी बोलते हैं, वेट्स। उसमें आप लंग रिसेक्शन कर सकते हैं, डिकॉर्टिकेशन कर सकते हैं। तो इन जगहों पे ये बहुत कामयाब है।
1: जी बिल्कुल, तो डरने की ज़रूरत
0: नहीं,
1: नहीं है इसको।
0: आप थोरेक्स कराएं, एब्डोमेन कराएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1: बिल्कुल सर। और ये कैसे डिसाइड किया जाए कि सर्जरी पूरी तरह से कारगर है, या कुछ माइंड मतलब जो लापरवाहियां लोग कर देते हैं उससे उसको कैसे समझा जाए? जैसे इन खास तौर पे स्टिचेस की अगर हम बात करें तो इन्फेक्शंस को किस तरह से समझा जाए, कैसे वो, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं कई बार।
0: एक्चुअली उसको, उनको सिर्फ पर्सनल हाइजीन चाहिए, अपने नाखून काटने हैं, उसको स्क्रैच नहीं करना है, एंटीबायोटिक क्रीम लगाना है, डेली नहाना है। मेरी
1: पर्सनल
0: मेरी
1: हाइजीन इज
0: हाँ,
1: मोस्ट
0: पर्सनल हाइजीन,
1: इम्पोर्टेंट।
0: ओनली पर्सनल हाइजीन, एंड
1: और
0: आपका रूम का एनवायरनमेंट।
1: जी सर, पेन किलर्स का कितना रोल होना चाहिए
0: जितनी
1: सर्जरी के
0: कम से
1: बाद?
0: कम जरूरत है उतनी लेनी चाहिए, जितना पेशेंट टॉलरेट करता है उस तक पेन किलर नहीं लेना है। अगर वो
1: जी
0: इनटॉलरेबल है तो पेन किलर लेना है।
1: बिल्कुल सर। एक सवाल हमारे पास आया है, 2002 में लेफ्ट नी में इनके चोट लगी थी और तब इसका ठीक से इलाज नहीं हुआ था, और तब हॉस्पिटल में एमआरआई हुआ था बट डॉक्टर ने बताया कि लेफ्ट नी अंदर से टूटा हुआ है, कुछ कारण से ऑपरेशन नहीं करवा सके। तो अब क्या करें, बैठ नहीं पाते हैं, रनिंग भी नहीं कर पाते हैं, और कोई समाधान
0: ये
1: बताएं।
0: मोस्ट लाइकली ये लिगामेंट या मेनिस्कस की प्रॉब्लम है।
1: जी
0: उस समय एड्रेस नहीं हुआ तो आप करने चाहिए एक लेटेस्ट MRI करा के ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, तो जितना जल्द से जल्द हो
0: करें,
1: सके
0: इसमें फायदा हो सकता
1: सर्जरी।
0: है उन्हें।
1: जी क्योंकि टाइम काफी लंबा हो
0: वो
1: गया है जब सर्जरी।
0: रिहेबिलिटेशन हो सकता है, अभी भी हो
1: बिल्कुल
0: सकता है।
1: बिल्कुल, तो आपको देर नहीं करनी चाहिए और तुरंत इसका जो है क्योर आप लें और तुरंत सर्जरी की ओर जाएं, ये डॉक्टर साहब आपको राय दे रहे हैं। और सर जैसे कि हम बात कर रहे थे सेल्फ पोस्ट केयर की, तो डाइट की हमने बात कर ली, साथ ही मेडिकेशन की अगर हम बात करें तो कितना एक टाइम पीरियड होना चाहिए जिसमें हमें मेडिकेशन पर फुल
0: एक्चुअली
1: ध्यान रखना चाहिए?
0: ये प्रेजेंट डे सर्जरीज में मोस्टली एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं पोस्ट ऑप, मोस्टली हफ्ते से 10 दिन के ज़्यादा उनका ज़रूरत नहीं होता है,
1: अच्छा
0: उस तक ठीक है।
1: ओके
0: हाँ, अब बिना रीज़न के नहीं खाना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: ये पेशेंट खुद ही प्रिज्यूम कर लेते हैं इन्फेक्शन हुआ है तो 2 हफ्ते खा ली, 4 हफ्ते खा ली, वो नहीं करना है।
1: जी, तो मेडिकेशन डॉक्टर की सलाह से ही लें
0: देखो
1: और जितना ज़रूरी है उतना ही
0: उतनी
1: लें।
0: लें।
1: जी तो इसके साथ सर बिहेवियर में हम चेंजेस की हम बात कर रहे थे, मेंटल हेल्थ की आपने बताया कि साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, लेकिन कुछ जो चेंजेस हैं वो बहुत माइनर होते हैं, तो क्या उनको सेल्फ लेवल पे कंट्रोल किया जा सकता है या किया जाना चाहिए?
0: सी दैट मीन्स द माइनर एंग्जाइटी
1: यस
0: और वरी विच
1: यस
0: इज रूटलेस
1: यस
0: दैट कैन बी टैकल्ड बाय द ट्रीटिंग डॉक्टर।
1: ओके बिल्कुल। और सर इसी के साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी पर हम वापस आएंगे, तो रोबोटिक सर्जरी अभी चूंकि बहुत नया कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा लोग अवेयर नहीं है इस
0: इंडिया में
1: टॉपिक को, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है, तो उस पर हम ज़रूर चाहेंगे कि आप हमारे जो लिसनर्स हैं उन्हें थोड़ा सा डिटेल में बताएं ताकि उनके अंदर का जो कन्फ्यूजन है या डर है वो
0: एक्चुअली
1: खत्म हो सके।
0: रोबोटिक सर्जरी फॉर कैंसर, एज मैंने पहले बोला है, बहुत अच्छा है। इसकी एक ही प्रॉब्लम है, द कॉस्ट।
1: यस
0: रोबोटिक सर्जरी की कॉस्ट एंड देन द ट्रेनिंग। अभी हमारे पास सेंटर्स नहीं है इतने जितने हम ट्रेन कर सके लोगों को, एंड देन मशीन्स आर नॉट अवेलेबल, रोबोट्स आर नॉट फ्रीली अवेलेबल, इजिली अवेलेबल, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। सस्ते से सस्ते रोबोट भी 8 से 10 करोड़ रुपए के आते हैं,
1: यस
0: और जो अच्छी कंपनीज हैं, जो फेमस हैं, वेल एस्टेब्लिश, वो 20-25 करोड़ का रोबोट आता है। उसका कंज्यूमेबल बहुत महंगा है, सो वो एक रेस्ट्रिक्शन है। और धीरे धीरे ये रोबोटिक सर्जरी होनी है 15-20 साल के बाद पूरी दुनिया में।
1: जी बिल्कुल, तो इंडिया में अभी क्या कंडीशन है और
0: अभी
1: किन
0: काफ़ी
1: चीज़ों में?
0: केसेस हाई, जो हाई वॉल्यूम सेंटर्स हैं उनमें 300-400 केस होते हैं, 250-300 केस महीने के होते हैं रोबोटिक, इन हाई वॉल्यूम सेंटर्स
1: जी
0: जहाँ पे रोबोट्स हैं। और रोबोट के लिए एक डॉक्टर सफिशिएंट नहीं है, देर
1: अच्छा
0: शुड बी एटलीस्ट 20-30 सर्जन्स,
1: ओके
0: देन ओनली यू कैन कीप द मशीन बिजी
1: ओके
0: एंड कीप द प्रैक्टिस।
1: यस
0: ये इम्पॉर्टेंट है।
1: जी, तो वो और सर चलते चलते आपसे ये ज़रूर समझना चाहेंगे कि कौन सी वो कंडीशंस हैं जिनमें हम लेप्रोस्कोपिक से रोबोटिक की तरफ जाना हमारे लिए फायदेमंद रहेगा?
0: कोलोरेक्टल कैंसर्स,
1: यस
0: कोलोरेक्टल कैंसर्स के लिए रोबोट इज वंडरफुल।
1: ओके।

0: हाँ वेरी गुड रिजल्ट्स, दैट इज वन आई विल ओनली से कोलोरेक्टल. मैं गॉल बेटर और उसमें कोई खास अंतर नहीं है लैप्रोस्कोप और रोबोट. वो तो दैट इज लाइक ए फैशन, पीपल हैव मनी दे विल गो एंड गेट इट डन.
1: जी तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इतनी सारी और इतनी सटीक जानकारी हमें देने के लिए. उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स के भी सारे डाउट्स आज आपने क्लियर कर दिए हैं. और एक बार फिर लिसनर्स को मैं बता दूं कि डॉक्टर एस के सिंगला हमारे साथ आज मौजूद रहे पूरे प्रोग्राम में, जिन्होंने प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में हमें इतनी सही और सटीक जानकारी दी. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका. और इसी के साथ दोस्तों मुझे यानी नाज को लेनी होगी आपसे इजाजत. स्वस्थ रहिए और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, साथ ही बने रहिए एफएम रेनबो के साथ.

नमस्कार, पेश है एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम की प्रधानमंत्री बार्ट डी वेबर ने आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों नेताओं ने संयुक्त वक्तव्य जारी किया। भारत और बेल्जियम ने रक्षा, साइबर क्राइम, डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग पर कई ज्ञापन समझौते किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रांकन के बीच शिष्टमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने भविष्य की परियोजनाओं के लिए आपसी सहयोग करने पर बल दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापारिक सम्मेलन निवेशकों के समक्ष भारत की सुधार आधारित विकास की चर्चा की। कहा, वैश्विक व्यवधानों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। भारत और फ्रांस ने वस्त्र और फैशन क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्रों और कौशल को बढ़ावा देना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स SIAM के 66वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नवाचार, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा कीमतों के बल पर भारत विश्व की नंबर एक ऑटोमोबाइल उद्योग बनने की क्षमता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह IOS-5 का कल प्रक्षेपण करेगा। यह उपग्रह GSLV-F17 रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। प्रधानमंत्री और वाराणसी

0: से सांसद नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। मौसम विभाग ने अगले दो दिन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की। लद्दाख में 4 और 5 सितंबर को मद्रास महोत्सव आयोजित किया जाएगा। और खेलों में कादिम्बी श्रीकांत ने चीन मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। महिला एशिया कप 2020 में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। बने रहिए हमारे साथ हमारे अगले कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के लिए।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: नंदन वंदन अभिनंदन। संदेश टू सोल्जर्स की आज के इस अंक में मैं गीतिका उनियाल आप सभी का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। हर बार की तरह हमारा आज का ये कार्यक्रम आत्मिक होने वाला है, क्यों कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ऐसे ही एक मेहमान जिन्होंने 40 वर्षों तक सेनाओं के जरिए सेना में अपनी सर्विसेज देने के बाद आज सेवानिवृत्त होने पर भी अपना कार्य करना नहीं छोड़ा। अपनी कर्तव्य निष्ठा, अपने कर्म से उन्होंने अपने लिए एक नए आयाम ढूंढे हैं। उनके नए आयाम क्या हैं ये बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल अशोक कुमार। अति विशिष्ट सेवा मेडल से इन्हें सम्मानित किया गया है और ये एक्स डायरेक्टर जनरल वर्क्स इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैं। आज हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज एक ऐसे ऑफिसर हमारे साथ हैं जिन्होंने हमारी सेना को सशक्त किया है। अक्सर हम यही कहते हैं कि सेना का अर्थ है हमारे तमाम वो फौजी जो मैदाने जंग में जाकर लड़ते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारे ये फौजी सेना को सशक्त करते हैं, अपने साथियों को सशक्त करते हैं? अब आप पूछेंगे कैसे, वो ऐसे कि हमारे आज के जो गेस्ट है, मेहमान है, ये एक सोल्जर होने के साथ साथ एक मिलिट्री इंजीनियर भी हैं और इन्होंने सेना में रहते हुए असीम योगदान दिए हैं। तो आइए सर्वप्रथम सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान मेजर जनरल अशोक कुमार जी का। अशोक जी आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी है
0: जी। जब भी हमारे इस कार्यक्रम में आप जैसी हस्तियां शिरकत करती हैं, पहुंचती हैं, तो सबसे पहला सवाल मेरी ओर से यही रहता है कि वो कौन सी कैसी बात थी, कौन सी कैसी चाह थी जो आपको भारतीय सेनाओं की तरफ ले गई, क्या वो बात थी जिसने आपको आकर्षित किया कि अगर जाना है तो बस सेना में ही जाना है और सेना के माध्यम से ही अपने देश प्रेम को स्थापित करना है?
1: सो गीतिका, वो दौर ऐसा था जब you know, हमारे पास विकल्प कुछ थे भी और कुछ नहीं भी थे, पर उन सब में जो परम विकल्प था वो फौज ज्वाइन करना था। और वह इसलिए भी था कि हमारे पिताजी स्वयं फौज में थे, वो इंडियन नेवी में थे और उनके साथ में हम कई वर्षों तक रहे, अलग अलग जगहों पर हमने गए और दिल में एक ऐसी उम्मीद थी कि हम भी उनके पद्म चिन्हों पर चलेंगे और फौज में जाने की कोशिश करेंगे, जो कि कामयाब हुआ।
0: वाह क्या बात है। अक्सर ये देखा जाता है जब वो बच्चे जिनकी परवरिश

0: फौजी माहौल में होती है तो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में जिंदगी जीते हैं, तो क्या वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था जो बचपन से ही आपको रास आया?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हमारे पिताजी हमें बचपन से ही उन्होंने जो सिखलाई करी, वो चाहते थे कि जैसा वो अपने नियमित रूप में करते हैं वैसा ही हम सब करें। हमने कोशिश की कि हम उनके पदचिन्हों पर चल पड़ें और उनके जैसे काफ़ी चीज़ें सीखें। कुछ हमने सीखा, कुछ आज भी हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं।
0: वाह क्या बात है, तो सीखने सिखाने का सिलसिला बरकरार है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये भी जानना चाहते हैं आपसे कि भले ही घर में माहौल स्ट्रिक्ट रहा हो तो इसके बीच शैतानियां ना हुई हो ऐसा भी मुमकिन नहीं?
1: स्ट्रिक्ट माहौल, आई थिंक उन दिनों में जो तरीके थे काम करने के वो इस तरह के थे कि जब तक बच्चे को एक खुराक ना मिल जाती तो वो
0: जी
1: आगे नहीं बढ़ते थे। लेकिन आज का ज़माना शायद बदल चुका है, लेकिन हम उन चीज़ों से यूज़ टू हो चुके थे और हम अपने तरीके से, हम अपने दोस्तों के साथ में शैतानियाँ भी करते थे, खेलकूद भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे और अपने काम में कोशिश की कि हम वो अचीव कर पाएँ जो हम चाहते थे। और फ़ौज का जो हमारा एक लक्ष्य था वो हमने उन सब चीज़ों में रहते हुए हासिल किया।
0: जी ऐसा भी दौर आता होगा कि पिताजी लंबे समय तक कहीं बाहर रहते हों, टूर्स पे रहते हों, अपने मिशन्स पर रहते हों, तो उस बीच उनके साथ संपर्क ना हो पाता हो, तो ऐसे में किसको अपनी बात कहते और कैसे घर का सामंजस्य माताजी बनाती?
1: ये सब चीज़ें आई थिंक फौज में जब आप रहते हैं, आपके पिताजी, आपके पेरेंट्स, सो आप इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हो जाते हैं और आफ्टर सम टाइम ज़िंदगी का एक रूप जो है वो अपने आप में एक तरीके से ढलने लग जाता है। जब आपको मालूम होता है कि आपके पिताजी जब आपके साथ में नहीं हैं तो आपने क्या क्या कार्य करने हैं, मदर के साथ में कैसे डील करना है, अपने जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ में कैसे करना है और अपनी पढ़ाई का ध्यान कैसे रखना है। उन दिनों में मोबाइल्स नहीं होते थे, कम्युनिकेशन के ज़रिए चिट्ठियों के द्वारा हुए थे तो उनका एक अलग खुशी थी उसमें, एक अलग तरीका था और हमें मालूम होता था कि कब पिताजी आएंगे और कब हमारी खिंचाई होगी। लेकिन साथ ही साथ हम अपना काम करते रहते थे और वो सारी जिम्मेवारियां भी निभाते थे जो आज कम देखने को मिलती हैं।
0: एक बच्चे के लिए उसके पिता उसके रोल मॉडल होते हैं, तो जब कभी आपने अपने पिता को यूनिफॉर्म में देखा उस वक्त क्या फीलिंग आई, उस वक्त क्या सोचा आपने?
1: सो यूनिफॉर्म में तो जब से हम पैदा हुए और हमारी हम एक उस स्टेज में आए जब, तो हमने अपने पिताजी को हमेशा यूनिफॉर्म में देखा और अच्छा लगता था। वो यूनिफॉर्म सफ़ेद रंग की होती थी और वो नेवी में कार्यरत थे, सो काफ़ी अच्छी अच्छी जगहों पर उन्होंने पोस्टिंग करी। तो हमारा भी इरादा था कि हम भी फ़ौज में जाएं। हम चाहते थे कि हम एयरफोर्स में जा पाएं, लेकिन हम फाइनली आर्मी में गए और आज हमें कोई शक नहीं है कि जो भी हमने आर्मी से सीखा वो काबिले तारीफ़ है और हमारे जीवन की जो कार्यशैली है वो उससे हमने बहुत कुछ सीख कर आज हम एक सशक्त इंसान बने हैं। इसका मैं धन्यवाद अपने पेरेंट्स को, अपने पिताजी को, अपनी माँ को जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, पिताजी हैं, तो उन सबको देता हूँ जिनके वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं।
0: जी निश्चित रूप से। वो पल कौन सा पल था, कैसा पल था और कब घटित हुआ जब आपने आर्मी का एग्जाम क्लियर किया? क्या थी वो पूरी प्रक्रिया जिसके तहत आप एक ऑफिसर बने इंडियन आर्मी में?
1: उन दिनों में जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते थे और अमूमन फौजी बच्चे ज़्यादातर ऐसे ही स्कूलों में पढ़ते थे और उनका काफ़ी नाम हुआ करता था और काफ़ी अच्छी पढ़ाई हुआ करती थी। तो हमारी ये जिद्दोजहद थी कि हम पहला हमारा जो लक्ष्य होगा वो फ़ौज का होगा। सो पहला जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उन दिनों में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, जिसको हम NDA कहते हैं, उसके एग्ज़ाम हुआ करते थे। वो उन दिनों में 11वीं के बाद होते थे और मुझे याद है कि हम ग्रुप बना के सारे दोस्त एक साथ पढ़ा लिखा करते थे और कोशिश करते थे कि हम उसको निकल पाएँ। और सबसे अच्छी बात ये रही कि हमने अपना जो इम्तिहान था वो पहली दफ़ा में क्लियर कर लिया था, लेकिन NDA के दौरान में कुछ ऐसे इश्यूज आए कि हम ज्वाइन नहीं कर पाए। वो कसक जो है दिल में लगी रही और ये रहा कि हमें फ़ौज में ही जाना है। तो हमने 3 साल और मशक्क़त की, ग्रेजुएशन की, बम्बई यूनिवर्सिटी से BSc में उत्तीर्ण हुए और फिर दोबारा से हमने उसी सेंटर में उसी उम्मीद के साथ फिर एक बार जूझे और फिर पहली दफ़ा में हमने एग्ज़ाम क्लियर किया। और एयरफोर्स में जाने की ख्वाहिश तो थी, लेकिन कुछ मेडिकल रीजंस की वजह से हम आर्मी में आ गए.
0: जी.
1: सो एंड आई हैव नो रिग्रेट्स, मुझे कोई ऐसी शिकायत या गिला नहीं है. लेकिन जो

0: सफर रहा बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत लोगों से मुलाकात हुई, हमने ज़िंदगी के कई दायरे कई पहलू ऐसे सीखे जो आज तक हमारे साथ हैं, और उम्मीद है कि हम अपने बच्चों में भी ये चीज़ें डालने की कोशिश करते हैं।
1: जी, तो सन 1986 में आपने अपना एग्जाम क्वालिफाई किया,
0: हाँ
1: सीडीएस
0: जी,
1: एग्जाम,
0: जी
1: और
0: हाँ,
1: फिर 1987 में आप कमीशन्ड हुए इंडियन आर्मी में।
0: हाँ जी।
1: जी, तो फिर पहली पोस्टिंग कहाँ मिली, कौन सी रेजिमेंट ज्वाइन किया आपने?
0: जब हमने ट्रेनिंग के दौरान IMS से निकले तो कुछ दिनों के लिए हम रुड़की में एक छोटा ट्रेनिंग कैप्सूल होता है, जिसको करने के बाद में हमारी पहली पोस्टिंग सिक्किम में आई, जो कि आपने सुना होगा नथुला पोस्ट है
1: जी
0: जो चाइना के अक्रॉस है। सो हमारी यूनिट की एक टुकड़ी वहाँ पर तैनात थी, और हम जैसे ही यूनिट पहुँचे कुछ दिन कैलिमपोंग एक जगह है जहाँ पर रहने के बाद में तकरीबन 15-20 दिन के बाद हमको वहाँ भेज दिया गया, और ऑलमोस्ट 2 साल हम वहाँ पर रहे, और जो कुछ वो सीखने को मिला उस दौरान में वो काफ़ी काबिले तारीफ था। हमने अपने अपने आप भी काफ़ी कुछ सीखा, लेकिन जो हमारे सरदार साहिबान और हमारे जवान और हमारे जो अफसरान थे उनके ज़रिए हमने काफ़ी कुछ सीख ली जो आज तक हमारे साथ में बरकरार है।
1: वाह, क्या बात है। एक बात और जानना चाहती हूँ आपसे। वैसे तो भारतीय जो सेना है, जो ट्रेनिंग्स आपको दी जाती है, टफेस्ट ट्रेनिंग्स कहा जाता है वर्ल्ड में, लेकिन ट्रेनिंग्स के बाद भी जब आप एक ऑफिसर बन जाते हैं, आपकी जिम्मेदारियाँ आपको दी जाती हैं, आप पर कार्यभार दिया जाता है, आपको डिसीजंस लेने होते हैं, कमांड सुनने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है, तो वो मंजर कैसा था? क्या आपकी कल्पनाओं से एकदम अलग था, या जो आप सोच के गए थे बिल्कुल वैसा था?
0: आपका जो सोचने का तरीका होता है वो आपकी एक अपनी तरतीब होती है कि आप सोचते हैं कि ज़िंदगी की चीज़ें इस तरह से चलेंगी, लेकिन जब आप ज़मीन पर हकीकत में देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं, कई चीज़ें उसके विपरीत भी होती हैं, और आप देखते हैं कि ज़िंदगी के मायने कुछ और भी हैं, और उसमें जो सीखने सिखाने वाले लोग हैं, आपके जो सीनियर अफसरान हैं वो तो है ही हैं, लेकिन जो आपकी टुकड़ी के जवान हैं, जो JCOs हैं, जो तजुर्बेकार हैं, उनके ज़रिए आप बहुत कुछ ऐसा सीखते हैं जो शायद आपको अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में प्रैक्टिकली शायद नहीं सिखाया जाता है। वो जब आप ज़मीनी हकीकत के साथ जुड़ते हैं तो आप वो एक अलग ही सीख होती है, और वो आपके साथ ज़िंदगी भर बरकरार रहती है। तो उसके लिए मैं अपने जवानों का और अपने जो सरदार थे उनका काफ़ी शुक्रगुजार हूँ, और उनके साथ में मैं आज भी कॉन्टैक्ट में रहते हैं, जब भी हमें मौका मिलता है हम उनसे मिलते हैं।
1: जी, यही खास बात है हमारी भारतीय सेना की कि वो हर मंजर के लिए हमेशा तैयार रहती है और अपने सैनिकों को, सिपाहियों को, ऑफिसर्स को इसी तरह से तैयार करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हालात कैसे भी क्यों ना हो, तुम्हें डटे रहना है, टिके रहना है और हर जंग में फतह हासिल करनी है।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका ओनियाल और आज हमारे साथ हैं मेजर जनरल अशोक कुमार। हम कहते हैं ये कि हम में वो जज्बा है, हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, हम हर जंग में फतेह हासिल कर सकते हैं, पर सच मानिए ये जज्बा भी हमें हमारे सिपाहियों, हमारे सोल्जर्स, हमारी भारतीय सेना से मिलता है और जिसकी जीती जागती मिसाल आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है मेजर जनरल अशोक कुमार। अशोक जी, आपसे ये जानना चाहती हूँ मैं कि जब हम सर्विसेज ज्वाइन करते हैं, खासतौर पर जब आपने सर्विसेज ज्वाइन की, उससे पहले ट्रेनिंग थी और ट्रेनिंग के बाद आपको एक ऑफिसर नियुक्त किया गया, आपको पोस्टिंग दी गई, लेकिन इंजीनियरिंग, क्योंकि मिलिट्री इंजीनियर आप रहे हैं, तो इंजीनियरिंग ही इस विभाग को ही आपने चुना या फोर्सेज ने आपके लिए इस विभाग को चुना, किस तरह थी ये प्रक्रिया?
1: सो ट्रेनिंग के दौरान आपकी क्वालिफिकेशन को मद्देनज़र रखते हुए आपको मौका दिया जाता है कि आप किस संस्था में या इन्फेंट्री में, आर्टलरी में या इंजीनियर्स में जाना चाहते हैं, तो उनकी क्वालिफिकेशंस होती हैं। अगर आप साइंस ग्रेजुएट हैं तो आप जो तकनीकी ब्रांचेस हैं जिसमें इंजीनियर्स, ईएमई, सिग्नल्स आते हैं, इनमें आप जा सकते हैं। बाकायदा कि आपने बीएससी बैकग्राउंड किया हो और आपके पास वो डिग्री हासिल हो। सो हमारे पास में विकल्प था कि हम इंजीनियर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। उन दिनों में इसमें काफ़ी कंपटीशन था, लोग काफ़ी जाना चाहते थे, तो हमारे कोर्स के दौरान हमारे 28 वैकेंसियां थी और हम तकरीबन 200 लोग थे जिन्होंने इंजीनियर्स में ऑप्ट किया था। तो आपकी मेहनत के अलावा आपकी किस्मत भी थी, वो बैचेस में बनाते थे और हर बैच में 2 से 3 वैकेंसीज आती थी। सो आई वाज लकी कि हमें जो मुझे ज़रूरत चाहिए था वो मिला एंड खुशी का माहौल था जब आपने कोर ऑफ इंजीनियर्स में ज्वाइन किया। ये एक ऐसा कोर है जिसमें आप लड़ाई के दौरान में सबसे पहले दुश्मन लड़ाई में जाते हैं और लड़ाई ख़त्म होने के बाद में सबसे आखिर में आप पूरा कार्य करके बाहर निकलते हैं। सो दिस इज़ एन एडवांटेज एंड इसमें आपको पढ़ाई लिखाई काफ़ी करनी पड़ती है, जो कि एक आम धारणा है कि फ़ौज में जब बंदा जाता है तो इतनी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, बट एज इंजीनियर्स हमें ज़रूरत है कि हम इंजीनियरिंग डिग्री हासिल करें और अगर आपकी चेष्टा है तो आप आगे उसको फर्दर एग्ज़ाम दे के आप अपने मास्टर्स भी कर सकते हैं, जो कि मैंने अपने कार्यकाल के दौरान किया। सो कहना कि फ़ौज में जाने के बाद पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई काफ़ी है और आपके ऊपर भी निर्भर करता है कि आप कितना करना चाहते हैं, बिकॉज इनका उपयोग लड़ाई के दौरान भी आता है।
0: जी, पढ़ाई का सिलसिला तो मुझे लगता है आपका बरकरार रहा, जैसे आपने खुद कहा आपने बीटेक किया सिविल इंजीनियरिंग में, उसके बाद एमटेक भी किया, एमफिल किया आपने मैनेजमेंट स्टडीज।
1: जी हाँ

0: ये सिलसिला जो था, ये सिलसिला फौज में रहते रहते बरकरार रहा?
1: ये सिलसिला फौज में रहते रहते बरकरार रहा। कई फौज आपको अपॉर्चुनिटीज देती है, कई सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें आपने जद्दोजहद करके और अपने आप को उत्तीर्ण हासिल करना होता है। सबको मौका जरूर मिलता है लेकिन हर कोई नहीं कर पाता है। तो आई वॉज वन ऑफ दोज लकी वंस हु कुड मैनेज टू डू दीज कोर्सेज एंड पढ़ाई भी कर पाए, और जिससे हमारे को अच्छी ख्याति हासिल हुई और हमारे प्रमोशंस में भी इसके काफ़ी काम आए।
0: बहुत खूब। अब बात की जाए मिलिट्री इंजीनियर की, मिलिट्री इंजीनियरिंग की, अक्सर हम यही सोचते हैं कि फौज का अर्थ है हमारे वो सेनानी, हमारे वीर, हमारे सैनिक जो मैदान जंग में जाते हैं, जंग लड़ते हैं और हमें कहीं ना कहीं सुरक्षित करते हैं। लेकिन जब भारतीय फौज की बात आती है और जब हम बात करते हैं मिलिट्री इंजीनियर्स की, तो इंजीनियर्स हमारी सेनाओं को कैसे सशक्त करता है, क्या भूमिका रहती है इंजीनियर्स, मिलिट्री इंजीनियर्स की?
1: आज का दौर आपने देखा होगा, जब प्रेजेंट सिनेरियो में काफ़ी लड़ाइयाँ देश के बाहर में हो रही हैं और जिस हिसाब से चीज़ें बदल रही हैं तो तकनीकी की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। इसी प्रकार हमारे फोर्सेस में भी इंजीनियरिंग का होना बहुत ही अहमियत रखता है। और कहते हैं कि कोर ऑफ इंजीनियर्स का मायने है कि जब आप लड़ाई के दौरान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, आप अपने फोर्सेस को मोबिलिटी प्रदान करते हैं और दुश्मन को मोबिलिटी डिनाई करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपका जो अचीवेबल टारगेट है वो अचीव हो और दुश्मन को आपने टारगेट को अचीव करने में आप बाधा बने। सो आपने चाहे सुरंगें बिछानी हैं, चाहे आपने ब्रिजेस बनाने हैं, चाहे आपने नौका के जरिए नदी को पार करवाना है, उसमें बड़ा बड़ा जो असला है, सामान है, टैंक्स हैं, ये सब पार कराने और लाने और ले जाने की जिम्मेवारी कोर ऑफ इंजीनियर्स को दी जाती है। साथ ही साथ जब दुश्मन दूसरी तरफ से हमला करता है तो उसमें माइने या सुरंग लगाने का कार्य भी इंजीनियर्स को दिया जाता है, जो कि हम अपनी सूझबूझ और हमारे सिखलाई के तरीके से करते हैं। इसी प्रकार जब दुश्मन की जो मोर्चा है उसको हम हासिल कर लेते हैं तो वहाँ पर हम रिकूप करके दोबारा से उसको इस्टेब्लिश करते हैं और जो हमारी टुकड़ियाँ हैं पीछे उनको सामने ला के फिर लड़ाई को और आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा जब लड़ाई लगती है तो हम एयरफोर्स के साथ में भी मदद करते हैं, जब हमारे हवाई अड्डे होते हैं उनको बनाने में, या कोई नुकसान हो गया है उसको दोबारा से रिहैबिलिटेट करने का काम भी हमारा है। सिमिलरली नेवी के जहाज़ों के लिए जो युद्ध पोत वगैरह हैं उसमें जो चीज़ें बनती हैं या कोई चीज़ बिगड़ गई है उसको भी ठीक करने का, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार में लाने का और लड़ाई के लिए सशक्त बनाने का कार्य भी हम लोगों का होता है। सो काफ़ी काम होते हैं जो कि तभी हासिल हो सकते हैं जब आपने पीस दौरान में अच्छी पढ़ाई की हो, उसको अमल में लाए हों और देश के सुरक्षा कार्यों में उसकी आपने एक नीति बनाई है जिसके कारण हम वी अचीव व्हाट वी वांट टू अचीव।
0: जी, तो ना केवल भारतीय सेना को सशक्त करती है मिलिट्री इंजीनियर्स, बल्कि आम जनमानस के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत ही सार्थक साबित होती है। यू आर हेल्पफुल टू द एंटायर नेशन इन डिफरेंट वेज। तो किन किन तरीकों से हमारी मिलिट्री इंजीनियर्स जो है देश के लिए
1: जब
0: कार्य
1: कहीं
0: करते
1: देश
0: हैं?
1: पर आपदा आती है, कहीं बाढ़ आ गया, कहीं तूफान आ गया, कहीं लैंडस्लाइड्स आ गए, तो उसमें जब रेस्क्यू मिशंस होते हैं तो उसमें भी हमारे इंजीनियर्स का काफ़ी काम होता है। जब हमें दुर्गम इलाकों में हम जाते हैं, लोगों की जानें बचाते हैं, रेस्क्यू करते हैं, हॉस्पिटल्स में उनको लेके आते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी हम भारत की जनता के प्रति या बाहर के देशों में हम जो भी फैसिलिटीज़ पहुंचा सकें वो टाइम से दें, ताकि इंसान को इंसान की जो ज़रूरत महसूस होनी चाहिए उसमें हम एक भागीदार बन सकें।
0: जी, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता होगा हमारे ऑफिसर्स के लिए कि वो निरंतर पढ़ते रहें, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम इंजीनियर्स की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा योगदान है इंजीनियर्स को इंजीनियर्स बनाने में। ऐसे में मिलिट्री इंजीनियर्स भी उनकी लगातार अपने सर्विसेज दौरान ट्रेनिंग चलती होंगी, ट्रेनिंग्स का हिस्सा बनकर वो अपने आप को सशक्त करते हैं कहीं ना कहीं कि क्या कुछ नया चल रहा है, क्या कुछ नया किया जा सकता है। तो आपके साथ भी लगातार ट्रेनिंग्स का सिलसिला जारी रहा
1: ये
0: होगा?
1: सिलसिला हमेशा जारी रहता है, बिकॉज देश में इतने विकल्प हैं कि आप सोचते हैं कि आप ही करने हैं। आपने लड़ाई है अपने एक दुश्मन से जीतनी है और वो भी अपने तरफ अपनी पढ़ाई लिखाई और अपनी तकनीक के द्वारा कोशिश में रहता है कि आपसे अच्छा आ सके। जब तक आप उसकी सोच को विफल नहीं कर पाएंगे, और वो होगा जब तकनीक में आप बकाया आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे और उससे

0: बेटर हासिल करेंगे तभी आप जंग को जीत पाएंगे। सो आने वाले समय का जो दौर है वो एक फिजिकल लड़ाई है और एक है जो तकनीक के द्वारा जीते वाली जाने वाली लड़ाई है। और हम देख रहे हैं कि आज बाहर के देशों में, चाहे वो ईरान की लड़ाई चल रही हो, चाहे यूक्रेन की लड़ाई हो, उसमें छोटे छोटे देश भी अपनी तकनीक को इस्तेमाल करते हुए कितनी बहादुरी से और दिमाग से लड़ने की कोशिश जारी है। तो वो शायद चीज़ें हमें भी हासिल करने की ज़रूरत है, हम इससे अलग नहीं रह सकते हैं।
1: जी, तो 100 बातों की एक बात कि एक सोल्जर को मानसिक शारीरिक रूप से सक्षम होना पड़ता
0: बिल्कुल
1: है
0: बिल्कुल
1: अगर उसे जीत हासिल करनी है, चाहे वो मैदान की जंग में हो या फिर हमारे सिविलियंस की जिंदगियों की बात क्यों ना हो। हमारे जो सिपाही हैं, हमारे जो सोल्जर्स ऑफिसर्स हैं, वो हमेशा मुस्तैद हैं हमारे लिए। एक बात और यहाँ पे आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आपने खुद बताया था कि आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन आप बहुत खुश हैं कि आपने इंडियन आर्मी के जरिए अपने देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा को दिखाने का सौभाग्य प्राप्त किया। आपने ये भी कहा कि किस तरीके से मिलिट्री इंजीनियरिंग की जब बात होती है तो आप एयरफोर्स, नेवी सबके लिए काम करते हैं, आपने भी ऐसा किया है, सभी
0: बिल्कुल
1: फोर्सेस के लिए आपने काम किया, उस वक्त खुशी तो बहुत हुई होगी। कहते हैं कि जीवन ना एक चक्र की तरह है, कभी कभी जहां छूटता है वही जिंदगी को ले
0: भाई,
1: आता है। तो
0: बिल्कुल
1: जब
0: आप सही कह रहे हैं। बिकॉज यू नो, एक व्हेन यू आर यंग, आप कोशिश करते हैं कि आप वहीं जाना चाहें जहाँ पर आपकी यू नो आप जाना चाहते हैं, लेकिन कई बार भगवान के तरीके अलग होते हैं। तो शायद वो यू नो मुझे पायलट बनाने से किसी तरह से वंचित किया, लेकिन मैंने अपने कार्यकाल के दौरान में एयरफोर्स के साथ, नेवी के साथ खूब जमकर काम किया और एक ऐसी फीलिंग आई कि हम उन्हीं का एक हिस्सा हैं। चाहे हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कोई कार्य हो या कहीं भी हो, तो एयरफोर्स की सुविधाएं हमें मिलती थी और अच्छा लगता था जब हम उनके जहाज़ों में बैठकर दूर दराज के क्षेत्रों में देखते थे कि भाई कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है इंजीनियरिंग की, जिससे उनको सहूलियत मिलेगी और हमारे जो देश के सिपाही हैं उनके कार्यशैली में एक क्षमता बढ़ेगी जिससे जिसका हमें काफ़ी गर्व है। तो हमने काफ़ी अच्छे बड़े बड़े रनवे बनवाए, टैक्सी ट्रैक्स बनवाए, एयरपोर्ट्स हवाई जहाज की जो सुविधाएं हैं वो काफ़ी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बनाई, जिनकी वजह से आज हमारी सेनाएं वो सब हासिल कर पा रही हैं जिनकी हमें ज़रूरत है।
1: एक बात और, क्या मिलिट्री इंजीनियरिंग आपको दूरदर्शिता प्रदान करता है? क्योंकि कहते हैं कि जीवन में बहुत कुछ ऐसा घटित होता है जिसके बारे में किसी को भी पहले से नहीं पता होता है, लेकिन एक मिलिट्री पर्सन के लिए, एक इंजीनियर के लिए, खासतौर मिलिट्री इंजीनियर के लिए, क्योंकि वो सशक्त कर रहा है फोर्सेस को, उसके लिए अनफोर्सीन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर कुछ नया इजाद करना कितना महत्वपूर्ण होता है।
0: बहुत दुरुस्त आपने सवाल किया और ये चीज़ें बहुत ही कारगर हासिल होती हैं जब आप अपनी इंजीनियरिंग के यू नो ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी चीज़ का एहतियात करते हैं जिससे हमारे पूरे फोर्सेस को एक अच्छा मौका मिलता है। और जो कि हमने अपने कार्यकाल के दौरान जो कभी हमने सोचे नहीं थे, हमें जब ऐसे टास्क मिले तो क्योंकि हमारे इंजीनियरिंग की नॉलेज और हमारे जो लोगों ने हमें सिखाया वो इतनी कामयाब हुई कि हमें खुद सोचकर अच्छा लगा कि हमने सही किया, जो चीज़ें हमने सीखी और हम अपने देश के काम आ सके।
1: जी, सबसे बड़ा जज्बा तो एक फौजी के लिए यही होता है कि वो अपने देश के लिए काम कर रहा है, अपनी कर्तव्य निष्ठा से, अपने देश प्रेम से, और शायद इस सुख से बड़ा सुख कुछ हो नहीं सकता कि आप देश के लिए काम कर रहे हैं। जीवन के 40 वर्ष आपने भारतीय सेना को दिए हैं, तो जब पीछे अतीत के पन्ने पलट कर देखते होंगे, बहुत सारी बातों को याद करते होंगे, तो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना एक सुखद सांस, उसको आप रोज भरते होंगे और अपने कार्यकाल को जो आपने जिया है उसे जरूर याद करते होंगे।
0: नहीं, अच्छा लगता है बिकॉज जो आपकी बचपन की उम्मीदें थीं और आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, हर कोई कुछ ना कुछ करना
1: करना
0: चाहता
1: चाहते
0: है। ज़रूरी नहीं है कि वो फौज में हो या ना हो, हर इंसान, एक हर नागरिक इस देश का अपने देश के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहा है। लेकिन हमें एक सौभाग्य मिला कि हम काफ़ी नज़दीकी से अपने देश के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की, काफ़ी कुछ कर पाए। काफ़ी वर्क इन प्रोग्रेस है जो आने वाली जनरेशन से वो करेंगी, बट इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग। और इसमें सबसे बड़ा जो हमारी सिखलाई है, जो हमें बताया जाता है कि देश के लिए 3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, वो है नाम, नमक और निशान।
1: वाह, क्या बात
0: नाम
1: है।
0: है आपकी अपनी पलटन का, आपके अपने जिस यूनिट में आप काम करते हैं, रेजिमेंट हैं, और उसको आप कैसे ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। एक सैनिक यह सुनिश्चित करने के लिए लड़ता है कि उसके किसी भी कृत्य से उस गौरवशाली नाम पर कोई आँच ना आ जाए। फिर वो नमक की बात करता है, जब जहाँ पर वफादारी और कर्तव्यनिष्ठता काम

0: आती है, और जिस चीज़ जो नमक आप खाते हो उसका यह विश्वास का वह बंधन है जो सैनिक को वर्दी कमान और अपने साथियों से कभी विश्वासघात ना करने की प्रेरणा देता है। निशान हमारे झंडे की बात होती है, यहाँ राष्ट्रीय तिरंगे रेजिमेंट के अपने झंडे और उसके इंसिग्निया का प्रतिनिधित्व करता है। निशान को हमेशा ऊंचा रखना देश के लिए एक संप्रभुता और रेजिमेंट के युद्ध समान जो जिसको हम बैटल ऑनर्स बोलते हैं कि रक्षा का एक संकल्प है जो कि हमारे रग रग में भर दिया जाता है, और यह एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपके काम आती है चाहे वो पीस स्टेशन हो चाहे युद्ध का क्षेत्र हो। तो तीन चीज़ें हमेशा याद करें, नाम, नमक और निशान।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। तो हम अपने श्रोताओं से ये कहना चाहेंगे कि अगर आप कोई संदेश भेजना चाहते हैं संदेश टू सोल्जर्स इस कार्यक्रम में, तो आप हमें मैसेज भेज सकते हैं 9868107070 इस नंबर पर। और आज हमारे साथ हैं मेजर जनरल अशोक कुमार। अति विशिष्ट सेवा मेडल से आपको नवाजा गया है आपके योगदान के लिए, और जिस तरह से आपने 40 वर्षों तक अपना योगदान दिया, आपके लिए सुखद पल बहुत सारे आपने अर्जित किए और आप भावी पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं।

0: आप सभी का पुनः स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल अशोक कुमार। AVSM यानी कि अति विशिष्ट सेवा मेडल से आप अलंकृत हैं, और आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज मेजर जनरल अशोक कुमार हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मेजर जनरल अशोक कुमार, आपसे जानना चाहते हैं कि हम जीवन में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो हमेशा चाहता है कि वो धीरे धीरे करके आगे बढ़े। आप भी सेना में रहते हुए अलग अलग पोजिशंस पर आगे बढ़ते गए, और कहते हैं कि जब आप औहदे में आगे बढ़ते रहते हैं, आपको हाईएस्ट पोजीशंस मिलती हैं, तो उसके साथ जिम्मेदारियां भी बहुत सारी बढ़ जाती हैं। बहुत सारे आपने कार्य किए, लेकिन इन सब पोजीशंस में काम करने के साथ साथ कोई एक ऐसी चीज थी जो हमेशा एक जैसी रही और साथ चली 40 वर्षों। क्या वो एक ऐसी फीलिंग थी, क्या वो ऐसी बात थी जिसने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा? भले ही औहदा बढ़ता गया, जिम्मेदारी बढ़ती गई, लेकिन वो फीलिंग जब ज्वाइन किया था फोर्सेस तब भी वैसी थी, और जब फोर्सेस छोड़ी तो आज भी वो बात जिंदा है, आपके दिल में पेवस्ट है।
1: जब आप किसी भी महकमे में जाते हैं, करते हैं, तो सबसे बड़ा जो एहसास है वो, खासकर जो फौज का महकमा है, वो एक आपको ऐसी उम्मीद देता है कि ये आप इसी को बिलोंग करते हो और इसी में आप बसते हो, और वो जो चीज़ है वो आज भी ऐसा लगता है कि आप आज भी फौज में हैं। भले ही वर्दी नहीं पहनी है, लेकिन एक एक एक एहसास होता है कि मैं इसी में जिया हूँ और मैं इसी में मरना चाहता हूँ। दूसरा जो बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमें लगता है फौज से, एटलीस्ट मुझे सीखने को मिला है, कि आप जब से फौज में आते हैं और जाते हैं, हमेशा ये सीखने को मिला कि आप अपने जो जिनकी वजह से आप वहाँ तक पहुँचे हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो आधे के अधिकारी हैं, बट जो जवान हैं, जो सबसे नीचे वाला तबका है, जो आपकी तरफ देखता है कि ये हमारा साहब है, और बिना कुछ कहे आपस में हम एक दूसरे की बात को समझते हैं, वो एक ऐसी उम्मीद रखता है जिसमें आप बिना बताए, चाहे वो लड़ाई का मैदान हो चाहे अदरवाइज़ हो, आप उनकी उम्मीदों पे अगर खरे उतरेंगे तो आप वास्तविकता में आपने अपने जीवन को कुछ कर दिखाया है, और वो उम्मीद बिना बताए बिना बोले हुए अगर आप कर पाते हैं और उसको साथ में लेकर चल सकते हैं, तो वो एक ऐसा अचीवमेंट है जो मुझे लगता है कि हमेशा आपके साथ में होना चाहिए। कई बारी आपके जवान आपके लिए इतना कुछ कर जाते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो शायद आप उसे भूल ना पाएं, एक ऐसा कुछ उसकी उम्मीदों पे खरे उतरें, तो वो आपको ज़िंदगी भर याद करता है। और आज भी हमारे जो सैनिक हैं जो रिटायर हो गए, उनसे जब बातचीत होती है तो हम अपने पुराने दिनों को याद करते हैं और बताते हैं कि हमने उनसे क्या सीखा और उन्होंने हमें क्या सीख दी। एक छोटा सा उदाहरण था, जब मैं फौज में गया तो पहाड़ों के इलाके में थे, हमारी पास गाड़ियाँ थी, तो हमने गाड़ी चलानी अपने एक सिपाही से सीखी। उसने हमें कोशिश की कि जो ट्रेनिंग है वो दे पाए, और गाड़ी चलते समय पहाड़ के स्लोप पर रुक गई, तो उसका नाम मुझे याद है आज भी, सिपाही ओम प्रकाश हुआ करता था। और वो गाड़ी रुकने के बाद में वो बाहर निकला, और उन दिनों में हैंडल मार के गाड़ी को स्टार्ट करते थे, वो गाड़ी इतनी ज़ोर से हैंडल लगा कि गाड़ी उछल के और नीचे रोल होनी शुरू हो गई। तो हमने एक नाले के साइड में गाड़ी उल्टी होके चारों पहिए ऊपर और गाड़ी पलट गई। तो ओम प्रकाश का पहला वाक्य था कि लेफ्टिनेंट साहब आप घबराइए ना, हम ये जिम्मा अपने सर पर लेंगे। हमने कहा ओम प्रकाश ऐसा नहीं होगा, ये गाड़ी हमारी वजह से गिरी है तो हम जिम्मेवार हैं, तुम बस ये करो कि वहाँ से जाके कोई हेल्प लेके आओ। तो वो हादसा एक ऐसा हादसा था जहाँ पर आपका सिपाही आपके लिए आपको आँच नहीं आने देता है और कोशिश करता है कि मेरा जो साहब है वो हमेशा सर्वोपरि रहे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आप सीखते

0: हो कि यदि आपने ऐसे दौरान में आप उनके साथ में खड़े हो, जिंदगी भर उन चीजों को याद रखता है। और आज भी जब हम पुरानी चीजें बातें याद करते हैं तो बताते हैं कि साहब आपने हमारे लिए ऐसे किया था। भले ही वो कुछ अपना प्रमोशन नहीं मांगता है या अपने लिए कुछ ऐसी चीज नहीं मांगता है, लेकिन जो उसकी सच्चाई है और उसका जो काम करने का तरीका है, वो उसके साथ में आप जिंदगी कुछ ऐसे उसूल सीखते हैं जो आपके दिल को हमेशा छू जाते हैं। और आप समझते हैं कि एक सबसे बड़ा जो आदर है वो एक इंसान का इंसान के प्रति प्यार और उसकी एक ऐसी गरिमा है जिसको अगर आप बरकरार रखें तो वो जिंदगी भर आपके शायद काम आती है। भले ही उस मोमेंट में आप शायद कुछ मिस कर जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सब चीज़ें आपको सोच के अच्छा लगता है। एंड उन्हीं उम्मीदों के साथ में हम जीते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने आने वाली जनरेशन्स को भी ऐसा ही कुछ सिखा पाएं।
1: जी फौज, की खास बात मुझे ये लगी कि जब भी हम इस प्रोग्राम में, संदेश टू सोल्जर्स में, आप जैसे ऑफिसर से बात करते हैं कि फौज में कोई अकेला नहीं है, हमेशा किसी हर किसी के साथ हर कोई है, ऐसा नहीं एक है, हर किसी के साथ हर कोई है। और ऐसे में जब आप अपने परिवार से दूर है तो आपको लगता है कि मेरा कौन सा ऐसा काम था जो मुझे पता नहीं लगा और वो हो भी गया, तो
0: बिल्कुल,
1: शायद एक
0: हाँ
1: बड़ी खूबसूरत बात
0: हाँ
1: है फौज
0: खूबसूरत
1: की।
0: चीज़ है। और आप जब आप आगे सरहद पर अकेले रहते हैं, अकेले मतलब आप अपने फैमिली से परिवार से दूर होते हैं, आपके जो जवान हैं वो आपको ऐसा एक माहौल क्रिएट करते हैं जब आपको महसूस नहीं होते, और ऐसा महसूस होता है कि आपके परिवार के लोग आपके साथ में बकाया हैं, वो आपका उतना ध्यान रखता है। शायद आपका परिवार भी उस मंजर में शायद इतना ध्यान ना रखे। और ये छोटी छोटी चीज़ें जब बिन बनकर आप एक साथ सोचते हैं तो वाकई एक परिवार का एहसास होता है। और एक फ़ौज में जो सबसे अच्छी सिखलाई है कि आप लास्ट मैन, यू हैव टू टच ग्राउंड विद द लास्ट मैन ऑन ऑन ऑन द फील्ड, यू कांट लीव एनी वन बिहाइंड। लड़ाई के दौरान अगर कोई हादसा हो जाता है, आपका जवान क्षतिग्रस्त होता है, जब तक हम उसको निकाल कर सुरक्षित जगह पर नहीं लाते हैं, हम अपना कार्य का शैली को सफल नहीं समझते हैं। और कई हमारे ऐसे कोर्सेज और ऐसे कॉम्पिटिशन होते हैं जहाँ हमने एक टुकड़ी के साथ में एक जीत हासिल करनी है, अगर उसमें आप समय से पहले आ गए लेकिन एक बंदा आपका अभी तक पीछे है, जब तक वो शामिल नहीं होगा आपकी जीत जीत नहीं मानी जाएगी। सो ये एक ऐसी मंजर है जिसको हम सीखते हैं। उसके अलावा जब कोई हमें कलेक्टिव टास्क मिलता है और हम में से कोई बंदा नहीं कर पाता है, तो उसको भी जब तक हम साथ में लेकर उस जीत को हासिल ना करें, वो जीत जीत नहीं मानी जाती है।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है। तो ना केवल कृतज्ञता हम फौज से सीखते हैं, हम टीम स्पिरिट, एकता भी हम फौज से ही सीखते हैं। और कहीं ना कहीं जब हमारे युवा ये कहते हैं कि हम फौज में जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जितने भी माता पिता हैं वो गर्व से उनका सीना पहले ही चौड़ा हो जाता है ये कहते हुए कि हमारा बच्चा फौज में जाना चाहता है। और यही फौज की खूबसूरत बात है कि वो सभी युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। और हर युवा यही चाहता है कि मैं देश के प्रति अपनी कृतज्ञता, अपना प्रेम सेनाओं को, सेनाओं में भर्ती होकर दिखाऊं। तो ये जग आपके लिए है, सेनाएं आपके लिए हैं। अब आप उसे कैसे आत्मसात करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है।

0: संदेश टू सोल्जर्स आज के इस कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है और आपको बताना चाहेंगे हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल अशोक कुमार। एक सिपाही के लिए, एक सोल्जर के लिए, एक ऑफिसर के लिए, चाहे वो किसी भी पद पे क्यों ना हो, लेकिन जब उसके कार्य को, उसकी जिम्मेदारियों को, उसकी कर्तव्य निष्ठा को सम्मानित किया जाता है तो उसके लिए सबसे सुखद पल होता है। आपके लिए भी बहुत सुखद रहा होगा, ये भी कह सकते हैं कि आपने जिस चीज का इंतजार किया वो आपके आपके शोल्डर्स पर थी, आपकी ड्रेस पर थी, आपकी यूनिफॉर्म पर थी। अति विशिष्ट सेवा मेडल जिससे आपको नवाजा गया आपके सर्विसेज के लिए, आपके योगदान के लिए, तो उस वक्त वो जो पल होता है, वो पल आपको क्या क्या याद दिलाता है? क्या आप अतीत में चले जाते हैं या सिर्फ याद करते हैं कि आज ये जो पल है, ये पल इस वजह से आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आपने बस अपने कर्तव्यों का पालन करना सीखा था, इसलिए हुआ।
1: इंसान की एक फितरत है कि वो जब भी कोई काम करता है तो वो एक अवार्ड और रिवॉर्ड सोचता है। कई बारी वो अवार्ड शायद उसे तब नहीं मिलता जब वो मोस्ट हम्बली उसको डिजर्व करता है। कई बारी अवार्ड जो हैं वो ऐसे वक्त पर मिलते हैं जब आपके अंतिम चरण में आप इतना कुछ काम करके गवर्नमेंट आपके रिकग्नाइज करती है तो एक अच्छी फीलिंग आती है। इंसान इस दुनिया में जीता है कुछ कारणों से, जिनमें से वो उम्मीद करता है कि उसके काम किए गए कार्यों का एक एक उसको शाबाशी दी जाए। ज़रूरी नहीं है कि वो मिले, लेकिन जब मिलती है तो एक अच्छा एहसास होता है। और मोर देन आपके अपने लिए वो एक एहसास, आपके बच्चे जो आपके साथ में आपको यहाँ तक पहुँचाने में जिनका गौरव रहा है, आपके पिताजी, आपके माता जो जिन्होंने आपको बड़े होते हुए देखा और उम्मीद करते हैं कि उनका उनके बेटे को कुछ ऐसा अवार्ड मिला जो राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, तो एक काफ़ी गौरव और गर्व की बात होती है। सो जैसे हम कहते हैं कि रिसीविंग द मेडल वॉज अ डीपली हम्बलिंग रिकॉग्निशन, an honor is never a resting point, it is a reaffirmation of the trust that people have in you, chahe wo aapke jawan ho, chahe aapke bacche ho, aapke mata pita ho, aapke rishtedar ho, sabko ek ummeed rehti hai. Aur it serves as a reminder of the dedicated soldiers and the teams whose collective effort made that contribution possible. This sabhi ka isme ek vishwas tha, ek aisi

0: कोशिश थी कि सबने मिलकर आपको उस पैगाम तक पहुंचाया जिसका आप खुद जिम्मेवार तो थे, लेकिन आपके पीछे जो लोग थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया उनका मैं शुक्रगुजार हूं। एंड द अवार्ड रीइंफोर्स्ड माय कमिटमेंट टू कंटिन्यूस ड्यूटी इंश्योरिंग दैट एवरी सब्सिक्वेंट डिसीजन प्लान एंड मेंटरशिप एफर्ट रिफ्लेक्टेड द स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड ऑफ द अवार्ड दैट आई गॉट। सो माय सिंसियर थैंक्स टू एवरीवन हु ओवर द इयर्स वाज देयर विद मी इन गेटिंग एंड अचीविंग व्हाट आई फाइनली अचीव्ड।
1: जी बहुत खूब बहुत खूब। ग्रेटिट्यूड इज द वे ऑफ लाइफ और जिंदगी जीने का सलीका इस बात से पता लगता है कि हम कितने कृतज्ञ हैं, और आपकी कृतज्ञता फोर्सेस की तरफ, अपने अवार्ड्स की तरफ और आपने जितने भी कार्य किए हैं आज तक उनकी तरफ आज इस शो के माध्यम से हमें सुनाई दी और कहीं ना कहीं हमें भी बहुत सारी प्रेरणा आपसे मिली। एक व्यक्ति जिसका जिक्र ना हमने अभी तक नहीं किया, या बेटर हाफ, शायद उनका आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा होगा, क्योंकि कहते हैं कि एक ऑफिसर को ऑफिसर एक माता पिता बनाते हैं, उसके अंदर वो संस्कार उसमें जीवंत रखते हैं, हमेशा उनके साथ भी उनके बाद भी हमेशा रहते हैं, लेकिन स्पाउस उन्हीं संस्कारों को आगे लेकर चलती है। आपके पीछे बहुत बार उन्होंने घर को संभाला होगा, कंप्लेन भी नहीं की होगी, लेकिन इससे पहले ये मुझे बताइए कि आप उनसे मिले कैसे थे।
0: आपने एक अच्छा सवाल पूछा। Behind every successful man there is a woman, and undoubtedly it has been my wife whose name is Preeti. और जो good part है वो ये है कि हमारे जो दोनों के parents थे वो फौज में coastmates थे, जो navy में साथ में आए, और हम बचपन से एक दूसरे को जानते थे, और भाग्यशाली रहे कि हम आपस में हमारी शादी हुई और हमने अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से जिया, और जो भी मैंने हासिल किया उसमें बहुत ज़्यादा हाथ मेरी बेटर हाफ प्रीति का था, एंड शी इज़ रियली वर्कड हार्ड फॉर वॉट एवर आई एम टुडे, एंड माय चिल्ड्रन हु निहारिका एंड आर्यन हु बीन वंडरफुल एंड दे स्टूड लाइक रॉक बिहाइंड मी इन एवरी यू नो गुड और बैड पैटर्न्स ऑफ लाइफ, एंड इन द एंड इट वॉज एन अचीवमेंट विच आई कांट थैंक लेस टू दीज पीपल। And Preeti is now remains my biggest critic, but the kind of lessons that she's given me is something which is, you know, which I won't have done on my own. And मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे भगवान ने अच्छी बच्चे दिए, अच्छी पत्नी दी, माँ बाप पेरेंट्स ने जो हौसला दिया जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा, और ये अपने आप में एक अचीवमेंट है जो हर माँ बाप अपने बच्चे में देखता है, हर वाइफ हर हस्बैंड अपनी वाइफ में देखता है, और अपने बच्चों को आँख में आँख मिलाकर उम्मीद करता है कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा और आज यहाँ तक पहुँच पाए।
1: बहुत खूब। और एक ग्रेटिट्यूड हमारी तरफ से तमाम लिसनर्स के लिए जिन्होंने हमें संदेश भेजे हैं और आपको सल्यूट कर रहे हैं। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से जय हिंद यहां पर लिखकर भेजा है। बीके दत्त कॉलोनी से शबनम ने, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जिस तरह से प्यार देते हैं हमारे फौजियों को काबिले तारीफ है। संदेश यहां पर भेजा है नुसरत अली ने, और संदेश हमें हमारे पास मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से भी आया है जोया का, और ये आपके करेज को सलाम कर रही है, सलाम कर रहे हैं यहाँ पे आहिल अली बीकानेर से। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। यश शिंदे ने हमें संदेश भेजा है मुंबई से, और संदेश भेजने वालों में और भी बहुत सारे दोस्त हैं। ये हैं धारा शिव महाराष्ट्र से, यशवंत इनका नाम है, और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद इदरिस ने संदेश भेजा है, और संदेश भेजने वाले बहुत से दोस्त हैं। कुछ दोस्त भी पूछ रहे हैं कि हम तैयारी कैसे करें, इसके लिए हम अलग सेशन आपके लिए ज़रूर आयोजित करेंगे। यहाँ पर मध्य प्रदेश से अजय का हमारे पास संदेश आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दोस्तों का हम धन्यवाद देना चाहते हैं, और धन्यवाद देना चाहते हैं मेजर जनरल अशोक कुमार जी का। मैं बस एक बात कहूंगी, वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, बट वंस अ मिलिट्री इंजीनियर इज ऑल्सो अ मिलिट्री इंजीनियर फॉर एवर। ये बात सच है ना?
0: बिल्कुल दुरुस्त है,
1: और इसीलिए इन्होंने काम करना बिल्कुल नहीं छोड़ा है, और ये कहेंगे कि इनकी इंजीनियरिंग आज तक कायम है, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब कहां कैसे इन्होंने आपके लिए आपका कोई सपना साकार कर दिया। अगर मन में ये बात आए तो समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं हमारे ये जो फौजी हैं, फौज में रहकर भी और फौज के बाद भी आपके लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं। अब ये एक नगमा एफएम रेनबो की तरफ से, हम एफएम रेनबो का क्रेडिट ले रहे हैं, हम प्रीति मैम को ये डेडिकेट कर रहे हैं आपकी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका एक बार फिर से।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।

नमस्कार, प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बॉर्ट डी वेवर के साथ वार्ता की। दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौते पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बेल्जियम के रक्षा मंत्री तेओ फ्रॉन्टकेन ने संवाद, उच्च स्तरीय यात्रा और क्षमता निर्माण के माध्यम से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को विस्तार देने की प्रतिबद्धता जताई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा केंद्रों और वैश्विक क्षमता केंद्रों पर सरकार का दृष्टिकोण दोहराया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में सेशल्स संसद की अध्यक्ष अजारेल अर्नेस्टा और सेशल्स के संसदीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के प्रबंधन और नियंत्रण पर समीक्षा बैठक की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ईओएस 5 का कल प्रक्षेपण करेगा। ये उपग्रह जीएसएलवी F-17 रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वाराणसी से सांसद ने आज अपने संसदीय क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की। लद्दाख में 4 और 5 सितंबर को द्रास महोत्सव आयोजित किया जाएगा। और खेलों में किदांबी श्रीकांत ने चीन मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। महिला एशिया कप 2020 में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: शाम के 5 बज चुके हैं और अगर आप इस वक्त ऑफिस से घर की तरफ निकल रहे हैं, मेट्रो में हैं, कार चला रहे हैं या बस दिन भर की थकान के बाद अपनी फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। गुरुवार की शाम है, वीकेंड अब बस थोड़ा ही दूर है, लेकिन दिल्ली में थर्सडे इवनिंग भी कम इंटरेस्टिंग नहीं होती, क्योंकि आज हम बात करेंगे दिल्ली के मौसम की, शाम के ट्रैफिक की, आज यानी 3 सितंबर से शुरू और चल रहे कल्चरल इवेंट्स की और आने वाले जन्माष्टमी सेलिब्रेशंस की। और हाँ, आज आपके लिए एक ऐसा सवाल भी है जिसका जवाब शायद आपको अपने बचपन की किसी बहुत प्यारी याद तक ले जाए। तो चलिए इस शाम को थोड़ा और खूबसूरत बनाते हैं और शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत के साथ। ये है सिटी लाइट्स, मैं हूँ आपके साथ सुनीता शाहवादी और आप हमारे साथ बने रहेंगे क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट्स हो रहे हैं आज से और जन्माष्टमी का त्यौहार कल है। आप सबको शुभकामनाएं और जय श्री राधा कृष्ण। और बहुत सारी सेलिब्रेशंस हो रही हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। आप बस बने रहिए हमारे साथ। ये है सिटी लाइट्स और मैं हूँ सुनीता शाहवादी।

सितंबर की दिल्ली है और मॉनसून अभी अपना आखिरी चैप्टर तो लिख ही रहा है। आज यानी 3 सितंबर को मौसम में बादल और हल्की बारिश की संभावना है, अभी भी हो सकती है, कई जगह पर तो हुई है हल्की बारिश। दिन का तापमान करीब 33 डिग्री के आसपास और रात में तापमान करीब 26 डिग्री रह सकता है। तो अगर आप शाम को बाहर निकलने वाले हैं खासकर किसी इवेंट या प्रोग्राम के लिए तो छाता साथ रखिएगा, क्योंकि दिल्ली का मौसम कभी कभी बिना इन्विटेशन के ही मेहमान बनकर आ जाता है। और बारिश के साथ एक और चीज़ फ्री में आती है, वो है ट्रैफिक। सो ये दोनों चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। और बस थोड़े दिनों की बात है, बारिश हो रही है, उसके बाद तो फिर मौसम चेंज होने का और भी वो है। और अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में ही बताऊंगी। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आज यानी 3 सितंबर का एक ख़ास दिन है, यानी स्काई स्क्रैपर डे। तो आज 3 सितंबर और दुनिया भर में स्काई स्क्रैपर डे मनाया जाता है। ये दिन आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग और उन लोगों की क्रिएटिविटी को सेलिब्रेट करता है जिन्होंने शहरों को सिर्फ हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि वर्टिकल भी बनाया है। तो आप रहिए बना हमारे साथ बने हुए सिटी लाइट्स में, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। ये गाना आपके लिए एंड ये है सिटी लाइट्स।

ऑलराइट जी, अगर आप इस वक्त रोड पर हैं तो मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिए। शाम के 5 बजे के बाद दिल्ली एनसीआर में ऑफिस डिस्पर्सल और स्कूल, तो खैर जो इवनिंग स्कूल्स होते हैं, कॉलेज ट्रैफिक के कारण कई प्रमुख रूट्स पर दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है, ऑफ कोर्स ट्रैफिक जाम हो जाता है। साउथ दिल्ली में आउटर रिंग रोड, अरविंद मार्ग, IIT हौज खास और मेहरौली गुड़गांव रोड की तरफ शाम के समय ट्रैफिक स्लो हो सकता है। सेंट्रल दिल्ली में यानी मंडी हाउस, बारा खंबा रोड, इंडिया गेट, मथुरा रोड और आसपास के प्रमुख कॉरिडोर्स पर इवनिंग रश में एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलना बहुत बेहतर होगा आपके लिए। वेस्ट दिल्ली और द्वारका की तरफ नजफगढ़ रोड, डाबरी पालम रोड और द्वारका के मेजर कनेक्टिंग रोड्स पर भी पीक आवर्स में कंजेशन हो सकता है। और नोएडा से दिल्ली आने जाने वालों के लिए तो DND, काली निकुंज और दिल्ली नोएडा लिंक रोड पर शाम के समय ट्रैफिक प्रेशर पर नजर रखना अच्छा रहेगा। तो आप अपना टाइम लेकर चलिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो प्लीज़ फ़ोन पर बात मत कीजिएगा। प्लीज़ पूरा अटेंशन आपकी सड़क पर होना चाहिए, आपकी ड्राइविंग पर होना चाहिए। बी सेफ ऑलवेज एंड देयर इज़ अनदर ब्यूटीफुल नंबर, एंड हम आपको और भी बहुत सारी जानकारी देंगे इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है सिटी लाइट्स, और मैं हूँ आपके साथ सुनीता शाहपाती।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग एफएम रेनबो दिल्ली पर।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
4: मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदर्शन।
5: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
7: शाम के 5:21 हुए हैं और हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स में। हूँ आपके साथ सुनीता शाहवानी और बता रही हूँ आपको दिल्ली NCR में होने वाले इवेंट्स या शुरू हुए इवेंट्स और यस ऑफ कोर्स जन्माष्टमी महोत्सव के बारे में भी। 5th सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी भी होता है और भारत में तो हम 5 सितंबर को मनाते हैं शिक्षक दिवस। तो आज एक छोटा सा थॉट, हमारी जिंदगी में टीचर सिर्फ वही नहीं होता जो क्लासरूम में हमें पढ़ाते हैं। कभी कोई दोस्त हमें कुछ सिखा जाता है, कभी माता पिता, कभी कोई ऐसी घटना जो हमें ज़िंदगी का बहुत बड़ा लेसन दे जाती है। तो ज़रा सोचिए, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टीचर कौन रहा है? शायद आज उसे याद करने का अच्छा मौका हो।

ओके, खूबसूरत सा गाना. और कल कृष्ण जन्माष्टमी है, आप सबको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं. और हम बात करेंगे तो कृष्ण जन्माष्टमी के महोत्सव जो हो रहा है डीडीए ग्राउंड सेक्टर 10 में 3 और 4 सितंबर को महोत्सव होगा यहाँ पर शाम 7:30 बजे से. यहाँ भजन, संगीत, डांस, बैलेज, कृष्ण लीला और थीमेटिक परफॉर्मेंसेस भी होंगी ऑफकोर्स. या एंड बहुत मज़ा आने वाला है. एंड मैं तो वहाँ पास में ही रहती हूँ, सो आई कैन लाइक रियली गो देयर एंड एन्जॉय. और इस बार ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन के साथ टेक्नोलॉजी का भी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, यानी इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशन और एआई बेस्ड कृष्ण एक्सपीरियंस भी प्रोग्राम का हिस्सा है. यानी परंपरा भी, तकनीक भी और भक्ति भी. तो इससे अच्छा क्या हो सकता है. तो द्वारका वालों के लिए तो खास तौर से कल शाम आपके पास एक बहुत सुंदर कल्चरल ऑप्शन है. श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव और सभी मना भी रहे हैं. अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत एंजॉय करने वाले हैं और भक्ति में आप सराबोर हो सकते हैं. एंजॉय करिए. मैं अभी और भी इवेंट्स के बारे में आपको बताने वाली हूँ और आप बने रहिए हमारे साथ सिटी लाइट्स में.

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद

0: की हद से दुश्मनों के खात्मे तक। ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: ऑलराइट जी, हम बात कर रहे हैं दिल्ली में इवेंट्स की, और जन्माष्टमी का महोत्सव है तो उसके बारे में भी बताऊं कि एक इवेंट जिसमें खास तौर पर और आर्ट और क्लासिकल डांस लवर्स के लिए मेंशन करना चाहूंगी, वो है श्रीराम भारतीय कला केंद्र का आइकॉनिक डांस ड्रामा कृष्ण, इस साल अपने 50वें वर्ष में है। तो अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये परफॉर्मेंस कमानी ऑडिटोरियम में चल रही है और 4 सितंबर तक इसका स्पेशल रन है। इसमें क्लासिकल डांस, म्यूजिक, हैंडक्राफ्टेड कॉस्ट्यूम्स और ट्रेडिशनल स्टेज डिजाइन के माध्यम से भगवान कृष्ण की कहानी को प्रस्तुत किया गया है। है ना खूबसूरत। और इसकी खास बात तो ये है कि 50वें वर्ष की प्रस्तुति में प्रोडक्शन ने हैंडक्राफ्टेड सेट्स और लाइव स्टेज एस्थेटिक्स पर खास जोर दिया है। वाह। तो अगर आप दिल्ली की परफॉर्मिंग आर्ट ट्रेडिशन को करीब से देखना चाहते हैं तो मंडी हाउस की तरफ जाना आपके लिए अच्छा कल्चरल प्लान हो सकता है। भूलिएगा मत, ये बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि मैंने ये देखा हुआ है एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। आपका टाइम पता ही नहीं चलता, आप इतना खो जाते हैं और भक्ति में सरावर हो जाते हैं। तो जाकर देखाइए, कल तक है इसका रन, तो यू मस्ट वॉच इट। एंड ये गाना आपके लिए।

अगर आपकी शाम थोड़ी म्यूजिक के नाम होनी चाहिए तो एरो सिटी में अंडर साउंड सेशन फीचरिंग रितेश डुओ है आज रात 8 बजे। ब्लूज, रॉक और लाइव म्यूजिक, यानी ऑफिस की सारी थकान के बाद थोड़ा संगीत, थोड़ा सुकून और शायद थोड़ी सी हेड बॉबलिंग, क्योंकि कभी कभी फ्राइडे तक पहुंचने के लिए थर्सडे इवनिंग को थोड़ा सेलिब्रेट करना भी जरूरी है ना। नोएडा वालों के लिए भी है एक ऑप्शन, कल रात 8 बजे नोएडा में बॉलीवुड फ्यूजन नाइट, यानी आज रात से भी है, और क्लासिकल बॉलीवुड मेलोडीज और कंटेम्प्रेरी बीट्स का कॉम्बिनेशन। तो अगर आपका दिल कहता है कुछ पुराने गाने सुने और पैर कहते हैं थोड़ा डांस भी कर लें, तो शायद नोएडा में आपका थर्सडे इवनिंग प्लान बन सकता है। क्या कहते हैं आप?

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
5: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
6: Ek zamane se kahani hai suna rahi Akashwani. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
9: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
10: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
11: शाम के 5:46 हुए हैं और इस वक्त या तो आप रास्ते में हैं, या आप घर पहुंच चुके हैं, या फिर अभी ट्रैफिक में कहीं फंसे हुए हैं। लेकिन एक छोटा सा ख्याल ऐसे ही आया तो सोचा कि आपसे शेयर कर लूँ कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में इसलिए नहीं आते कि हमेशा हमारे साथ रहें, वे आते हैं ताकि हमें कुछ सिखा कर जाएं। इसलिए जो लोग आज आपके साथ हैं उनकी कदर कीजिए, और जो लोग दूर हो गए हैं उनकी अच्छी यादों को संभाल कर रखिए, क्योंकि हर रिश्ता अपनी जगह एक कहानी छोड़ जाता है। सीरियसली।

तो दोस्तों आपसे बात करते करते हमें पता ही नहीं चला टाइम कैसे बीत गया। सीरियसली आज शाम के 5 बजे से अब तक आपने मेरे साथ बहुत बातें की, मौसम की, ट्रैफिक की, कल्चर की, म्यूजिक की और कुछ ऐसी यादों की भी जिन्हें शायद आपने बहुत दिनों बाद याद किया है। कल दिल्ली में बारिश हो सकती है, ट्रैफिक थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन उसके बीच शहर में संगीत है, कला है, कृष्ण की भक्ति है और कल्चर की खूबसूरत कहानियां भी हैं। तो मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, कभी कभी आप ना अपने रोज की रूटीन से थोड़ा बाहर निकलिए, किसी एग्जीबिशन में जाइए, कोई लाइव परफॉर्मेंस देखिए, किसी कल्चरल सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए या बस किसी अपने के साथ बैठकर चाय की चुस्कियां लीजिए। उससे बढ़कर तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन अपने बिजी स्केड्यूल में से आपको थोड़ा टाइम तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना कि ज़िंदगी सिर्फ काम और जिम्मेदारियों का नाम ही नहीं है, ज़िंदगी उन छोटे छोटे पलों का नाम भी है जिन्हें हम याद बनाकर अपने साथ लेकर चलते हैं ना। इसी खूबसूरत सोच के साथ मैं आपसे थोड़ी देर के लिए विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और अगर बाहर निकल रहे हैं तो मौसम और ट्रैफिक दोनों का ध्यान रखिए और प्लीज़ प्लीज़ गाड़ी चलाते वक्त बिल्कुल भी आप फ़ोन का इस्तेमाल ना करें और नज़रें आपकी सड़क पर होनी चाहिए, ध्यान आपका सड़क पर होना चाहिए और ट्रैफिक में थोड़ा सा पेशेंस रखिए, रैश होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपसे फिर मिलूँगी इसी शहर की कुछ नई कहानियों के साथ। आप तब तक मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, दिल्ली को सिर्फ देखिए मत, दिल्ली को महसूस भी कीजिए और अपनी ज़िंदगी में जो आपकी अच्छी यादें हैं, जो अच्छे लोग हुए हैं, जिन्होंने कुछ सीख छोड़ी है आपके लिए, जिन्होंने कुछ यादें छोड़ी हैं, उन्हें सजो कर रखिए अपने दिल में, अपने दिमाग में और एक मुस्कुराहट आएगी आपके चेहरे पर, सीरियसली वो बहुत खूबसूरत होगी। मैं हूँ सुनीता शाहबादी, आपसे फिर मिलूँगी कल मैसेज मसाला मिक्स में। आप बने रहिए हमारे साथ, इस चैनल के साथ बहुत सारे खूबसूरत प्रोग्राम और अच्छे अच्छे आरजेज आपका एंटरटेनमेंट करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल टेक लीव ऑफ यू। बाय बाय, टेक गुड केयर।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा है कि रेलवे क्षमता बढ़ाने, सिग्नल व्यवस्था में सुधार और स्वचालित दरवाजों वाली नई पीढ़ी की रेलगाड़ियां शुरू करने के लिए काम कर रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महिला एशिया कप 2020 में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार और आप सुनते रहिए रेनबो हमारे साथ लगातार।

0: आकाशवाणी
1: शाम के बज चुके हैं 6, हम आपके पास हैं और हम आपके लिए प्रोग्राम लेकर आए हैं मैसेज मसाला मिक्स। और मैसेज मसाला मिक्स में आपसे हम जानना चाहते हैं दोस्तों, आज तक हमने भूत नहीं देखा, फिर भी सुनसान रास्ते में अकेले गुजरते हुए कदम तेज हो जाते हैं। बंद कमरे में अचानक कोई आवाज आए तो जोर से दिल धड़कने लगता है। आखिर क्या है अंधेरे में जिसे हमारी आंखों ने कभी देखा नहीं, फिर भी हमारा डर इतना असली क्यों है? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें अंधेरे या सुनसान जगहों पर जाने से डर लगता है, या फिर आप ऐसे हैं जिन्हें रात का सन्नाटा और अंधेरा बिल्कुल नहीं डराता? डर अंधेरे से है या हमारे अपने दिमाग से? मैसेज मसाला मिक्स में हमें बताइए, हमारा नंबर है 9868107070। और आज की शाम आपकी चांद मुखर्जी है, आपके रेनबो, आकाशवाणी रेनबो के जरिए आपके पास।

नाचना है ना जाओ, मेरे साथ शर्त लगाओ, ये करके दिखाओ।

0: दोस्तों, आप हमें अपने मैसेज में बता सकते हैं क्या आपको भी अंधेरे या सुनसान जगहों पर डर लगता है। अगर आपके साथ कभी ऐसा कोई वाकया हुआ है जब बिना कुछ देखे आपको बहुत डर लगा हो, तो वो किस्सा भी हमसे जरूर शेयर कर सकते हैं। आप लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और हाजिर हो जाएंगे आपके मैसेजेस के साथ 9868107070 पर।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
0: और दोस्तों, जैसे कि हमने कहा था कि हम आ जाएंगे आपके मैसेजेस के साथ, तो हम हाजिर हैं अभी, लेकिन मैसेजेस अभी नहीं है हमारे पास, लेकिन हाँ, एक गाना जरूर आप तक पहुंचाएंगे और उसके बाद आपके मैसेजेस का इंतजार करेंगे। आज हमने आपसे जानना चाहा है कि डर अंधेरे से है या हमारे आपके अपने दिमाग से, आपको यही बताना है 9868107070 पर। चांद चांद है आज की शाम आपके साथ।

तक आपको सामने पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है, आप क्या करेंगे? पीछे मुड़कर देखेंगे या बिना पीछे देखे अपनी स्पीड बढ़ा देंगे? हमें मैसेज करके बताइए, मैं पीछे देखूंगा ये सीधे भाग जाऊंगा। यही आज हमने आपसे जानना चाहे मैसेज मसाला मिक्स में, कि डर अंधेरे से है या आपके दिमाग से? बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, बहुत बहुत सारे मैसेजेस। तो और आज क्योंकि जन्माष्टमी की पूर्व संध्या है और इसकी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको, हमें पता है आपने बहुत सारी तैयारियां की है, सुबह से ही आप रेनबो सुन रहे हैं और आकाशवाणी रेनबो से जुड़कर आप न जाने कितने अपने ज्ञान की चीज़ें अपने अंदर बढ़ा चुके हैं। और आप जैसे कि सुन पा रहे हैं, बहुत सारी चूड़ियाँ पहन के आए हैं इसी खुशी में, क्योंकि त्यौहार हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ ही तलाते हैं। तो सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। गुड इवनिंग आरजे जी, गुड इवनिंग हितेन दास जी ने भेजा है MSM से। अगला मैसेज हमारे पास आया है, चांद रात के अंधेरे में भूत से ज्यादा डर तो अपनी ही परछाई से लगता है। भूत कभी देखा नहीं, लेकिन एक बार सुनसान रास्ते में पीछे से आवाज आई तो जान निकल गई। पीछे देखा तो कुत्ता था, तब समझ में आया भूत हो या भ्रम, डर हमारा दिमाग ही पैदा करता है। मोहम्मद सरफराज आलम जी ने लिखा है, जो कि हाट दशना बाजार अररिया बिहार से। अगले मैसेज में आते हैं तो गुड्डू धाकड़ जी उज्जैन जिले के बेड़ावन गांव से। भूत मन के डर का होता है, हमें बिल्कुल डर नहीं लगता क्योंकि

में ही खेत पर काम करते हैं, फसलों को पानी देते हैं, रखवाली करते हैं। क्या बात है, आपको तो बिल्कुल ही डर नहीं लगता होगा ऐसे में। पूरा विश्वास के लोग तो बहुत ज्यादा ही डरते हैं, वैसे लगता है कि इंडिया में तब भी लोग कम डरते हैं। चांद सुनसान अंधेरे में GPS के बताए गलत रास्ते, जहां ना कोई गांव, ना बस्ती, ना लाइट, फिर भी डर लगना लाजमी, कहीं डाकू हमारी कार को लूट ना ले, ये डर सता रहा था। आखिर जिसके घर शादी में जाना था, मुश्किल से उनका नंबर मिला, तब उन्होंने सही रास्ता बताया, तब उनके यहाँ पहुंचे, तब से GPS पर अंधा भरोसा करना छोड़ दिया। अनिल शर्मा सरिता बिहार से ऐसा लिखते हैं जी, भरोसा तो अपने आप पर होना चाहिए, रास्ते तो मिल ही जाते हैं। और अगला गाना हम आपके पास तक पहुंचा रहे हैं। गाने जरूर ऐसे हमारे पास हैं जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके दिल में डर पैदा कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जहां तक की बात है, हमारे पास ऊपर वाला है तो किस बात का डर है ना।

0: ब्रेक के बाद आएंगे आपके पास आपके मैसेजेस के साथ. सुन रही आकाशवाणी रेनबो, चांद मुखर्जी है आज की शाम आपके साथ.
1: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त.
2: पता का चाय, गजब का स्वाद.
3: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़. सेल सिक्योर TMT बार,
4: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल.
5: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान. इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी. सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर. जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे. प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय.
0: दोस्तों, बचपन में डर की अपनी ही दुनिया होती है. कभी अलमारी के पीछे भूत, कभी बिस्तर के नीचे छुपा हुआ कोई भूत, कभी रात में बाथरूम तक जाने के लिए किसी को साथ ले जाना. और मजेदार बात यह कि बड़े होने के बाद भी कुछ डर हमारे साथ बड़े होते जाते हैं. आपके बचपन का सबसे बड़ा डर क्या था, या आज भी वो डर कहीं ना कहीं आपके अंदर जिंदा है, तो मैसेज करके हमें जरूर बता सकते हैं. आज देखते हैं कि हमारे लिसनर्स कितने बहादुर और कितने अभी भी अंधेरे में अकेले जाने के पहले दो बार सोचते हैं, तो हम उनके मैसेजेस के जरिए ही उनके बारे में यानी आपके बारे में सकते हैं. तो शुरुआत करते हैं. ये मैसेज भेजा है मैं परमार अमित कमलेश भाई ग्राम सारस्ता या दृष्टि अमरेली. वेरी नाइस सॉन्ग. डर में मन में होता है ना कि अंधेरे में. व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो डरेगा या नहीं. बिल्कुल सही बोल रहे हैं. डरना क्या है दोस्तों, हमारे पास जब है ना एक ऊपर वाला. और अगले मैसेज में हमें भेजा है सुकरा नायक जी ने खरसावा झारखंड से. लिखते हैं अंधेरे में हमें डर लगता है लेकिन हमने आज तक भूत देखा नहीं है, सिर्फ सुना है कि अंधेरे में भूत डराता है, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए अंधेरे में. क्या आवाज है, इतनी गोलमोल बात कही है उन्होंने. इनको डरना नहीं चाहिए लेकिन उन्होंने भूत देखा नहीं है लेकिन उन्हें डर लगता है. क्या बात है सुकरा जी, बहुत अच्छा लिखा है आपने मैसेज करने के लिए, धन्यवाद. अगला मैसेज हमारे पास आया है पंकज जी का अमरावती महाराष्ट्र से. लिखते हैं कि अगला मैसेज इन्होंने लिखा है कि सुबह जल्दी जल्दी लिखते हैं कि रात के अंधेरे में ज़्यादा अंधेरे से ज़्यादा मन में जो डर घर कर गई है इस वजह से ज़्यादा डरता हूँ और अंधेरे से कम डर लगता है. सुबह जल्दी खेत में जाना होता है और खेत और वहाँ अंधेरा होता है और खेत में रास्ते में कुछ साल पहले अप्रिय घटना हुई थी, उस जगह जाते डर लगता है लेकिन कुछ कदम चलते ही मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था और मेरे मन में से डर चला गया. पंकज जी ने लिखा है अमरावती महाराष्ट्र से. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग आपको भी और आपने मैसेज किया उसके लिए थैंक यू. और सच बात है, डर तो हमारे दिल के अंदर ही होता है. मेरा नमस्ते. मेरा ये कहना है कि जो डर है वही अपने दिल और दिमाग से है. रही बात भूतों की, तो अब इंसान ही भूत बन गए हैं. 12 बजे तक जागते हैं तो भूत निकलेंगे कहाँ से. पहले भूत थे ये नहीं, ये तो नहीं मालूम. और बड़े लोग कहते हैं कि हैं शायद. जावेद आलम मोहम्मद जायान जयपुर से ऐसा लिखते हैं. वैसे हमें लगता है कि जब चीज़ देखी नहीं है तो क्या पता. वैसे देखा तो हमने भी नहीं है लेकिन डर हमें बहुत लगता है, आपको हम बता दें. नमस्ते मैम प्रीति.

बिहार से लिखते हैं कि डर लगता है, डर लगता है भाई, हमें तो डर लगता है सच में, जबकि हम अकेले रहते हैं, बावजूद इसके हमें बहुत डर लगता है, काफी दिनों से अकेले रहने के बावजूद हमें घर में अकेले डर लगता है। चांद मैम को मुस्कुराहट भरा नमस्कार, आप कैसी हैं? भूतों की अस्तित्व की है या नहीं, क्योंकि मैंने तो कभी देखा नहीं, अगर दर्शन हो जाते हैं हेलो जरूर कहूंगा, रवि जोशी मेन से ऐसा लिखते हैं। लेकिन जब भी हमने फिल्में देखी है उसमें तो भूतों को बहुत ज्यादा डरावना दिखाते हैं। अगला मैसेज आया है, प्रिय चांद नमस्कार, मैसेज मसाला मिक्स, मुझे अंधेरे से नहीं कभी कभी दिमाग से डर जाते हैं, ज्यादातर नाइट ड्यूटी होती है और मेरी अकेले आना जाना होता है, डर बिल्कुल भी नहीं लगता। हीरा मणि वर्मा जी, जी आपके नाम में ही हीरा छुपा है तो आपको डरेंगे कहाँ से। दंत रहेगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से ऐसे लिखते हैं। और अब सुनते हैं एक प्यारा सा ट्रैक और उसके बाद आप वापस आ जाएंगे आपके मैसेजेस के साथ। और दोस्तों आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपने कभी नोटिस किया कि अंधेरे से ज्यादा डर सन्नाटे से लगता है, जब आसपास कोई आवाज ना हो, हवा भी जैसे धीरे धीरे चल रही हो और तभी अचानक कोई छोटी सी आवाज सुनाई दे जाए, बस आपका दिमाग अपनी पूरी कहानी बनाना शुरू कर देता है। तो बताइए आपको अंधेरा डराता है या सुनसान जगह का सन्नाटा? मैसेज में सिर्फ इतना लिखिएगा, अंधेरा या सन्नाटा।

0: महेश भट्ट
1: और दोस्तों आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स। मैसेज मसाला मिक्स में आज हमने आपसे जानना चाहे डर अंधेरे से है या आपके अपने हमारे दिमाग से, बस यही आपको बताना है। 9868107070 चांद है आपके साथ और आप हमारे साथ है, यकीनन हमारे साथ है दोस्तों, हमें पता है। और अब आप मिलेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर हो जाएंगे आपके मैसेजेस के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।
2: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
4: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: दोस्तों जरा इमेजिन कीजिए, रात के करीब 12 बजे हैं,
1: आप किसी सड़क से गुजर रहे हैं जहाँ स्ट्रीट लाइट्स भी कम है और आसपास कोई दुकान या घर भी नहीं है। अचानक आपकी गाड़ी बंद हो जाए, फोन की बैटरी सिर्फ 2% और आसपास कोई नजर ना आए, उस वक्त आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आएगा? आज मैसेज मसाला मिक्स में अपने इमेजिनेशन को जरा खुल के छोड़िए, खुला छोड़िए और हमें मैसेज करके बताइए आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे। 9868107070 चांद है आपके साथ और हमारे पास अगला मैसेज किसका आया है उनका मैसेज पढ़ लेते हैं। हेलो चांसेस साहिबा जी, आदाब, आपको भी आदाब, हम आपको सुन रहे हैं, आवाज़ से साफ जाहिर हो रहा है, आज जी स्टूडियो में मौजूद है। अंधेरे में कोई पुकारता है तो हम जरूर रुक कर देखेंगे और फिर उसकी मदद करनी भी बनती है जी। अच्छा जी, आप उसकी मदद करेंगे अगर ऐसी आवाज आए, अगर ऐसी आवाज आए,
7: फारूक अली कहाँ जा रहे हो?
1: कस्बा गुन्नार यूपी से फारूक अली जी, खान फैजी, फराज, फरीन, फरहान, फारिया, ताहिरा जी ने, ताहिरा जी ने मैसेज किया है, शुक्रिया मैसेज करने के लिए। अगला मैसेज हमारे पास आया, नमस्कार, आपको कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छा हूँ, रोज मैं और मेरा परिवार आपके प्रोग्राम सुनते पसंद भी आ रहे हैं और प्रोग्राम की अच्छी आवाज़ आपकी आवाज़ लगती है अच्छा। जिला मुरादाबाद, ग्राम दुरापुर, उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह जी ने हमें मैसेज किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम टू द शो। अगला मैसेज, वेलकम टू द शो, किशन, जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा तो यही कहना है कि जब हम रात के अंधेरे में जा रहे होंगे तो पीछे से कोई आहट सुनाई देगी तो हम भागना शुरू कर देंगे, रुकना नहीं चाहेंगे ताकि किसी भी प्रकार की मुसीबत में ना फंस जाए। नाइस प्रेजेंटेशन किशन वंजानी, नीलम, स्वाति और किशु, रेलवे कॉलोनी, आनंद विहार से, ऐसा लिखते हैं। बिल्कुल भागना बनता है भाई, जिनको डर लगता है वो तो भागेंगी, बाकी किसी ने भी कहा कि वो मदद करेंगे। हेलो मैम, आई एम भुवनेश फ्रॉम अशोक विहार, दिल्ली, हाउ आर यू? ऑन टुडेज टॉपिक आई वुड लाइक टू से दैट आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ द घोस्ट बिकॉज देयर इज नथिंग लाइक घोस्ट, बट One day I was watching Bhool Bhulaiya alone at night and when I heard the sound of ghost in the film for the first time I really got scared. Definitely it happens. ये होता है जब आप ऐसी किसी सिचुएशन में गुजरे ना, और जो ये बोलते हैं ना कि डर नहीं लगता, भाई वो पता नहीं कि कौन से लोग होते होंगे जिन्हें डर नहीं लगता, और आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों।

तो हमने सिर्फ सुना है, लेकिन हमने कभी भी आज तक भूत की फिल्म देखी नहीं है। मैं क्योंकि खुद इतना डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है हमें। चांद मुखर्जी को शुभ संध्या। शुभ संध्या आपको भी, सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, गाने भी पसंद आ रहे हैं, मैसेज मसाला मिक्स में गाने पसंद आ रहे हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज के साथ, गानों के साथ अगर आप अपने दिल की बात भी लिखते तो बहुत अच्छा लगता है। ओखला संगम विहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम गुप्ता जी ने हमें ये मैसेज किया है। अगला मैसेज हमारे पास आया है, हाय चांद, आई एम गुड, गुड इवनिंग। जोगिंदर सिंह जम्मू कश्मीर से, भूत तो होते हैं, आदमी को डर लग जाता है। अच्छा जी, भूत तो होते हैं, इनका कह रहा है आदमी को डर लग जाता है। चलिए गाना सुन लेते हैं।

0: दोस्तों बिल्कुल भी सोबर्स नहीं हुए, मात्र 45 मिनट हुए हैं हमें आपको मिले हुए। और आज एक सवाल हम आपसे कर रहे हैं कि कभी कभी हम किसी अंधेरी जगह में इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कि वहाँ क्या है, यानी असली शायद जो डर है उस चीज़ का नहीं होता, डर उस अनजानी चीज़ का होता है जिससे हमारा दिमाग खुद इमेजिन कर लेता है। आपका क्या मानना है, क्या डर वास्तव में बाहर होता है या हमारे दिमाग उसे पैदा करता है? अपनी राय अपने मैसेज करके हमें बता सकते हैं। और मैसेज करने के लिए जो नंबर आपको मिलाना है वो है 9868107070। और इस नंबर को डायल करते ही बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आए हैं, डायल नहीं किया, इन्होंने मैसेज किया है इस नंबर पर, और मैसेज करके हमें क्या बताना चाहा है उनसे, उनके मैसेजेस हम पढ़ते हैं और जानते हैं। लिखते हैं कि मेरा नाम काजल उत्तराखंड से हूँ, मुझे डर नहीं लगता पर जब मैं अकेली होती हूँ तो हनुमान चालीसा याद करती हूँ। ये हनुमान चालीसा याद करती हैं या हनुमान चालीसा पढ़ती हैं उस टाइम पे? पढ़ लिया करिए, याद तो कर लीजिए पहले से ही। हिमांशु राणा मेरठ से लिखते हैं, अंधेरे तो नहीं पता पर सन्नाटा कभी कभी डिस्टर्बिंग हो सकता है। हिमांशु जी सही बोल रहे हैं, सन्नाटे में बहुत ज़्यादा डर लगता है। आकाशवाणी एफ एम रेनबो न्यू दिल्ली मैसेज मसाला मिक्स कार्यक्रम चांद जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, आज का टॉपिक है डर, दिमाग का कि अंधेरे का? चांद जी वैसे मुझे डर अंधेरे का नहीं लगता, जो कुछ डर है वही हमारा दिमाग है, जैसे कि हम अनजान वस्तु को डर समझ बैठते हैं, यानी मेरी सोच है चांद जी। अच्छा जी, क्या बात है। नियमित श्रोता है हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन पांडे जी, जिला पन्ना मध्य प्रदेश से लिखा है, काफ़ी दूर से मैसेज किया है आपने, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हम लोग गांव में रहते हैं, बचपन में हमारे गांव में पीपल के दो बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, सब लोग बोलते थे कि उसमें भूत रहते हैं, वहाँ जाने से बहुत डर लगता था। आज हम बड़े हो गए हैं, वहाँ से गुजरते तो हैं लेकिन मन में एक बार विचार जरूर आता है कि अरे इस पर तो भूत रहते हैं। अच्छा जी, ऐसे सोचा, अरे इस पर तो भूत रहते हैं, वाह वाह वाह क्या बात है। कैलाश शर्मा जी गुरुग्राम से लिखते हैं हमें, थैंक यू कैलाश जी मैसेज करने के लिए। सन्नाटा, संजय श्रीवास्तव ने गुना एमपी से लिखा है कि उन्हें सन्नाटा खौफ देता है। और अगला मैसेज, हॉरर फिल्मों में डरावने सीन और अजीब आवाज़ों को सुनकर लगता है कि भूत कमरे में घुस आया है, अंधेरे में लाइट ऑन करनी पड़ती है। प्रवीण चौहान करगौन मध्य प्रदेश से ऐसा लिखता है, भाई हम तो कभी हॉरर फिल्म देख ही नहीं सकते, मामा ही मतलब क्या बोले कि औकात के बाहर की चीज़ है हॉरर फिल्म देखना, वो भी अकेले। कुछ लोग इतने बहादुर होते हैं कि वो अकेले, या इवन कि मेरी एक दो फ्रेंड्स भी हैं वो अकेले में हॉरर फिल्म देखती है जो कि हमारी सोच के भी बाहर है। अगला मैसेज अनिल शर्मा जी ने फिर से हमें लिखा है कि शमशान घाट पर लोग अंधेरे में जाने से डरते हैं, वही शमशान घाट के अंदर वहाँ के कर्मचारी परिवार के साथ रहते हैं, कहें तो ये निडर, और कहते हैं आज तक भूत को नहीं देखा, और कहते हैं भूत का डर नहीं इंसान के अंदर का मन डराता है। अनिल शर्मा जी हमारे वरिष्ठ श्रोता है, सरिता विहार से लिखते हैं, बिल्कुल सही कहा अनिल जी, भूत नाम की कोई चीज़ नहीं होती लेकिन डर तो लगता है सबको। राजकुमार के संतानी अंकोला महाराष्ट्र से गुड इवनिंग लिखते हैं, वेलकम जी, आप कैसे? बहुत बहुत बहुत अच्छे, जब भी आपसे मुलाकात होती है हम सच में बहुत अच्छे हो जाते हैं। लेंगे मैसेजेस तो बहुत बहुत सारे हैं लेकिन अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आएगा एक प्यारा सा ट्रैक और ट्रैक के बाद आएंगे आपके मैसेजेस। उसके लिए आपको क्या करते रहना पड़ेगा, आपको सुनते रहना पड़ेगा आकाशवाणी रेनबो चांद है आपके साथ मैसेज मसाला मिक्स में। आज हमने आपसे जानना चाहा है कि डर अंधेरे से है या हमारे अपने दिमाग से, आपको बताना है 9868107070 पर।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being

0: hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: हिमालय की गोद से लेकर
4: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
3: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
4: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
3: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
4: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
3: तो सुनना ना भूलें
4: रेनबो डेस्टिनेशंस
3: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
5: दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें रात में अकेले रहने में कोई परेशानी नहीं होती, कमरा बंद, लाइट्स ऑफ और आराम से नींद। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रात में एक आवाज़ सुन ले तो पहले लाइट्स ऑन करते हैं, फिर देखते हैं कि आवाज़ कहाँ से आई। आप इनमें से कौन है? अंधेरा भी अपना है, लाइट बंद मत कर।

और दोस्तों ले लेते हैं आपके मैसेजेस जो बहुत सारे आए हुए हैं। हमें ना तो अंधेरे नर्ड से डर लगता है, ना भूत से डर लगता है, डर तो सन्नाटे से लगता है। डर नया पारा भिरई जिला बालोद से बसंत कुमार ठाकुर जी ऐसा लिखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर जी आपको ऐसे बताने के लिए कि आपको भी सन्नाटे से डर लगता है। लूणा राम नागौर राजस्थान से लिखते हैं, मैम डर एक वहम है, अंधेरे और सुनसान जगह दोनों से डर लगता है। हर वो चीज़ जो भारी नुकसान पहुंचाती है उनसे डर लगता है, चाहे इंसान हो, आपदा हो या कोई अनहोनी। क्या बात है, बड़े ही सीरियस नोट पे इन्होंने लिख दिया है कि डर उस चीज़ से लगता है जिससे नुकसान होने की संभावना है। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी शांति नगर सोनीपत से लिखते हैं, हमारी ओर से आपको रेनबो परिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अंधेरा हो या सन्नाटा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ सोच की बात है। बिल्कुल सीधे तौर पर आपने ये बात कह दी है, बिल्कुल सच है। नमस्कार दिल्ली शहर मेरी मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, प्रोग्राम काफी अच्छा लग रहा है। रात के अंधेरे में भूत नहीं निकलते, आदमी से बड़ा भूत कोई नहीं है। धन्यवाद। ओके जी, मैं मेरा मैसेज तो अभी तक रीड नहीं किया आपने। आई एम अंशी शर्मा हस्तिनापुर मेरठ से। जी आप ही का मैसेज रीड कर रहे हैं मैम। अगले डियर चांद मैम कैसी हैं आप? मैं तो आज के टॉपिक पर यही कहना चाहूँगी कि मैम इस एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं सो रही थी, रात में 2 बजे थे, मुझे झटके से ऐसा फील हुआ जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी ने मुझ पर अटैक किया हो। उस रात मैं उठकर बैठ गई, बहुत हार्ट बीट बढ़ गई थी, बहुत मुझे डर लगा है, बहुत सुनसान लग जगहों पर अपने घर में अंधेरे में भी डर लगता, डर नहीं लगता लेकिन छत पर भी लगता। 12 बजे के बाद तो मैं आंशी शर्मा हस्तिनापुर, 12 बजे के बाद उन्हें छत पर डर लगता है, बाकी अंधेरे में अपने घर में भी डर लगता है। देखिए जो लोग ये कहते हैं ना कि डर नहीं लगता, हमें नहीं पता, वो बहुत बहादुर लोग होंगे, हमें बहुत डर लगता है। गुड इवनिंग चांद, आई एम सनी बिमला पूल सीनियर फ्रॉम अम्बाला कैंट से। टुडे इज़ द बर्थडे ऑफ माई फ्रेंड नेहा श्रीवास्तव, प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट विशेज टू हर ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर AIFM टीम। She now live in Portugal when she is married and just few months ago she gave birth to son named Kian. Yes, I afraid earlier but now I don't get afraid of evil because after watching

0: Yes, it brings us back to that moment when we were all children. So all the children right now and those children at heart, that song was entirely for you. I hope you enjoyed it. Memories, nice and beautiful and young and fretter-free. I'm enjoying that on Hits and Memories on Akashvani Rainbow. And we're going to go in for a teeny weeny little message.
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: uplift the soul and make us free and carefree and almost like a bird in the sky. This song reminds me of that, that longing of going back to that time when things were nicer, things were simple, and life was almost like a joyride. Maybe someday we are all going to get, sorry for that, my tongue took a tumble there because I was almost visualizing what I was saying. I was just saying that maybe in our own little worlds, in our own little lives, we shall come to that special pass in life where we can stop and say, this is nice, and heave a deep, deep sigh of contentment. Wishing you all that wonderful, deep, deep sigh of contentment. So while you breathe in deeply, listen to some messages also.
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: कोयल सी तेरी बोली,
6: हाय
5: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
6: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
5: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
6: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: And now, as we've entered into the last maybe 8 odd minutes of the show, that's all about wonderful music and the lovely memories around them. Maybe the next 2 tracks can go back to back, because they are all linked to something which we all enjoy doing. I think so. It's a celluloid. Yes, movies and the memories extracted from watching those movies. Listen to them, think about the scenes, see the movie coming alive in your mind there, and then come back to us on the show. Here it comes.

नमस्कार। शाम के 8 बज रहे हैं। प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। भारत और बेल्जियम ने व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाक्स वेवर के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार में विभिन्न क्षेत्रों की बढ़ती भागीदारी का स्वागत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध है जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के प्रबंधन और नियंत्रण पर समीक्षा बैठक की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही के 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि रेलवे क्षमता बढ़ाने, सिग्नल व्यवस्था में सुधार और स्वचालित दरवाजों वाली नई पीढ़ी की रेलगाड़ियां शुरू करने के लिए काम कर रहा है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत इनोवेट्स पहल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। दिल्ली सरकार ने आज 75 सीएम श्री स्कूलों में ईट वेल लीव वेल पहल की शुरुआत की। इस पहल के माध्यम से करीब 30,000 बच्चों को अपने स्वास्थ्य और कल्याण की बुनियादी जानकारी दी जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया है कि अब राजधानी में मल्टी यूटिलिटी डक्ट विकसित किए जाएंगे। इसके अंतर्गत विभिन्न आवश्यक सेवाओं के लिए साझा भूमिगत कॉरिडोर बनेंगे। लद्दाख में 4 और 5 सितंबर को द्रास महोत्सव आयोजित किया जाएगा। और खेलों में किदाम्बी श्रीकांत ने चीन मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और महिला एशिया कप 2020 में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार 8 बजे से खेला जाएगा। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार और आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो हमारे साथ लगातार।

0: रेडवाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो म्यूजिक मस्ती और चांद मुखर्जी।
2: देख राजा, ये मटकी एक फटकी में तोड़ता है।

0: आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती चांद के साथ, और अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद आ जाएंगे आपके पसंदीदा गाने लेकर आकाशवाणी रेनबो पर, तो आप सुनते रहिए।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटी

0: तक खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
0: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: दोस्तों, हमारा देश जो है वो त्योहारों का देश है, और त्योहार इसलिए आते हैं कि हम अपने दिल में नई खुशियां, नया जोश, नए उमंगें भर सके। अगर किसी वजह से आपका दिल टूटा है या किसी का दिल आपकी वजह से टूटा है, तो उन सबको माफ़ करते चलिए और ज़िंदगी की खुशियों में डूब जाइए और उन खुशियों के साथ रहिए जो अभी इस वक्त आपके पास है। आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: हम अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह

0: सात बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
2: आकाशवाणी रेनबो पर म्यूजिक मस्ती।

0: आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक मस्ती, म्यूजिक मस्ती में जिसमें आप झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं और सुन रहे हैं उन गानों को जिनको आप हमेशा से सुनना चाहते थे। एक बेहतरीन सा ट्रैक आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर सिर्फ आकाशवाणी की तरफ से। सुनते रहिए और इंजॉय करते रहिए यूं ही जिंदगी को हमारे साथ।

बहुत खुशियों के साथ, क्योंकि नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ बिल्कुल तैयार है विनीता बेदी जी। और अब चांद को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी फिर कभी ना कभी, कहीं ना कहीं रेनबो के ही किसी न किसी प्रोग्राम में। और हाँ, हमेशा खुश रहिएगा, दूसरों को खुशी दीजिएगा, और आपकी वजह से अगर किसी को खुशी मिले तो उसको देना मत भूलिएगा। तो क्या आपका चांद जाए, बाय।

प्रस्तुत हैं इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो पर मुख्य समाचार। भारत और बेल्जियम ने व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार में विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती भागीदारी का स्वागत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध है जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के प्रबंधन और नियंत्रण पर समीक्षा बैठक की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा है कि रेलवे क्षमता बढ़ाने, सिग्नल व्यवस्था में सुधार और स्वचालित दरवाजों वाली नई पीढ़ी की रेलगाड़ियां शुरू करने के लिए काम कर रहा है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत इनोवेट्स पहल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। दिल्ली सरकार ने आज 75 सीएम श्री स्कूलों में ईट वेल लिव वेल पहल की शुरुआत की। इस पहल के माध्यम से करीब 30,000 बच्चों को अपने स्वास्थ्य और कल्याण की बुनियादी जानकारी दी जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया है कि अब राजधानी में मल्टी यूटिलिटी डक्ट विकसित किए जाएंगे। इसके अंतर्गत विभिन्न आवश्यक सेवाओं के लिए साझा भूमिगत कॉरिडोर बनेंगे। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,252 हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 4,216 लोग अब भी लापता हैं। और खेलों में किदांबी श्रीकांत ने चीन मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। आकाशवाणी रेनबो पर ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी और प्रोग्राम आपकी याद आती रही। हर रोज हर शाम एक बात जो हम सभी को दिल से महसूस होती है वो क्या है? सिर्फ यही ना कि कोई तो है इस दुनिया में जो हमें, सिर्फ हमें याद करता है, और वो इसलिए क्योंकि हमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनके दिल को छुआ है। इसीलिए तो

कुछ शामें दोस्तों सिर्फ शामी नहीं होती, वो अपने साथ बीते हुए दिनों की आहट लाती हैं। किसी पुराने घर की खिड़की, किसी रास्ते का मोड़, किसी की हंसी तो किसी की आवाज। और फिर अचानक लगता है वक्त तो बहुत आगे निकल आया, लेकिन मन आज भी वहीं ठहरा हुआ है। यादें भी बड़ी अजीब होती है ना, हम उनसे कितना ही बचना चाहें दोस्तों, वो और करीब आ जाती हैं। और जब कभी उन्हें बुलाना चाहें तो जाने कहां छिप जाती हैं। आज ये शाम ऐसी ही कुछ यादों के नाम, उन लोगों के नाम जो हमारे जीवन से चले गए लेकिन हमारी स्मृतियों से, हमारी यादों से नहीं गए। उन रिश्तों के नाम जो पूरे तो नहीं हो सके

0: फिर भी हमारे भीतर कुछ पूरा कर गए। और उन पलों के नाम जिन्हें हम जितना पीछे छोड़ना चाहते हैं, वो उतने ही गहरे होकर हमारे साथ चलते रहते हैं। आपकी याद आती रही विनीता बेदी के साथ।
1: वो शाम

कुछ शामों का रंग दोस्तों सालों के बाद भी नहीं उतरता। हम सोचते हैं कि वो तो बस एक शाम थी, लेकिन दरअसल वो शायद शाम नहीं, किसी एहसास की शुरुआत थी। उस दिन की हवा, वो रोशनी, वो साथ, सब कुछ बहुत पीछे छूट गया, लेकिन मन के किसी कोने में अब भी वैसा का वैसा ही रखा हुआ है। नहीं, आपको लगा ऐसा कभी? समय ने बहुत कुछ बदल दिया, लेकिन यादों ने कभी भी उस एक पल को बदलने नहीं दिया।

आपकी याद आती रही विनीता बेदी के साथ। दोस्तों, किसी के हमारे जीवन में आने की कोई निश्चित तारीख नहीं होती। बस एक दिन कोई अनजान सा व्यक्ति अचानक ही अपना सा लगने लगता है। उसकी बातों में हम अपने मन की आवाज सुनते हैं, उसकी चुप्पी भी हमें समझ आने लगती है, और फिर पता ही नहीं चलता कि कब किसी की मौजूदगी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन गई। शायद प्रेम हमारी जिंदगी में ऐसे ही आता है, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी दस्तक के, बस धीरे धीरे मन में उतरता ही चला जाता है।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: क्या है बताइए, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

आपकी याद आती रही विनीता बेदी के साथ। और दोस्तों, रिश्तों की खूबसूरती ही शायद यही है कि उसमें दो लोग सिर्फ साथ नहीं होते, एक दूसरे को थोड़ा बहुत बदलते भी हैं। किसी की वजह से हम कई बार कुछ नया सा महसूस करते हैं, किसी की वजह से हम अपने भीतर के किसी अनजान हिस्से से मिलते हैं। और जब कभी भी वो व्यक्ति हमसे दूर हो जाता है ना, तो उसकी कमी के साथ साथ हमें अपने उस पुराने रूप की भी याद आती है जो उसके साथ रहते हुए हम हुआ करते थे। यही शायद दो पलों की दास्तान है। आपकी याद आती रही विनीता बेदी के साथ।

आपकी याद आती रही विनीता बेदी के साथ। कितना अजीब है ना दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि इंसान चला गया तो उसकी कहानी भी खत्म हो गई शायद, लेकिन कुछ लोग नाम से नहीं अपनी मौजूदगी के असर से याद रहते हैं। वो हमारी आदतों में होते हैं, हमारी बातों में होते हैं, किसी गीत को सुनते हुए हमारी आंखों में उतर आते हैं, और तब समझ में आता है कि किसी का नाम मिट भी जाए ना, उसकी याद कहाँ मिटती है।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
4: ठीक है,
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। अच्छा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आपकी याद आती रही विनीता बेदी के साथ। और दोस्तों, हमारे बहुत सारे दोस्त हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हैं और यादों को शायद बार बार जी रहे हैं। आसाम से हमारे साथ हितेंद्र दास जी हैं, महाराष्ट्र से विजेंद्र घाटोल, अमरावती महाराष्ट्र से पंकज, आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान फारिया और ताहिरा, आप सभी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। हमारे साथ सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी हैं शांतिनगर सोनीपत से, और ओखला संगम विहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। तुम्पा पॉल रेलवे कॉलोनी न्यू दिल्ली से इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं। बहुत सारा प्यार आप सभी भेज रहे हैं और बहुत सारा प्यार की दरकार भी शायद हर किसी को है। दोस्तों, हर रिश्ता जो होता है ना, वो अपने साथ एक यात्रा लेकर आता है। कुछ रास्ते आसान होते हैं, कुछ कठिन। कुछ लोग रास्ते में हमारा हाथ थामे रहते हैं और कुछ किसी मोड़ पर पीछे छूट जाते हैं। लेकिन जो रास्ता हमने साथ में तय किया था ना, वो कभी भी पूरी तरह अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके साथ कोई एक कहानी साथ में चलती रहती है। एक ऐसी कहानी जिसे हम चाहकर भी अपने भीतर से कभी निकाल नहीं पाते। दूरियां चाहे कितनी भी क्यों ना आ जाए, वो रिश्ता हमारे मन से नहीं निकलता।

दोस्तों, आज की शाम तो अब यहीं ठहरती है, लेकिन सच बताइए, यादें कहाँ ठहरती हैं? वो तो फिर किसी दिन आएंगी, किसी पुराने गीत के साथ, किसी पुरानी या बरसाती शाम के साथ, किसी खुशबू के साथ, या शायद यूं ही बिना किसी वजह के। तब तक, जब तक ये सब होता है, बने रहिए आकाशवाणी रेनबो के साथ। मैं हूं विनीता बेदी और आप सुन रहे थे आपकी याद आती रही। फिर मिलेंगे अभी रंगे महफिल में भी। आप याद रखिएगा कि

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, लीजिए पेश हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। भारत और बेल्जियम ने व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाक्स द वेवर के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार में विभिन्न क्षेत्रों की बढ़ती भागीदारी का स्वागत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं, जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित।

प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा है कि रेलवे क्षमता बढ़ाने, सिग्नल व्यवस्था में सुधार और स्वचालित दरवाजों वाली नई पीढ़ी की रेलगाड़ियां शुरू करने के लिए काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन कल जन्माष्टमी के भव्य उत्सव के लिए सज धज कर तैयार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 4216 लोग अब भी लापता हैं। और खेलों में किदांबी श्रीकांत ने चीन मास्टर सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। आकाशवाणी रेनबो पर ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: किसी की मौजूदगी जिंदगी को खूबसूरत बना देती है और कभी उसी की कमी हर खूबसूरत चीज में दिखाई देने लगती है। आज की महफिल मोहब्बत के इन्हीं कई रंगों के नाम है। मैं हूं विनीता बेदी और आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं रंग महफिल।
1: कलामे मिर्ज़ा गालिब।

कुछ सवाल होंगे, कुछ शिकायतें होंगी, तो कुछ अधूरी कहानियां होंगी और कुछ ऐसी बातें भी जो शायद कभी कही नहीं गई। ये सब कुछ उस एक मोहब्बत में जो कब हुई कब बीती पता ही नहीं चला। रीती रही यादें, लेकिन दिल के सवाल कभी छूटे ही नहीं। आकाशवाणी रेनबो पर रंग महफिल में विनीता बेदी के साथ।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है।

0: ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
8: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स।

सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

जहां आकाशवाणी रेनबो पर आप हैं प्रोग्राम रंगे महफिल में विनीता बेदी के साथ। और बात करें अगर इश्क की, तो इस छोटे से शब्द में जाने कितनी सदियां बसी हैं दोस्तों। कोई इसे पाना कहता है तो कोई खोना, कोई इसे सुकून समझता है तो कोई बेचैनी। शायद इश्क की सबसे खूबसूरत बात यही है कि इसकी कोई एक परिभाषा है ही नहीं, लेकिन फिर भी हर दिल इसे अपने अपने ढंग से महसूस करता है।

दोस्तों, कभी कभी दिल बहुत कुछ कहना चाहता है लेकिन शब्द ही साथ नहीं देते, और तब आंखें बोलती हैं तो खामोशी बोलती है, एक ठहरी हुई नजर भी बोलती है। दिल को शायद बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ इतना कि कोई समझ ले कि उसके भीतर आखिर चल क्या रहा है। दिल ही तो है ना।

दिल तो आखिर दिल है ना, ना उसे समझाया जा सकता है, ना हर बार रोका जा सकता है। जो बात दिमाग छोड़ जाता है, दिल उसे बहुत देर तक पकड़े रहता है। किसी की एक मुस्कान या एक छोटी सी मुलाकात, कोई भूली सी बात, दिल इन सबको अपनी यादों में बहुत ही संभाल कर रख लेता है। कभी खुशी की तरह तो कभी गम की तरह।

दोस्तों, रंगे महफिल की आज की महफिल में हमने कुछ ऐसे पन्नों को धीरे से छुआ जो खुले तो रहते हैं, बस हम उन्हें हर रोज पढ़ते नहीं। मैं हूं विनीता बेदी और आप सुन रहे थे रंगे महफिल। फिर मिलेंगे किसी और शाम कुछ और गजलों और कुछ नए एहसासों के साथ। तब तक दिल में मोहब्बत रखिए, रिश्तों में थोड़ी नरमी रखिए, और अगर कोई अपना याद आ जाए तो उसे सिर्फ याद मत कीजिए, बल्कि कभी उसका हाल भी पूछ लीजिए, क्योंकि कुछ रिश्ते ना बहुत देर तक सिर्फ यादों के सहारे ही नहीं चलते, इन्हीं जज्बातों के साथ आपसे विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि, शब खैर।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आइए सुनते हैं इस समय के मुख्य समाचार। भारत और बेल्जियम ने व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाग दह वेवर के बीच कल नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार में विभिन्न क्षेत्रों की बढ़ती भागीदारी का स्वागत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास को की चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिया से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा है कि हरित नौवहन की दिशा में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से कहा है कि वे अपना उत्पादन और निर्यात का दायरा बढ़ाएं और दुनिया के बाजारों से पहचान बनाने के लिए तैयार हो। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पात्र संस्थानों से विश्वास 2026 योजना के तहत लंबे समय से लंबित ईपीएफ बकाया विवादों को कम दर पर निपटाने की अपील की है। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन जन्माष्टमी के भव्य उत्सव के लिए सज धज कर तैयार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और

संख्या बढ़कर 1,252 हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 4,216 लोग अब भी लापता हैं। और महिला क्रिकेट में भारत ने दुबई में हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: दोस्तों 12:03 और 20 सेकंड हुए हैं। आप प्रस्तुत है प्रोग्राम जीरो आर शो। प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों कान्हा की शरारतों में भी एक अलग ही मिठास है। उनकी नटखट अदाओं पर यशोदा मैया की शिकायत भी प्यार बन जाती है। शायद इसीलिए कृष्ण का बचपन हमें सिखाता है कि जिंदगी में थोड़ी सी मासूमियत और थोड़ी सी शरारत भी कितनी खूबसूरत होती है। जहां मुस्कान हो वहां मन अपने आप हल्का हो जाता है, और जहां कान्हा का नाम हो वहां खुशियां खुद ही चली आती हैं। तो दोस्तों कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं अमर प्रेम का ये सदाबहार गीत, आवाज लता मंगेशकर की।

और दोस्तों आप बात करते हैं कुछ आवाज की। जी हाँ, कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिन्हें कान नहीं दिल सुनता है, और जब दिल में किसी की चाहत हो तो दूरियां भी जैसे कम लगने लगती हैं। प्यार के इंतजार में एक खूबसूरती होती है, और किसी की एक झलक की उम्मीद भी दिल को मुस्कुराने की वजह दे देती है। तो आइए इसी प्यार और एहसास से भरे माहौल में सुनते हैं फिल्म एतबार का ये खूबसूरत संगीत, जिसे आवाज दी है आशा भोसले और भूपेंद्र सिंह ने।

दोस्तों, रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं बल्कि एक दूसरे पर किए गए भरोसे से मजबूत होते हैं। कुछ वादे वक्त के साथ पुराने नहीं पड़ते बल्कि हर गुजरते पल के साथ और भी गहरे हो जाते हैं। किसी अपने से किया हुआ एक छोटा सा वादा कभी कभी पूरी जिंदगी का सहारा बन जाता है। तो आइए प्यार, विश्वास और हमेशा साथ निभाने के इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं फिल्म खिलाड़ी का ये गीत, जिसे गाया है अभिजीत और अलका याग्निक ने।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: कहते हैं प्यार की शुरुआत अक्सर बड़ी खामोशी से होती है, और पता तब चलता है जब दिल किसी एक नाम पर आकर ठहर जाता है। तो इसी मीठी सी उलझन और खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं फिल्म रंग का ये प्यारा सा गीत, जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

0: 12:31 और 32 सेकेंड हुए हैं दोस्तों। आकाशवाणी FM रेनबो पर इस समय आप सुन रहे हैं जीरो आर शो। मैं हूं आपके साथ अर्चना बिसारिया।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में कह पाना आसान नहीं होता, बस दिल उन्हें महसूस करता है। किसी की मौजूदगी से चेहरे पर मुस्कान आ जाए, उसकी खुशी अपनी खुशी लगे, तो समझिए दिल ने अपना हम सफर चुन लिया है। प्यार शायद यही है जहां धड़कन अपनी हो लेकिन वजह किसी और की।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दोस्तों, दिल एक ऐसी किताब है जिसके हर पन्ने पर कोई ना कोई एहसास लिखा होता है। कभी खुशी, कभी इंतज़ार, कभी प्यार और कभी ऐसी बातें जिन्हें हम चाहकर भी किसी से कह नहीं पाते। लेकिन दिल की सबसे खूबसूरत बात यही है कि उसमें जितना प्यार बांटे उतना ही बढ़ता जाता है। तो आइए दिल की इन्हीं अनकहे एहसासों को आवाज़ देते हुए सुनते हैं फिल्म ईमानदार का ये गीत, जिसे गाया है सुरेश वाडेकर और आशा भोसले ने।

एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म आई थी 1984 में, फिल्म का नाम था ये इश्क नहीं आसा, और इसमें मुख्य भूमिका में थी पद्मिनी कोल्हापुरे। तो आइए आपको सुनवाते हैं उस फिल्म का एक बेहतरीन सा गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार ने।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: और जीरोआर शो के आखिर में आइए सुनवाते हैं आपको फासले फिल्म का गीत, आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

एक बजे हैं, आइए अब सुनते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। भारत और बेल्जियम ने व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाग द वेवर के बीच कल नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार में विभिन्न क्षेत्रों की बढ़ती भागीदारी का स्वागत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं, जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिया से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा है कि हरित नौवहन की दिशा में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पात्र संस्थाओं से विश्वास 2026 योजना के तहत लंबे समय से लंबित ईपीएफ बकाया विवादों को कम दर पर निपटाने की अपील की है। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन जन्माष्टमी के भव्य उत्सव के लिए सज धज कर तैयार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारत ने कल नेपाल के लिए 21.5 टन राह सामग्री की नई खेप भेजी है, जिनमें फॉरेंसिक किट और मेडिकल सामग्री भी शामिल है। नेपाल तिब्बत में आए विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,252 हो गई है। वहीं 4,216 लोग अब भी लापता हैं।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 1:03 हुए हैं, आइए आप सुनते हैं नॉन स्टॉप म्यूजिक प्रोग्राम सुहानी रात।

सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

दो बजते हैं, आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार। भारत और बेल्जियम ने व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाग द वेवर के बीच कल नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार में विभिन्न क्षेत्रों की बढ़ती भागीदारी का स्वागत किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिया से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने त्रिपुरा में 18 मीट्रिक टन जैविक चावल की खेप को निर्यात के लिए रवाना किया है। चावल की चार किस्मों की ये खेप ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड्स भेजी गई है। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी संतेंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। नेपाल तिब्बत में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है, वहीं 4216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने कल नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी है, जिसमें फॉरेंसिक किट और मेडिकल सामग्री भी शामिल है। महिला क्रिकेट में भारत ने दुबई में हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में तेज बारिश का अनुमान है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बादल छाए रहने की संभावना है। और आज देशभर में जन्माष्टमी के अवसर पर उत्सव का माहौल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: शील, शील, कहाँ खोई हुई हो?
2: मिलन की इन खूबसूरत घड़ियों में इंतजार की वो कभी ना भूलने वाली घड़ियां याद आ गई, जब मैं तुम्हारे लिए तड़पा करती थी, तुम्हारा इंतजार किया करती थी।
1: मैं भी तो तड़पा करता था, मैं भी तो इंतजार किया करता था।
2: उस इंतजार में भी एक अजीब मजा था। आओ रवि, थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से दूर रहकर इंतजार की उन खूबसूरत घड़ियों में एक बार फिर से जी कर देखें, जिन्होंने हमें हमेशा हमेशा के लिए एक कर दिया। तुम वहां चले जाओ रवि, दूर उस पार, और मैं वहां चली जाती हूँ, दूर उस पार।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ हाँ।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। भारत और बेल्जियम ने व्यापार निवेश और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाक द वेवर के बीच कल नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार में विभिन्न क्षेत्रों की बढ़ती भागीदारी का स्वागत किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिया से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदारी देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिलों में बाढ़ की चपेट में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने सदस्यीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली। नेपाल तिब्बत में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है। वहीं 4216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने कल नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी है, जिसमें फॉरेंसिक किट और मेडिकल सामग्री भी शामिल है। महिला क्रिकेट में भारत ने दुबई में हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी बारिश का अनुमान है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बादल छाए रहने की संभावना है। और आज देशभर में जन्माष्टमी के अवसर पर उत्सव का माहौल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय उजला है हमारे अगले प्रोग्राम मिडनाइट मेलोडीज का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: कोयल सी तेरी बोली।

0: आए हाय,
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
0: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
0: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान, इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे, प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

आप जुड़ी हुई आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ प्रातः के 4 बजे हैं। आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। भारत और बेल्जियम ने व्यापार निवेश और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर के बीच कल नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार में विभिन्न क्षेत्रों की बढ़ती भागीदारी का स्वागत किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने त्रिपुरा से 18 मीट्रिक टन जैविक चावल की खेप को निर्यात के लिए रवाना किया है। चावल की 4 किस्मों की यह खेप ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड्स भेजी गई है। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने सदस्यीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। नेपाल तिब्बत में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है, वहीं 4216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने कल नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी है, जिसमें फॉरेंसिक किट और मेडिकल सामग्री भी शामिल है। महिला क्रिकेट में भारत ने दुबई में हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश का अनुमान है। और वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बादल छाए रहने की संभावना है। और आज देशभर में जन्माष्टमी के अवसर पर उत्सव का माहौल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

आप जुड़ी हुए आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। अब समय हमारे अगले प्रोग्राम सारेगामा का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। प्रातः के 5 बजे हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। भारत और बेल्जियम ने व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाक्स द वेवर के बीच कल नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार में विभिन्न क्षेत्रों की बढ़ती भागीदारी का स्वागत किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय ने आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के जरिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिलों बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने सदस्य क्षेत्र वाराणसी के जिला अधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली। नेपाल तिब्बत में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है। वहीं 4216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने कल नेपाल के लिए 21 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी है, जिसमें फॉरेंसिक किट और मेडिकल सामग्री भी शामिल है। महिला क्रिकेट में भारत ने दुबई में हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप में सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश का अनुमान है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बादल छाए रहने की संभावना है। और आज देशभर में जन्माष्टमी के अवसर पर उत्सव का माहौल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

सुप्रभात, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है प्रातः के 3:48। आइए अब शुरू करते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हमारे सभी श्रोताओं को जन्माष्टमी के शुभ अवसर की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जन्माष्टमी आप सभी के जीवन में मंगलमयी और कल्याणकारी रहे। आइए शुरुआत करते हैं भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना की।

0: है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बबल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

क्या दृश्य है, कन्हैया और मैया दोनों एक दूसरे के गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो माँ मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। शब्दों का चमत्कार देखिए, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार भी किया। अचानक कन्हैया ने माँ के आंसू पोंछे और देखिए मुस्कुराते हुए क्या कहने लगे।